0: 4.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Hey Frisco, get ready to celebrate silver like never before. Chandrika Silver by Shri Krishna Jewelers celebrates its grand launch. Discover exquisite handcrafted silver jewelry and artifacts with exciting inaugural offers and raffle prizes. Visit 7777 Warren Parkway, Suite 280 Frisco. Chandrika Silver, the tradition shines in silver.
4: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
5: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में
4: दैट मैजिक रिमूवल हो लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी
5: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से नाउ इट्स योर टर्न समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com
6: इस साल तो कमाल हो गया हमारा रेवेन्यू डबल हो गया
7: सर अच्छा है लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया
6: नहीं
7: बुक कीपिंग अपडेटेड है
6: नहीं
7: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया
6: वो भी नहीं
7: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त
8: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो फॉर योर टैक्स प्लानिंग बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज विजिट agfintax.com कॉल 972-618-8555 AG Fintax, your growth, our strategy.
9: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
10: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
11: यार festival season आ रहा है और मेरी wife ने shopping list भी दे दी है.
12: कितनी लंबी list है?
11: बस दो pages. Indian dresses, मिठाई, नमकीन और हाँ एक पूजा मंदिर भी
12: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो SFL Worldwide है ना इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं पूजा मंदिर हो झूला हो या फर्नीचर सामान छोटा हो या बड़ा ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है
13: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL Worldwide शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड वर्ल्ड वाइड विजिट SFLWorldwide.com
14: Floors clean.
15: Check.
14: Windows clean.
15: Check.
14: Kitchen clean.
15: Check.
14: Air ducts clean.
15: Wait, air ducts भी clean करना होता है?
16: बिल्कुल. जो दिखता है, वो तो हम clean कर लेते हैं. लेकिन जो नहीं दिखता, उसका क्या? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No rotor brush. Plus dryer vent or chimney cleaning. घर हो, restaurants, hotels, offices या फिर any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
17: ब्रेकफास्ट में क्या खाना है
18: कीमा पराठा
19: मम्मी ऑमलेट पराठा
18: बेटी हलवा पूरी और तरकारी
17: अब संडे को तीन अलग नाश्ता कौन बनाएगा
20: सिग्नेचर क्विजीन बनाएगा चूज एनी डिलीशियस ब्रेकफास्ट ऑप्शन कीमा विद पराठा हलवा पूरी विद तरकारी और ऑमलेट विद पराठा सर्व्ड विद अ कप ऑफ हॉट कड़क चाय फॉर ओनली $8.99 अवेलेबल ड्यूरिंग वीकेंड ब्रेकफास्ट आवर्स एट सिग्नेचर क्विजीन इन प्लेनो वीकेंड का मूड गर्मा गर्म देसी फूड विजिट सिग्नेचर क्विजीन .net
21: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
22: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
21: क्या मतलब?
22: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
21: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
22: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
21: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
23: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
24: इस दिवाली कॉपल में देखिए एक भव्य नजारा गणेशा लक्ष्मी और सरस्वती के ग्रैंड LED कटआउट्स और पहली बार रामलीला साउथ एशियन फूड फेस्टिवल बाय बिंदास सर्विसेज नवंबर 1st द साउंड कपेल

डैलस की जनता की हाल चाल, आर यू गाइस डूइंग ओके? वेल, लगता है हम लोग ऑटो प्ले लगाना भूल गए, तभी आपको सुनसान सी आवाज, सुनसान सी तो आवाज होती नहीं है, बट सन्नाटा, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? भाई कोई, डोंट वरी, इपी द हिपी इज बैक इन द स्टूडियो, एंड लेट्स गेट द शो ऑन द रोड. भाई बाहर तो बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, यहाँ पे तो बारिश हो रही है. आपके वहां बारिश हो रही है कि नहीं? बारिश इज ऑलवेज वेलकम इन डैलस, है ना? मुझे तो लगता है अभी इतनी अच्छी बारिश हो रही थी कुछ दिनों पहले, फिर मौसम ठंडा हो गया एंड देन इट्स हॉट अगेन नाउ. हाउएवर, अभी यहाँ तो बड़ी अच्छे से सुंदर सी बारिश हो रही है. आई होप अगले 2-3 दिन तक ये बारिश रहे. ओह, लुक्स लाइक रहेगी 2-3 दिन तक बारिश. तो गाइज, लेट्स एन्जॉय दिस ठंडे ठंडे मौसम का आनंद एंड इन्जॉय दिस सॉन्ग विच जस्ट रिलीज बाय द वे 5 days ago. दिस इज फ्रॉम द न्यू प्रहार. एक पुरानी मूवी भी थी प्रहार विथ नाना पाटेकर, बट दिस इज न्यू विथ राजकुमार राव एंड वमिका. आई डोंट नो हु दैट इज, न्यू गर्ल, बट एन्जॉय द सॉन्ग.

भाई अगर आपको नहीं पता वो गाना किसका था, वो गाना था अनूव जैन का, हु इज एन इंडी आर्टिस्ट एंड इफ जस्ट सो यू नो ही इज सो सो सो पॉपुलर दीज डेज. एवरीबडी लव्स हिज सिंगर सॉन्ग राइटर स्टाइल अकूस्टिक गिटार के साथ. एंड ही ओपन फॉर सम इंटरनेशनल आर्टिस्ट ऑल्सो वेरी रिसेंटली इन इंडिया. तो ऑफकोर्स इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ ओपन करना, और आई टेल यू हु इट वॉज जेकब कॉलियर, हु इज लाइक दिस मल्टी ग्रैमी विनिंग आर्टिस्ट, हु इज अ जैज आर्टिस्ट बाय द वे. एंड ही वॉज परफॉर्मिंग इन इंडिया एंड अनूव जैन एक्चुअली ओपन फॉर हिम. और जो उनके जो मैनेजमेंट थे उन्होंने ऐसा किया कि उनका कोलेबोरेशन भी कर दिया, तो स्टेज पे लाइव कोलेबोरेशन था. लेकिन भाई एक सिंगर सॉन्ग राइटर जो सिंपल चार कॉर्ड बजा के गाने वाले पर्सन, और साथ में अगर आप जैज म्यूजिशियन को बिठा दो तो कितना रॉन्ग कॉम्बिनेशन जाएगा. बेचारा अनूव जैन वॉज टोटली आउट ऑफ हिज कम्फर्ट जोन एंड ही कुड नॉट इवन लगाओ वन सुर. एंड देर वॉज लाइक दिस रियली बिग कॉन्ट्रोवर्सी ओवर लाइक हाउ कैन दीज आर्टिस्ट बिकम सो पॉपुलर. टू बी ऑनेस्ट आई मीन ही भाई अलार्म तो बज गया, कोई बात नहीं. टू बी ऑनेस्ट ही इज नॉट अ बैड सिंगर इन माई ओपिनियन, बट मतलब ही डज सिंपल म्यूजिक एंड समवन लाइक जेकब कॉलियर डज वेरी वेरी एडवांस म्यूजिक, सो मच दैट इवन द बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट एकेडेमिक्स इन म्यूजिक डोंट नो वॉट ही इज टॉकिंग अबाउट. हाउ एवर उसके बाद में हम बात करेंगे. मुझे तो अनूप जैन के गाने ठीक ठाक ही लगते हैं. आई थिंक दे आर सिंपल, दे आर क्राउड फ्रेंडली एंड दे आर क्वाइट इंजॉयबल. आई मीन इफ यू आर इन द राइट मूड, राइट? सो यू शुड डेफिनेटली गो चेक हिम आउट. ही इज़ वेरी वेरी पॉपुलर, वेरी वेरी पॉपुलर. आई मीन लाइक ही इज़ गॉट लाइक मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लिसनर्स ऑन स्पॉटिफाई एंड यूट्यूब. सो डेफिनेटली चेक इट आउट. आगे बढ़ते हुए गाइज, आज ही मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक पर्सन वॉज टॉकिंग अबाउट द स्टेट्स ऑफ टेक्सस, अटलांटा, जॉर्जिया एंड वर्जीनिया. दीज स्टेट्स, यहाँ पे प्रॉपर्टी के प्राइसेस बहुत ही कम हो चुके हैं. यू नो व्हाई? बिकॉज देर आर सो मैनी फोरक्लोजर्स, पीपल आर नॉट बीइंग एबल टू अफोर्ड देयर होम्स. देव लिव 4-5 years, अ लॉट ऑफ देम आर अबैंडनिंग देयर हाउसेस एंड इट्स नॉट वन, इट्स लाइक एक्चुअली प्रॉपर्टी रेट्स आर लाइक रियली स्लैशिंग डाउन. एंड सो दैट्स वाई ही वॉज सेइंग लाइक कि गाइज इंटरेस्ट रेट तो कम नहीं हो रहा है लेकिन प्रॉपर्टी के प्राइसेस गिर रहे हैं बिकॉज पीपल आर नॉट बीइंग एबल टू अफोर्ड इट एंड ऑल ऑफ दैट. सो इफ यू आर लुकिंग टू बाय एंड इफ यू आर इन द बायर्स मार्केट राइट नाउ एंड यू हैव द फंड्स, दिस इज द टाइम टू एक्सप्लोर दीज अपॉर्चुनिटीज. बिकॉज मे बी एक दो महीने में, अभी से आप ढूंढने लगोगे तो शायद एक दो महीने में आपको अपने सपने का घर मिल ही जाएगा. इसीलिए रीच आउट टू ड्रीम होम मॉर्गेज, क्योंकि सिंस 1998 दे हैव हेल्प्ड फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री विथ पर्सनलाइज मॉर्गेज सोल्यूशन. चाहे आप बाय कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम बायर हैं या फिर रीफाइनेंस कर रहे हैं, कॉल 972-245-5626 और विजिट dreamhomemortgage.com. यू नेवर नो, मे बी आपका सपनों का घर वहीं पे होगा, ऑबरी में कहीं पे, और आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगा बिकॉज इट इज अ बायर्स मार्केट. इफ यू नो यू नो. लेट अस लिसन टू दिस नेक्स्ट सॉन्ग एंड देन वी विल गो इनटू अ ब्रेक आफ्टर दैट.

0: Guys, we're about to go into a break now.
1: तो बताइए आजकल स्ट्रेस किस बात का है?
2: डॉक्टर साहब, हर महीने वही कहानी। इलेक्ट्रिसिटी बिल कभी भी बढ़ जाता है, कस्टमर सर्विस डोंट आंसर, और रिन्यूअल के टाइम बस नए सरप्राइजेस। सच कहूँ, बिजनेस कम, टेंशन ज्यादा है।
3: क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं?
1: यू नो, आपको थेरेपी की नहीं, तारा कमर्शियल एनर्जी की जरूरत है।
4: 2002 से तारा कमर्शियल एनर्जी टेक्सास के बिजनेसेस को कम्पेटिटिव कमर्शियल एनर्जी प्लान्स और डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट दे रही है। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com।
5: दिल की बात किससे कहें?
6: पंडित गुरुदेव से। 35 साल से ज्यादा के एक्सपीरियंस के साथ पंडित गुरुदेव करते हैं कुंडली रीडिंग, बर्थ चार्ट एनालिसिस, पाम रीडिंग और फेस रीडिंग, ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एनर्जी रिमूवल में एक्सपर्टाइज। प्यार, शादी या रिश्तों की उलझन हो तो पर्सनल गाइडेंस लीजिए। कॉल 4695811777। That's 4695811777. Pandit Gurudev, आइए अपनी बात कहिए।
7: रेस्टोरेंट चूज करना हो, गूगल रिव्यूज। होटल बुक करना हो, गूगल रिव्यूज। लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इंपॉर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू।
4: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स, 2023 थ्रू 2026। मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज एवरी हेल्दी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड केयर। कॉल 214-666-6259 एंड शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट्स टुडे।
8: एकता मंदिर DFW हिंदू टेंपल सोसाइटी प्रेजेंट्स नवरात्रि महोत्सव अक्टूबर 11th टू 20th।
4: डेली पूजास, आरतीज, ललिता सहस्रनामम, महामंगल आरती, माताजी पूजा और हर शाम 8:30 बजे रास गरबा।
8: अक्टूबर 16th 17th सरस्वती पूजा और अक्षर अभ्यासम।
4: अक्टूबर 17th माता की चौकी।
8: अक्टूबर 18th दुर्गाष्टमी हवन और 20th रामलीला और रावण दहन।
4: विजिट hindutemple.org और कॉल 972-445-3111।
9: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया। ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस।
10: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
9: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
10: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
9: ये क्या होता?
10: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
11: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस,
4: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
12: Order. Mr. Impressions, campaign का result.
13: Your Honor, हजारों लोगों ने ad देखा.
12: Miss Clicks?
14: 100 लोगों ने click भी किया.
12: Customers कितने आए?
15: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
16: Marketing में clicks नहीं, customers matter करते हैं. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smartreach AI, turn attention into customers. Smartreach AI, a Phanasia Network product.
17: हुजूर, आपको चुनना होगा, हम या ये बिरयानी।
18: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
17: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
18: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
19: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill, authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
4: Happy hours Monday through Friday from 3 PM to 7 PM.
19: Barista House, richness of biryani bliss.
7: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.

भाई हमें बंदूकों की आवाज़ सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम टेक्सास में रहते हैं। टेक्सास में ऐसी न्यूज़ वैसे ही आती रहती है बहुत बार, तो वी डोंट नीड टू मेक इट अ पार्ट ऑफ द सॉन्ग। हाउ एवर, थैंक यू टू जुम्पा सरकार फॉर आंसरिंग दैट क्वेश्चन एंड विनिंग दैट प्राइज। कंग्रेचुलेशंस भाई, आप लोगों ने बहुत सारे कॉल्स किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक ही को प्राइज़ मिलता है। जिसकी भी कॉल पहले कनेक्ट होती है उनको मैं आंसर कर देती हूँ। अभी मुझे थोड़ी देर पहले एक और कॉल आई, उन्होंने बोला कि ये एक गाना तो वी ऑल गेस्ट की आज की रात था, दूसरा गाना कौन सा था? भाई दूसरा गाना जो था वो ओरिजिनल वाला है, विच इज रात बाकी। अगर आपने थोड़ा सा और सुना होता इंट्रो का, विच आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड इट, क्योंकि मैं पूरा गाना वैसे ही बजाया था, उसमें एक वो बेस लाइन आती है, डिंग डिंग डिंग डिंग डिंग डिंग डिंग डिंग डिंग डिंग डिंग, तो वो वाली बेस लाइन जो है रात बाकी में भी है। इट इज द सेम बेस लाइन विच हैज बिन पिक्ड अप एंड पुट इन दिस सॉन्ग। हाउएवर आई थिंक इट वॉज नॉट रियली इंटेंडेड एज अ कॉपी, बट इट वॉज इंटेंडेड एज अ ट्रिब्यूट, बिकॉज रात बाकी इज ऑल्सो बेस्ड ऑन अ सिमिलर स्पूकी थीम। एंड उस टाइम 70s में डिस्को वाला वाला वाइब चल रहा था, डॉन भी 70s में आई थी, सो आई थिंक दैट वॉज द होल आइडिया। तो बिकॉज हमने वो बोला, अभी आई विल प्ले रात बाकी फॉर यू। हाउएवर वो बोलते बोलते मैं एक बात तो बताना भूल ही गई, गाइज माई बैंड इज परफॉर्मिंग ऑन द 30th of October एट स्टीव्स वाइन बार इन डेंटन। सो इफ यू गाइज आर इन टाउन, और इफ यू जस्ट वॉन्ट लिसन टू सम इनक्रेडिबल लाइव म्यूजिक विद एन इनक्रेडिबल बैंड एंड मी, एंड आई एम द लाइक द फ्रंट वूमन एंड द लीड वोकलिस्ट ऑफ दैट, देन डेफिनेटली कम बाय। वी प्ले एक्चुअली बोथ ऑफ दीज ट्यून्स, ये आज की रात एंड रात बाकी, एज अ पार्ट ऑफ माई बैंड, एंड वी प्ले अ लॉट ऑफ अदर अमेजिंग डांसिंग हिट्स ऑल द वे फ्रॉम द 1950s टू द मॉडर्न डे टाइम। सो इनफैक्ट इस दोनों गाने का जो हम लोग ना क्या करते हैं, वी डू लाइक अ मेडली, सो आज की रात ब्लेंड्स इन टू रात बाकी एंड इट्स लाइक रियली कूल। सो यू शुड डेफिनेटली कम बाय। अलॉन्ग विद दैट वी हैव अनदर डिस्को मेडली विच इज़ लाइक नॉन स्टॉप 15 minutes ऑफ फुट थम्पिंग डिस्को म्यूजिक। सो यू शुड डेफिनेटली कम बाय एंड चेक इट आउट। 30th of October, स्टीव्स वाइन बार इन डेंटन। येस, एंड दिस इज अ सिंग अलॉन्ग इवेंट, सो विच मीन्स इफ यू नो द सॉन्ग यू कैन सिंग अलॉन्ग विद इट, और इवन इफ यू डोंट नो द सॉन्ग वील गिव यू अ QR कोड वे यू कैन पुल अप द लिरिक्स एंड यू कैन सिंग अलॉन्ग विद अस। इट्स गोइंग टू बी सुपर सुपर सुपर अमेजिंग, सो डेफिनेटली कम बाय फॉर दैट वन। अभी के लिए एंजॉय द सॉन्ग।

0: Now in Main Street, Frisco, PMJ Jewels, India's finest, Dallas's newest.
1: Call 857-891-8942 today.
2: अजी सुनते हो?
3: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
4: The OG of Tax Planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
6: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
0: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
9: आर यू लुकिंग फॉर अ स्मार्टर अप्रोच टू रिड्यूसिंग टैक्सेस व्हाइल बिल्डिंग एंड प्रिजर्विंग वेल्थ? माय टाइम एक्विटी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म लेड बाय CPA सुधीर पाई, ऑफर्स एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, टैक्स एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, रियल estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
10: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
11: It's the time to clock out.
12: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, jahan tandoor ki smoky khushboo, sizzling flavors aur chatpate appetizers make an ordinary weekday feel like a delicious celebration. Every Monday through Friday from 5 to 8 p.m., order any two entrees and get one appetizer absolutely free. Bring your family, friends and your appetite. Visit Tandoori Flame in Garland. Terms and conditions apply.
13: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया? कभी पॉलिसी समझ भी आया?
14: नहीं आया।
13: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jumani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
4: Visit www.sanadainc.com today.
15: Discover Tassels by Renu in Frisco. Designer ethnic wear at great prices.
16: From elegant saris, lehengas to Indo-Western fusion sets and men's ethnic wear. Find festive and wedding styles.
15: For exclusive deals and collections, join Renu's weekly Facebook Live or follow them on Insta.
16: Visit TasselsByRenu.com or call 563-508-5673. That's 563-508-5673. Tassels by Renu. Dress beautifully, celebrate stylishly.
17: Your Dubai investment opportunity is here. Success Real Estate and Danu Properties present the Grand Dubai Property Show, October 17th and 18th, 10 a.m. to 9 p.m. at Lux Hotel Arlington. Explore luxury properties with payment plans starting at $1,300 a month. Meet the developer directly, book at the show and qualify for round-trip flights to Dubai and a luxury hotel stay for two. Call Habib Mita at 954-790-2620. That's 954-790-2620.

And guys, we are back. Yes, this is Ippy the Hippie, and you are still listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. और हम लोग खेलते हैं हमारा दूसरा गिव अवे गेम, विच इज फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स. ऑफ कोर्स चंडीगढ़ बाइट्स, अगर आपको नहीं पता, दे आर लोकेटेड ऑफ ऑफ मैकडर्मट ड्राइव एंड एलन, एंड दे हैव अ न्यू लंच थाली मेन्यू विच रोटेट्स एवरी सिंगल डे. And they have new dishes, you know, every single day. So definitely go check it out or visit chandigarhbites.com. So aap kya jeet sakte hain? $10 off on a dine-in bill of $50 or more, which means you need to order for $50 at the restaurant and then you can get $10 off from there. Please make sure aapne pichle ek mahine mein ye wala ya koi aur giveaway nahi jeeta, kyunki baaki ko bhi chance dena chahiye, guys. To hum log khelenge apna word antakshari. ये गाना बहुत इजी है. वर्ड अंताक्षरी गेम आपको जैसे पता ही है, मैं एक गाना बजाऊंगी और आपको उससे एक वो गाना गाना है. कोई भी उससे एक वर्ड उठाइए और उससे एक गाना गाना है, ठीक है. यू ऑलरेडी प्लेड दिस गेम, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट अगेन, हाउएवर आई स्टिल डिड इट. एंड द नंबर इज 972-235-5555. एंड हियर वी गो, हियर इज आवर फर्स्ट सॉन्ग. Not first song, the only song.

भाई हमें थोड़ी देर पहले रिक्वेस्ट आई थी, अब ये वाला गाना रिक्वेस्ट आई है और ये ना मैं ना बजाऊं तो कैसे चलेगा? तो ये पग घुंगरू बांध फॉर मिस्टर डीजे।

Yeah.

0: सुन सकते हैं, वो बहुत लंबा गाना है, अगर जिसको नहीं पता वो 11 मिनट का गाना है, अगर वो गाना बजता रहेगा तो हम ब्रेक में भी चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो अभी गाना बजते बजते मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कॉल आई, एक वन ऑफ आर लिसनर्स अस्मिता है उनका नाम, उनकी छोटी सी एक बड़ी प्यारी सी बच्ची है, एंड उसने बच्ची ने सबको गाना गाते हुए सुना रेडियो पे, क्योंकि हम लोग वे करते हैं, एंड शी ऑल्सो वॉन्टेड टू सिंग पर गिव अवे के लिए नहीं है, तो वी थॉट यू नो व्हाट, व्हाई नॉट, लेट्स गिव हर लिटिल बिट टू सिंग फॉर द रेडियो, सो शी कैन वी कैन ऑल हियर हर ब्यूटिफुल वॉइस। दिस इज अस्मिता एंड हर डॉटर, वन सेकेंड हियर।
1: Let's give her.
0: हाय, कैन यू हियर मी अस्मिता?
1: Yes, I can.
0: ओके ग्रेट, अस्मिता से हाय टू आवर लिसनर्स फर्स्ट ऑफ ऑल।
1: Hello, everybody, and hello from my 7-year-old daughter, Kimaya.
0: आपकी
1: Can I say
0: डॉ
1: hello?
0: किमाया,
1: Hello.
0: हाय किमाया, हाय स्वीट हार्ट, हाउ आर यू डूइंग?
2: I'm doing good.
0: ओके, व्हाट आर यू गोना सिंग फॉर अस किमाया?
2: कौन तुझे यू प्यार करेगा?
0: ओके, गो फॉर इट, टोटली, हियर द फ्लोर इज ऑल योर्स।
2: व्हाट? डोंट वांट,
1: यस, गो गो।

0: रहती हूँ, हवा के जैसे चलता है तो मेरे तुझे से उड़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ।
1: वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशंस भाई, बड़ा अच्छा गाया, जोर से तालियां हो जाए। हम नॉर्मली ये सब करते हैं नहीं, ये सिर्फ हमारे गिव अवे के लिए है, बट शी रियली वॉन्टेड टू सिंग अ सॉन्ग, तो हमने बोला यू नो वॉट, लेट्स मेक एन एक्सेप्शन फॉर द 7-year-old। भाई माता का टाइम है और हमारे बंगाली कल्चर में हम लोग तो दुर्गा माता को बेटी जैसे मानते हैं, सो दैट इज वाई फॉर आर लिटिल बेटीज ऑफ DFW दिस वंस वेरी गुड जॉब रिमाया, वेरी नाइस,
2: थैंक यू सो मच।
1: ऑफकोर्स। तो अस्मिता, कैन वी प्ले अ रिक्वेस्ट फॉर यू?
2: Of course, yes, please. Actually, it would be from my daughter only. Usko jo bhi sunna hoga, uska one of the favorite song hai, Itni Si Hasi, Itni Si Khushi, if you guys can play that.
1: For sure. I'll play that song right after the song, okay? All right,
2: thank
1: guys.
2: You so
1: thank
2: much.
1: You so much.
2: Appreciate it.
1: Thank you. All right, guys. That was Asmita and her beautiful daughter, Ramaya. And kitni sweetly usne gaya. I mean, that was so nice. आप ये गाने एंजॉय करिए। व्हेन वी आर बैक फ्रॉम आवर ब्रेक, वी आर अबाउट टू गो इनटू अ ब्रेक, बट व्हेन वी आर बैक फ्रॉम द ब्रेक, आई एम गोना प्ले यू सम मोर रिक्वेस्ट एंड वी विल कंटिन्यू आवर कॉन्वर्सेशन दैट वी वर हैविंग यस्टरडे अबाउट लव एंड रिलेशनशिप्स। यस यस यस, यू नो, एज वी ऑलवेज डू।

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो, ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com. El Wing walo, dhyan se suno. Ye sirf music nahi, hint hai. Because the best chicken in Dallas is finally in Irving. Crispy, juicy, bold. The chicken Dallas has been craving after Plano and Richardson. Sal's Hot Chicken is now in Irving, bringing the crunch, the flavor, and the heat. You heard chicken, we heard Sal's. Grand opening on 10th October.
3: Yaar, festival season aa raha hai. Aur meri wife ne shopping list bhi de di hai.
4: Kitni lambi list hai?
3: Bas, do pages.
2: इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ, एक पूजा मंदिर भी।
4: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो, SFL Worldwide है ना। इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं। पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है।
5: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL Worldwide, शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड Worldwide. विजिट SFLWorldwide.com. 15th को फेस्टिव शॉपिंग,
6: उसके बाद फ्लेवर लाउंज,
5: 20 को गरबा का प्लान,
6: देन फ्लेवर लाउंज,
5: 1st को दिवाली मीटअप,
6: लेट्स केटर फ्रॉम फ्लेवर लाउंज।
5: और आज कोई प्लान ही नहीं है
6: तो चलो फ्लेवर लाउंज।
7: खाने वालों को खाने का बहाना चाहिए।
2: सेलिब्रेशन हो, शॉपिंग की भूख या बस कुछ अच्छा खाने का मूड, डाइन इन और केटरिंग, थिंक फ्लेवर, थिंक द फ्लेवर लाउंज फ्रिस्को। इस फेस्टिव सीजन हर प्लान में थोड़ा फ्लेवर, खाने वालों को खाने का बहाना चाहिए।
8: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
9: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
2: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर।
10: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
2: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं।
10: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी।
9: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड। बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर।
0: ये लास्ट दिवाली पहना था ये नेहा की शादी में, इस पे तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर डीपी है।
11: हे भगवान, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है।
12: जब वार्डरोब में हो फैशन का अकाल, तो सीधा इंडियन अटायर जाओ बालिके।
0: प्रभु, डिस्काउंट भी मिलेगा?
12: ऑफ कोर्स, फेस्टिव कलेक्शन पर अप टू 25% ऑफ। तथास्तु।
2: डिस्कवर स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी एंड फेस्टिव स्टाइल्स फॉर मेन एंड किड्स, ऑल एट इंडियन अटायर ऑन 2995 प्रेस्टन रोड, फ्रिस्को। इंडियन अटायर फ्रिस्को, योर डिवाइन डेस्टिनेशन फॉर फेस्टिव फैशन।
13: Hey, are you going to Ravi's Trade Market this year?
2: Of course. Where else can you check out new products, meet vendors, grab exclusive deals, giveaways, and save big for your store?
13: When is it?
2: Thursday, October 29th, Friday, October 30th, and Saturday, October 31st from 9 a.m. to 5 p.m. at Ravi's Import Warehouse on Harry Hines Boulevard in Dallas.
13: Perfect. I'll register ahead on shopravis.com. Ravi's 21st Annual Trade Market. Bigger deals, bigger opportunities, bigger business. Customers must bring their valid tax number and tobacco license.
14: Hey everybody, this is Asim and you're listening to the rocking music of my film only on Fun Asia Radio.

तो गाइज यू आर स्टिल लिसनिंग टू इपी द हिपी ओनली ऑन फनेशिया रेडियो 104.9 FM. इट इज 8:43 ऑन द क्लॉक. तो गाइज हमने हमारे दो गिव अवे तो कर लिया है. हाउएवर इफ यू हैव अ बिजनेस एंड यू आर नॉट एबल टू रीच पोटेंशियल कस्टमर्स देन यू नीड टू रीच आउट टू स्मार्ट रीच AI बिकॉज बिजनेस ओनर्स इट इज नॉट अबाउट हाउ मेनी पीपल जस्ट क्लिक ऑन योर एड बट इट इज हाउ दे बिकम कस्टमर्स. This is a product which is launched by the Funasia Network and it helps you reach potential customers because by the end of it, what matters is how many sales you're getting, how many bookings you have, how many offer redemptions. It does not matter ki aapke ad pe kitne logon ne click kiya Instagram pe. Wo click ke baad kuch sale hua ki nahi. To agar aapka aisa koi business hai and you want to reach out to more customers, visit smartreachai.us and turn local attention into customers. Okay. So, guys, aaj main soch rahi hoon, matlab these days na, I have somehow found myself back into Hindustani classical music also, as most of you know, ki I'm like a professional singer and all of that. And I have my band, we do a lot of performances and I teach. That is my main job. I teach multiple instruments and you know that is what I do. ये रेडियो तो मैं मज़े के लिए करती हूँ क्योंकि मुझे आपसे बातें करने में बहुत मज़ा आता है. एंड सो एवरी टाइम आई कम हियर इज जस्ट सो मच फन व्हेन यू गाइस कॉल मी एंड देन यू टेल मी ऑल योर कॉन्वर्सेशंस एंड आज ये हुआ जो हुआ. आई जस्ट लव इट. आई जस्ट डू इट फॉर फन. तो इसीलिए मैंने आज सोचा, आई मीन आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड गोइंग बैक इनटू माय रियाज एंड आई एम रियली थरली एंजॉयिंग इट. मैं रोज़ करती हूँ, रोज़ सुबह एक घंटा मेरा मॉर्निंग का रियाज का टाइम होता है. तो इसीलिए आज मैंने सोचा यार नवरात्र का मौका है तो व्हाई नॉट प्ले यू सम इन हिंदुस्तानी क्लासिकल इंस्पायर्ड म्यूजिक. ओके नाउ डोंट वरी, मैं क्लासिकल नहीं बजा रही हूँ. आई नो इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी. हाउएवर देयर इज अ लॉट ऑफ बॉलीवुड म्यूजिक आउट देयर व्हिच इज रियली रियली इंस्पायर्ड बाय अ लॉट ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल. और वो सुन के ही आपको पता चल जाएगा कि उसमें थोड़ा सा क्लासिकल टच है. एंड दे आर मॉडर्न इंटरप्रिटेशंस, दे आर मॉडर्न सॉन्ग्स, लेकिन कुछ कुछ में तो इतना सही से डालते हैं ना उसको, बट आई लव इट. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन.

0: नहीं, उसका गला काट दिया, वो तो हमें, हमने मूवी सारी सबने देखी है. आई डोंट नीड टू टेल यू. हाउ एवर आई डू नीड टू टेल यू दैट दिस मूवी, द वे इट मेड बंगाली वुमेन पॉपुलर जस्ट बिकॉज यू नो देर वॉज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस मूवी हु वॉज मोंजुलिका द भूतनी, शी वॉज अ बंगाली वुमन. एंड यू नो वॉट हैपन्ड आफ्टर दैट एवरी टाइम, एंड दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड नॉट जस्ट माइंड बट अ लॉट ऑफ बंगाली गर्ल्स आउट देयर, आई नो यू ऑल हैव हर्ड दिस फ्रॉम सम वन और दी अदर, इज द मोमेंट यू गो आउट ऑन अ डेट विद अ नॉन बंगाली पर्सन द फर्स्ट थिंग दे आस्क यू इज, अरे तुम मोंजुलिका को जानती हो क्या? एंड आई एम लाइक ब्रो, मोंजुलिका के पहले भी बहुत सारी बंगाली वुमेन थी, इंक्लूडिंग सुष्मिता सेन हु वन मिस वर्ल्ड एंड सो मेनी अदर एब्सोल्युटली गॉर्जियस बंगाली वुमेन. जस्ट बिकॉज एक भूतनी आ गई तो हम लोगों का एक मतलब एक जोक बन गया उस तरह से, विच इज़ वेरी ऑफेंसिव. नेक्स्ट टाइम गाइज, स्पेशली द नॉन बंगाली गाइज, इफ यू गो आउट विद अ बंगाली गर्ल, नेवर आस्क एनी वन दैट. आई एम टेलिंग यू, शी इज़ गोना गेट सो ऑफेंडेड एंड यू प्रॉबली will not get a call back from her later, 100%. So don't, do not ask that. And that is so generic, it is not even original. मतलब सभी ये joke मारते हैं. तो guys, इसके बारे में और बातें करेंगे after this commercial break. We're about to go into a commercial break in just a little bit. लेकिन break से वापस आइए, we will continue our discussion that we were having yesterday and I will see you really, really soon.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग।
1: बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो।
0: जब गाना बोले बिंदास तो शाम भी होगी बिंदास। जॉइन बंदा बिंदास मारविंदास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार सिर्फ वनीशा रेडियो पर।
2: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
3: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
2: क्या मतलब?
3: Ura can help us save up to 50% on our total

0: हिमालयन बाजार सिर्फ अनीशा रेडियो पर।
1: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
2: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
1: क्या मतलब?
2: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
1: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
2: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
1: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
3: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
4: जब सेलिब्रेशन देसी हो तो अंदाज भी खास होना चाहिए. इस फेस्टिव सीजन अपने ट्रेडिशनल स्टाइल को दीजिए एक ग्रैंड अपग्रेड विद मान्यवर मोहे. फेस्टिव और वेडिंग वेयर फॉर मेन एंड वुमेन.
5: विजय देवरकोंडा की कॉन्फिडेंट स्टाइल हो या रश्मिका की एफर्टलेस ग्रेस. गेट दैट परफेक्ट लुक डिजाइन फॉर एवरी सेलिब्रेशन.
4: लोकेटेड एट I-635 इन इरविंग. मान्यवर मोहे, सेलिब्रेशन आपका अंदाज खास.
5: ओपनिंग सून ऑन रोनाल्ड रेगन बुलेवार्ड इन लियांडर ऑस्टिन.
0: हो सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो. जॉइन पासिया एंड मार्केट योर बिजनेस फॉर फ्री. शोकेस योर डील्स एंड गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स नियर बाय. पासिया, बी वेयर योर कस्टमर्स आर लुकिंग.
6: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
5: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 days a week, 8 AM to 8 PM. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
7: हर मोहब्बत की आवाज, the one and only living legend, Rahat Fateh Ali Khan.
8: Rahat Fateh Ali Khan.
5: Experience Once Upon a Time World Tour 2026. Rahat Fateh Ali Khan और उनके बेटे Shahzaman Ali Khan एक ही स्टेज पर.
7: Brought to you by Rehan Siddiqui, Dr. Yasmin Qureshi and True Payment Solutions. Friday, October 16, 8:30 PM, Comerica Center, Frisco.
5: Grand sponsor Karahi Point Plano के exclusive concessions के साथ.
7: Tickets on Ticketmaster and Sulekha.com.

भाई अगर आपने वो मूवी नहीं देखी तो जरूर देख लेना। आई एम श्योर सबने देखी है। दिस इज फ्रॉम द मूवी हम दिल दे चुके सनम। और उस मूवी में हमारा जो कल की हमारी जो बात थी, विच इज टू इज फिजिकल अट्रैक्शन रियली इम्पोर्टेंट, और कैन यू लुक बियॉन्ड द फिजिकल अट्रैक्शन ऑल्सो। तो उसमें इवेंचुअली वॉट ऐश्वर्या राय डिसाइड्स टू गो बैक टू अजय देवगन इंस्टेड ऑफ यू नो चेजिंग हर पुराना प्यार विच इज यू नो सलमान खान इन द मूवी, ऑफकोर्स नॉट इन रियल लाइफ। यू नो वेर शी पिक्स द पर्सनैलिटी, शी पिक्स द पर्सन ओवर द वे दे लुक, बिकॉज इन द मूवी ऑल्सो दे शोड अजय देवगन्स पर्सनैलिटी टू बी लाइक द सीधा साधा भोरा भोला वाला टाइप गाय हु डिडंट नो एनी म्यूजिक, यू नो डिड नॉट हैव अ कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी, काइंड ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड। एंड इवेंचुअली शी स्टिल पिक्स हिम बिकॉज शी रियलाइजेज दैट देर इज मोर टू लव एंड अट्रैक्शन देन जस्ट फिजिकल अट्रैक्शन। तो नाउ टूडे मूविंग ऑन, वी आर गोना टॉक अबाउट द डेटिंग ऐप इफेक्ट। ओके, एज यू ऑल नो दैट डेटिंग ऐप्स आर प्रीटी मच रूलिंग द गेम वेन इट कम्स टू मॉडर्न रिलेशनशिप्स। ओके, पीपल आर नाउ, बिकॉज पीपल आर बेसिकली क्या हो रहा है कि पीपल हैव स्टॉप गोइंग आउट इन पब्लिक। देर आर स्टिल पीपल हु आर गोइंग आउट इन पब्लिक, बट हाउ एवर आई थिंक आफ्टर 2020 मोस्ट पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम, एंड इवन इफ दे डू गो आउट इट्स एट द मोस्ट टू द जिम और द ग्रोसरी स्टोर और मे बी यू हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स, सो यू नॉट रियली लाइक मीटिंग न्यू पीपल लाइक यू वुड अर्लियर मीट। एंड ऑफकोर्स मोर देन दैट ऑल्सो people have actually forgotten how to talk to maybe a stranger. We talked about this a few weeks ago if you remember, and so most people find it easier to go online either through online dating or shaadi.com or bharat matrimony, any of these websites which have also become by the way dating websites now from what I have heard from most people, because people are not looking for long term shaadi ke matches on there, people are just treating it like a dating app. या फिर इफ यू जस्ट लुक एट जस्ट जनरल डेटिंग एप्स लाइक टिंडर, बम्बल, हिंज, कितने सारे हैं, कॉफी मीट्स, बेगल, दिल मिल फॉर माई साउथ एशियन पीपल, यू नो वे एवरीबडी फाइंड इट सो मच इजियर टू गो स्वाइप लेफ्ट स्वाइप राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप लाइफ राइट राइट। एप्स पुट आउट फोटोज एंड डज दैट टिल्ट एंड एवरीथिंग काइंड ऑफ टूवर्ड्स द लुक्स राइट। क्योंकि अब सबसे पहले मैंने एक बार ना एक अपने गाय फ्रेंड से बात करी, मैंने कहा यार जब तू डेटिंग ऐप पे स्वाइप करता है व्हाट डू यू लुक फॉर, डू यू रीड द बायो? कहता नहीं बायो कौन देखता है, हम तो शक्ल देखते हैं, फोटो देखते हैं, उसके बाद लेफ्ट राइट स्वाइप करते हैं। और कहता है मैं तो सब पे ही राइट राइट स्वाइप करता हूँ, किसी के साथ मैच हो गया तो ठीक है। इट्स काइंड ऑफ लाइक लॉटरी नहीं खेलते लोग कसिनो में जाके एक कॉइन में डालते हैं कॉन्स्टेंटली की प्लेइंग, कभी ना कभी जैकपॉट लग जाएगा, वैसे ही मैच हो जाएगा। डेटिंग ऐप का तो चक्कर वही बन चुका है आई थिंक, एटलीस्ट फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। बट या वी गोना टॉक मोर अबाउट दिस आफ्टर द सॉन्ग।

वेलकम गाइस, वी आर बैक. यस यस. तो जैसे हम बात कर रहे थे अबाउट डेटिंग एप्स एंड हाउ एवरीथिंग हैज बिकम, लुक, थिंक अबाउट दिस. हम लोग वैसे तो यहाँ पे वी कैन ऑल सिट एंड टॉक अबाउट दैट हाउ फिजिकल अट्रैक्शन डजंट रियली मैटर, बट यू नो वी हैव टू रियलाइज द फैक्ट दैट 90% ऑफ द पीपल आउट देयर आर चूजिंग टू डेट और मीट न्यू पीपल ईदर थ्रू ऑनलाइन शादी मैट्रिमोनी वेबसाइट्स या फिर डेटिंग एप्स. और वहाँ पर सबसे पहले आप क्या देखते हो? फोटो ही देखते हो ना. तो दिस इज बेसिकली द फर्स्ट फिल्टर. द ऐप आस्क्स यू टू डिसाइड कुछ ही सेकेंड में, मोस्टली फ्रॉम पिक्चर्स, हु डिजर्व्स टू हैव अ कॉन्वर्सेशन और नॉट. दैट फेवर्स वॉट इज विजिबल एंड वॉट इज क्विक टू जज. इन फैक्ट मुझे तो ये भी पता चला है दैट a lot of people are choosing to hire professional photographers to just click their dating app pictures. You know, people are not using those bathroom mirror selfies ya fir party wali photos and all that. Of course, if you're in Texas, then you know most of the guys like to hold a fish ya fir some kind of very Texas thing while they put their photograph. I don't know what's with this fish thing, guys. I mean, I don't know, but yeah, बेसिकली अगर आपकी शक्ल सूरत थोड़ी बहुत ठीक ठाक है तो आपको स्वाइप्स मिलेंगे, और अगर आपकी शक्ल सूरत ठीक ठाक नहीं है तो आपको स्वाइप्स नहीं मिलेंगे. अनफॉर्चुनेटली दैट इज द रियलिटी. द रिस्क इज दैट यू स्क्रीन आउट पीपल हु हैव ग्रोन ऑन यू एंड यू विल नेवर फाइंड आउट वेदर यू हैव समथिंग इन कॉमन विद दिस पर्सन और नॉट, बिकॉज अट्रैक्शन फॉर मेनी पीपल मोस्टली बिल्ड्स थ्रू कॉन्वर्सेशन, लाफ्टर and shared experiences. None of this fits in like one chota sa thumbnail jisko aap swipe left right karoge. So that's why the dating app culture is very very broken in my opinion. I'll give you this advice that I would normally tell a friend, okay? Go on a second date. Agar aap kisi se dating app pe mil rahe ho ya jo bhi hai, definitely go on a second date. Even if the first date did not turn out as amazing as you had planned it, if the first date was pleasant and there was no red flag, तब तो बिल्कुल ही जाओ. और अगर उनके साथ कुछ ज़्यादा, मतलब कुछ उतना ज़्यादा so called quote unquote spark नहीं भी हुआ है, then also give it another try. Because you know, first date पे सब लोग uncomfortable रहते हैं. First date पे everybody has is putting on their best picture forward because they are afraid of being judged. तो आपको जो फर्स्ट डेट पे किसी की पर्सनालिटी के बारे में पता चलेगा, दैट्स प्रोबेबली नॉट देयर रियल पर्सनालिटी. यू विल ओनली फाइंड दैट आउट बाय द सेकंड और द थर्ड डेट. सो फर्स्ट डेट के बाद डोंट जंप टू एनीथिंग, डोंट जंप टू एनी कंक्लूजन्स, बिकॉज सब अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखते हैं. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ जॉब इंटरव्यू एट दैट पॉइंट. ओके, सो एक गाना और सुनते हैं एंड वी विल कंटिन्यू दिस कॉन्वर्सेशन. However, लेकिन एक चीज मैं आप सबको रिमाइंड करना भूल ही गई, गाइज. कल 15th अक्टूबर है. अगर आपने अपना टैक्स फाइल नहीं किया है 2025 का, टुमारो इज द लास्ट डे. एक्सटेंशंस जिन्होंने फाइल करे हैं 15th अक्टूबर, पता है ना आपको, लास्ट डे है. कल तक अगर आपने नहीं किया तो उसके बाद बहुत ज्यादा पेनल्टी लग सकती है, तो प्लीज कर लो. एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर सम हेल्प एंड यू स्टिल थिंक यू कांट डू इट ऑल बाय योरसेल्फ एंड यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, रीच आउट टू एजी फिनटैक्स बिकॉज दे ऑफर टैक्स अकाउंटिंग, पेरोल, बुककीपिंग एंड बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज फॉर इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस. कॉल 469-942-9888 और विजिट agfintax.com. अभी जो नेक्स्ट गाना मैं आपको लिए बजा रही हूँ, आपको सुन के लगेगा ही नहीं कि ये क्लासिकल म्यूजिक इंस्पायर्ड है, लेकिन गाइज आई एम टेलिंग यू इट इज एज क्लासिकल एज इट कैन गेट. लेकिन लिरिक्स सुन के आपको लगेगा यार ये तो आइटम सॉन्ग है गाइज, लेकिन ये भी क्लासिकल इंस्पायर्ड है. सो एंजॉय दिस वन. आई थिंक दिस इज लाइक रियली आई लव दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग्स.

And guys, we are back. Yes, this is Ippy the Hippie, only on Funasia Radio 104.9 FM, and you're listening to my show, An Evening in Dallas. Yes, that's right, guys. मैंने रियलाइज किया कि मैंने ये वाला पहली बार बोला है आज पूरे दिन में, An Evening in Dallas. Well, it is Wednesday night. It is 9:39 on the clock, which means we have made it through midweek. और बस दो दिन बाकी हैं वीकेंड आने में. आई होप यू मेड योर प्लान्स फॉर द वीकेंड. इट्स गोना बी अमेजिंग. नवरात्र का वीकेंड है. DFW में बहुत सारी दुर्गा पूजा भी हो रही है. अगर आपको कोई मौका मिले ज़रूर जाइए. मैं तो अपने इंस्टाग्राम फीड पे और फेसबुक रील्स वगैरह पे बैठ के ना सिर्फ कोलकाता में होने वाले पूजा जो होती है उसकी सारी वीडियोज़ देख रही हूँ. एंड द थिंग इज़ इट्स नॉट जस्ट अ पूजा. अगर आपने कोलकाता का पूजा एक्सपीरियंस नहीं किया, इट इज़ सच अ ग्रैंड सेलिब्रेशन. एक एक जो पंडाल को वो डेकोरेट करते हैं और थीम से उनका एक्चुअली कॉम्पिटिशन होता है कि किसका थीम ज़्यादा अच्छा होगा ऑल ओवर कैलकाटा. देयर इज़ वन थीम which is I just saw this video which was dedicated to K-pop theme and everything Korean. So even Durga Mata has like these Korean features. And it's kind of cute. It's very interesting to see. और उन्हें पूरे इतने अच्छे lights वगैरह से decorate किया है. एक आया Durga Mata comes in the avatar of Elsa. You know Frozen. अगर आपके बच्चे हैं especially little girls then you know what I'm talking about. So it was all really really interesting and very very creative, I must say. तो अगर आप भी वैसे कोई event कर रहे हैं and you don't know how to figure out the decor and you want to do something different, then you need to reach out to Vanessa Events. क्योंकि planning a wedding, graduation, housewarming, special celebration can take up a lot of work and you want to be the chief guest at your own party, right? You don't want to be serving snacks to people while they are enjoying the events, right? Reach out to Vanessa Events because they handle photography, hospitality, catering, everything. And this is done exclusively by Basera Grand. Call Hari Basera at 469-442-8770. And just reach out to Vanessa Events and you never know, maybe they can help you out. And now continuing with our conversation. Bhai, there is one of my favorite findings from all of this physical attraction and all of that ka research was ki attraction jo hota hai na kisi person ke taraf wo dheere dheere grow hota hai. Ye nahi ki aap ek second mein decide kar lo, theek hai, wo to shuru ka to hai, but remember we talked about it yesterday. पहली नज़र का अट्रैक्शन, पहली नज़र का जो प्यार है ना, वो हमारी प्री कंसीव नोशन से फॉर्म होता है. लेकिन कई बार जो पहली नज़र में जो प्यार नहीं होता, वो धीरे धीरे आप पर्सन को जानते हो, उनकी पर्सनालिटी देखते हो, उनसे बात करते हो, यू रियलाइज यू हैव थिंग्स इन कॉमन, देन द अट्रैक्शन ग्रोज स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. दैट इज़ माई फाइंडिंग्स एंड द रिसर्च दैट आई एम रेफरिंग टू. Researchers ne kya kiya, they asked people to rate physical attractiveness of strangers of the opposite sex and gave them a little information about her person ki personality ke bare mein. Some kind, some were warm, some were not, theek hai. After learning that someone was kind, interesting and likable, people rated the same face as more attractive. And once they realized that this person was absolutely rude and garbage personality and their face ratings basically dropped. Personality also determines the photo and the attractiveness of the photo. Remember I said jo halo wali halo effect jo hota hai, hum kisi person ko attractive dekhe uski image hum decide kar lete hai aur usne sar ke piche ek bada sa gol sa yellow wali light jal rahi hoti hai. हेलो की भाई, हेलो दोनों तरफ से काम करता है, ठीक है. दिस इज कॉल्ड द रिवर्स हेलो. अगर आप किसी को, इफ यू फाइंड समवन फनी, काइंड, ट्रस्टवर्दी, योर परसेप्शन ऑफ देयर लुक्स ऑटोमेटिकली चेंजेस. दैट इज व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल लैंड अप डेटिंग नॉट सो कन्वेंशनली अट्रैक्टिव पीपल बिकॉज मे बी दे हैव सो मच मोर टू ऑफर देन जस्ट अ गुड लुकिंग फेस.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
3: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में
2: दैट मैजिक रिमूवल हो लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी
3: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से नाउ इट्स योर टर्न समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com
4: वेलकम टू द शादी मेमोरी टेस्ट रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं डेकोरेशंस का कलर
5: नेक्स्ट क्वेश्चन
4: ब्राइड की एंट्री सॉन्ग
5: याद नहीं
4: बफे में क्या था
5: चना पापड़ी चाट बिहारी कबाब दिल्ली निहारी अचारी चिकन मटन बिरयानी
2: शादी में बाकी डिटेल्स भूल सकते हैं लेकिन खाना कभी नहीं गैदरिंग्स 50 की हो या 500 गेस्ट के लिए चूज सिग्नेचर कुजीन्स कस्टमाइज्ड केटरिंग लाइव कुकिंग स्टेशंस एंड प्रोफेशनल सर्विस कॉल 972-905-5449 सिग्नेचर कुजीन द टेस्ट योर गेस्ट्स विल रिमेम्बर
6: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई Dallas और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive Media Partner Fun Asia
7: Is saal to kamaal ho gaya hamara revenue double ho gaya
8: Sir acha hai

0: जागो टाइम्स कमीशन, जागो भी जगाओ भी। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर पानेशिया।
1: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
2: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
1: नहीं।
2: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
1: नहीं।
2: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
1: वो भी नहीं।
2: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
3: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
4: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे?
5: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
4: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
5: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
4: सच में सब संभालेंगे?
5: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
3: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
6: हुजूर, आपको चुनना होगा, हम या ये बिरयानी।
7: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
6: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
7: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
8: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
3: Happy hours Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
8: Barista House, richness of biryani bliss.
9: Hi, I am Shah Rukh Khan. You are listening to Fun Asia.

0: शाम भी होगी बिंदास. ज्वाइन बंदा बिंदास मारविंदास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार सिर्फ फनीशा रेडियो पर.
1: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान सादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई. डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खान सादा 6825516500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
2: That garba was totally worth it. We had so much fun.
3: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
2: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
4: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 AM on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 AM. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
5: What would happen to your business if a key owner, partner, or top employee passed away unexpectedly? Would revenue, credit, client relationships, or daily operations be affected? KeyPerson Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
6: कस्टमर्स हिंदी में मिलते हैं, तेलुगु में भी, पंजाबी में भी और तमिल में भी, तो ऐड सिर्फ एक लैंग्वेज में क्यों?
7: फनेशिया नेटवर्क के साथ रीच कीजिए DFW के मल्टीपल देसीज को एक ही पावरफुल नेटवर्क पर. आज ही कॉल करें 4694243188 और ईमेल sales@phoneasia.net. फनेशिया नेटवर्क, वन नेटवर्क, मेनी लैंग्वेजेस एंड मैक्सिमम.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फनी।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फोनीशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: Spreading love and understanding with best music. 104.9 FM.
1: तुम क्या मैरिनेट हुए बैठे हो यार?
2: TVS मॉल में बबीता आ रही है।
3: कौन बबीता यार?
2: कौन बबीता? बबीता कुमारी जहाँ पना, आपकी बेगम बब, मेरी भाभी, वही बबीता जिसके हाथ पे मेहंदी से लिखा जाना था बबुआ सिंह।
3: मोहब्बत देख गुड्डू, तेरे भाई के दफन होने से पहले अपना आखिरी सलाम देने चली आई पूरी की।

लेकिन आपकी आंखों से नींद कोसों दूर है, पर हम है ना आपके करीब, आपके रेडियो डायल पर सारी रात आपके साथ। फन इज योर रेडियो 104.9 FM।

हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इनटू 104.9 एफएम फनी शो रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा? डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनी शो रेडियो के साथ।

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

0: ऑर्डर ऑर्डर मिस्टर इंप्रेशंस कैंपेन का रिजल्ट
1: योर ऑनर हजारों लोगों ने ऐड देखा
0: मिस क्लिक्स
2: 100 लोगों ने क्लिक भी किया
0: कस्टमर्स कितने आए
3: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
2: Marketing में clicks नहीं, customers matter करते हैं. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn tension into customers. Smart Reach AI, a Phanasia Network product. हर मोहब्बत की आवाज द वन एंड ओनली लिविंग लेजेंड राहत फतेह अली खान
4: राहत फतेह अली खान
5: एक्सपीरियंस वंस अपॉन अ टाइम वर्ल्ड टूर 2026 राहत फतेह अली खान और उनके बेटे शहजमान अली खान एक ही स्टेज पर
2: ब्रॉट टू यू बाय रेहान सिद्दीकी डॉक्टर यास्मीन कुरैशी एंड ट्रू पेमेंट सॉल्यूशंस फ्राइडे अक्टूबर 16 8:30 PM कमेरिका सेंटर फ्रिस्को
5: ग्रैंड स्पॉन्सर कराही पॉइंट प्लेनो के एक्सक्लूसिव कंसेशन के साथ
2: टिकट्स ऑन टिकट मास्टर एंड सुलेखा.com
6: जग घूमे थारे जैसा न कोई
7: हाय दिस इज शर्वरी यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है। तो क्यूरियोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा। नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर।

0: दोस्तों, जिंदगी सचमुच एक हसीन इत्तेफाक है। अगर इत्तेफाक ना हो तो मोहब्बत ना हो, शायरी ना हो, संगीत ना हो। अभी जो गजल मैं आपके सामने पेश कर रहा था, कभी उसमें एक आवाज और भी शामिल थी। उस आवाज की मलिका नेहा आज इस वक्त हमारे बीच हैं। दोस्तों, मैं आप सब लोगों की तरफ से उन्हें गुजारिश करूंगा कि वो एक बार फिर मेरा साथ देकर इस अधूरी गजल को पूरी कर दें और शाम को अमर कर दें।
1: ये क्या कह रहे सागर?

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनीशर रेडियो।

थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो। एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है, मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे। जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट। सो कमाल धमाल, फन, मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ।

0: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिज़लिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन. एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM, ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री. ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: कस्टमर्स हिंदी में मिलते हैं, तेलुगु में भी, पंजाबी में भी और तमिल में भी, तो ऐड सिर्फ एक लैंग्वेज में क्यों?
2: वन एशिया नेटवर्क के साथ रीच कीजिए DFW के मल्टीपल देसीज को एक ही पावरफुल नेटवर्क पर. आज ही कॉल करें 4694243188 और ईमेल sales@funasia.net. फन एशिया नेटवर्क, वन नेटवर्क, मेनी लैंग्वेजेस एंड मैक्सिमम रीच.

एक रात वो गया था जहाँ रात रुक के, अब तक रुका हुआ हूँ वहीं रात रुक के। डोंट चेंज दैट डायल, कीप इट राइट हियर ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

0: ऑर्डर ऑर्डर मिस्टर इंप्रेशंस कैंपेन का रिजल्ट
1: योर ऑनर हजारों लोगों ने ऐड देखा
0: मिस क्लिक्स
2: 100 लोगों ने क्लिक भी किया
0: कस्टमर्स कितने आए
3: एविडेंस फाउंड एक्चुअल कस्टमर विजिट इज लेस देन 10
2: मार्केटिंग में क्लिक्स नहीं कस्टमर्स मैटर करते हैं विद स्मार्ट रीच AI रीच लोकल कस्टमर्स इवन कॉम्पिटिटिव विजिटर्स अक्रॉस रेडियो डिजिटल स्ट्रीमिंग टीवी एंड ऑडियो मेजर कॉल्स बुकिंग्स रिडेम्पशंस एंड एक्चुअल विजिट्स विजिट smartreachai.us SmartReach AI. Turn attention into customers. SmartReach AI, a Phanasia Network product.
4: Beta, 95% aaye?
5: Haan, mummy.
4: Good. Ab chaliye, papa. Aap apna report card dikhaiye.
6: Mera?
4: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals. Sare accounts updated?
6: वो
7: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने AG Fintechs helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintechs.com. Call 972-618-8555. AG Fintechs led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
8: This is Ali Zafar and you're listening to me on Fun Asia Radio.

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें। Declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है। So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज। सुनते रहिए हमें और इस next गाने को।

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एजिया रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

0: ऑर्डर ऑर्डर मिस्टर इंप्रेशंस कैंपेन का रिजल्ट
1: योर ऑनर हजारों लोगों ने ऐड देखा
0: मिस क्लिक्स
2: 100 लोगों ने क्लिक भी किया
0: कस्टमर्स कितने आए
3: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
2: Marketing में clicks नहीं, customers matter करते हैं. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers. Smart Reach AI, a Phanasia Network product.
4: Bindas bolo. बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो
5: जब गाना बोले बिंदास तो शाम भी होगी बिंदास जॉइन बंदा बिंदास मार बिंदास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार सिर्फ फनीशा रेडियो पर
6: Hi, I'm Abhishek Bachchan and you're listening to Phanasia Radio. Thank you all the listeners for always being there watching our films. Thank you Phanasia Radio for spreading the word.

0: आएगी। रुको जरा, सबर करो।
1: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है। स्टे ट्यून टू फनेशिया।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: बेटा, 95% आए?
2: हाँ मम्मी।
1: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
3: मेरा?
1: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
3: वो
4: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
5: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
6: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: KZMP 104.9 FM. Keep listening to Fun Asia.
1: और इस तरह बल्ली को भी अपनी रानी मिल गई, वीरे की गीत से वेडिंग हुई और शादी में घोड़ी के सबसे आगे नाचे मामा जी।

इस तरह बल्ली को भी अपनी रानी मिल गई, वीरे की गीत से वेडिंग हुई और शादी में घोड़ी के सबसे आगे नाचे मामा जी और भांजा जी।

0: ऑर्डर ऑर्डर मिस्टर इंप्रेशंस कैंपेन का रिजल्ट
1: योर ऑनर हजारों लोगों ने ऐड देखा
0: मिस क्लिक्स
2: 100 लोगों ने क्लिक भी किया
0: कस्टमर्स कितने आए
3: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
2: Marketing में clicks नहीं, customers matter करते हैं. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers. Smart Reach AI, a Phanasia Network product. 15th को फेस्टिव शॉपिंग
4: उसके बाद फ्लेवर लाउंज
2: 20 को गरबा का प्लान
4: देन फ्लेवर लाउंज
2: 1st को दिवाली मीटअप
4: लेट्स केटर फ्रॉम फ्लेवर लाउंज
2: और आज कोई प्लान ही नहीं है
4: तो चलो फ्लेवर लाउंज
5: खाने वालों को खाने का बहाना चाहिए
6: सेलिब्रेशन हो शॉपिंग की भूख या बस कुछ अच्छा खाने का मूड डाइन इन और केटरिंग थिंक फ्लेवर थिंक द फ्लेवर लाउंज फ्रिस्को इस फेस्टिव सीजन हर प्लान में थोड़ा फ्लेवर खाने वालों को खाने का बहाना चाहिए
7: बिंदास बोलो बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो
2: जब गाना बोले बिंदास तो शाम भी होगी बिंदास जॉइन बंदा बिंदास मारविन दास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार सिर्फ फनीशा रेडियो पर

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: de hoy.
1: सॉरी
0: हम ठीक हैं।

0: वहां से थिएटर भर देते हैं, इससे फिल्मों का भी फायदा हो जाता है।
1: तुम इस तमाशे में शामिल?
0: तुम्हारी जिंदगी के तमाशे में शामिल काफी है।

कुछ बदल गया है, नहीं तो आपकी आवाज में नहीं, आपके मन में।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फनी।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं,
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट, डैलस में रेडियो का डैड, फोनीशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: the magic 24/7 only on 104.9 FM.
1: बटुक साहब ने एक छोटी सी पार्टी रखी है
2: ऐसी जगह.
3: अरे झुमका भी मैं भूल गई जाने जा तेरे लिए.
4: थोड़ी देर नीचे चलते ना, बटुक अंकल बुरा मान जाएंगे. चलिए ना.
3: अरे

0: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: Order, order. Mr. Impressions, campaign ka result.
4: Your Honor, hazaron logon ne ad dekha.
3: Miss Clicks?
5: 100 logon ne click bhi kiya.
3: Customers kitne aaye?
6: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
7: Marketing mein clicks nahi, customers matter karte hain. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers. Smart Reach AI, a Fanasia Network product.
8: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी
9: तो फिर सिर्फ फन एशिया ही सुनूंगा।

0: अभी बजा आएगा ना भिड़ो
1: अपुन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: ओह माय गॉड,
1: मैं चट्टान से कूदने जा रही हूँ तो मेरी बहनों से तो मैं बता रही हूँ, पर क्यों? क्योंकि ये देखो #you #out #her, और उसे भी लगता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रब हूँ।
0: उसे कूदने से पहले उसे बता के तो जा।
1: क्या

104.9 FM Fun Asia Radio. Fun Asia Radio. Pure Fact Desi.

0: पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉनस्टॉप बॉलीवुड, नॉनस्टॉप स्वैग।
1: हमारे बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है।
2: कुछ कॉमन होना जरूरी है क्या?

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड। क्या चीज है पैसा क्या बात है क्या चीज है पैसा क्या बात है क्या चीज़?

0: Bollywood, Tollywood, Lollywood. 24 karat pure.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
4: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
5: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
6: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
7: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Hey Frisco, get ready to celebrate silver like never before. Chandrika Silver by Shri Krishna Jewelers celebrates its grand launch. Discover exquisite handcrafted silver jewelry and artifacts with exciting inaugural offers and raffle prizes. Visit 7777 Warren Parkway, Suite 280 Frisco. Chandrika Silver, the tradition shines in silver.
9: Ek aur laddu le lo.
10: Todi aur biryani.
9: Are America jaake thodi milega.
11: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बन के साथ आ गए।
12: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए। स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अलोंग विद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स, दे आल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जायटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स। कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर।
13: 15th को फेस्टिव शॉपिंग,
14: उसके बाद फ्लेवर लाउंज,
13: 20 को गरबा का प्लान,
14: देन फ्लेवर लाउंज,
13: 1st को दिवाली मीटअप,
14: लेट्स केटर फ्रॉम फ्लेवर लाउंज,
13: और आज कोई प्लान ही नहीं है
14: तो चलो फ्लेवर लाउंज।
15: खाने वालों को खाने का बहाना चाहिए।
1: सेलिब्रेशन हो, शॉपिंग की भूख या बस कुछ अच्छा खाने का मूड, डाइन इन और केटरिंग, थिंक फ्लेवर, थिंक द फ्लेवर लाउंज फ्रिस्को। इस फेस्टिव सीजन हर प्लान में थोड़ा फ्लेवर, खाने वालों को खाने का बहाना चाहिए।
16: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
1: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
17: It's true. Hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
18: वेलकम टू द शादी मेमोरी टेस्ट। रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं। डेकोरेशंस का कलर,
19: नेक्स्ट क्वेश्चन।
18: ब्राइड की एंट्री सॉन्ग,
19: याद नहीं।
18: बफे में क्या था?
19: चना पापड़ी चाट, बिहारी कबाब, दिल्ली निहारी, अचारी चिकन, मटन बिरयानी।
1: शादी में बाकी डिटेल्स भूल सकते हैं लेकिन खाना कभी नहीं। गैदरिंग्स 50 की हो या 500 गेस्ट के लिए, चूज सिग्नेचर कुजीन्स, कस्टमाइज्ड केटरिंग, लाइव कुकिंग स्टेशंस एंड प्रोफेशनल सर्विस। कॉल 972-905-5449। सिग्नेचर कुजीन, द टेस्ट योर गेस्ट्स विल रिमेम्बर।
10: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.
20: सबसे पहले तारीफ उस ऊपर वाले की जिसने दुनिया बनाई, चांद सितारे बनाए, ज़मीन आसमान बनाए, इंसान के दिल में मोहब्बत का जज्बा पैदा किया। उसी ऊपर वाले की तारीफ है जिसने मुझको, आपको और ये सारी कायनात को इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए बनाया है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एज वी गेट स्टार्टेड विद आवर प्रोग्राम ऑन दिस लवली थर्सडे मॉर्निंग, इट्स द 15th ऑफ अक्टूबर एंड इट इज द 5th डे ऑफ नवरात्रि। आदि शक्ति श्री दुर्गा का पंचम रूप श्री स्कंद माता है। श्री स्कंद की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। नवरात्रि के पंचम दिन इनकी पूजा और आराधना की जाती है और इनकी आराधना से विशुद्ध चक्र के जागृत होने वाली सिद्धियां स्वतः प्राप्त हो जाती हैं तथा मृत्यु लोक में साधक को परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वयमेव सुलभ हो जाता है। ऑन दिस 5th डे ऑफ नवरात्रि, नंबर इन द स्टूडियोज इज 972-235-5555।

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
2: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
3: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
4: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
5: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
4: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
5: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
4: सच में? सब संभालेंगे?
5: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। Vanessa Events, your celebration partner.
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
10: ऑर्डर ऑर्डर, मिस्टर इंप्रेशंस, कैंपेन का रिजल्ट।
11: योर ऑनर, हजारों लोगों ने एड देखा।
10: मिस क्लिक्स,
12: 100 लोगों ने क्लिक भी किया।
10: कस्टमर्स कितने आए?
13: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
14: Marketing में clicks नहीं, customers matter करते हैं. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers. Smart Reach AI, a Phanasia Network product.
15: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
16: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
15: नहीं।
16: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
15: नहीं।
16: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
15: वो भी नहीं।
16: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
17: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy.
18: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
19: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
20: Hey, are you going to Ravi's Trade Market this year?
18: Of course. Where else can you check out new products, meet vendors, grab exclusive deals, giveaways and save big for your store?
20: When is it?
18: Thursday, October 29th, Friday, October 30th and Saturday, October 31st from 9 a.m. to 5 p.m. at Ravi's Import Warehouse on Harry Hines Boulevard in Dallas.
20: Perfect. I'll register ahead on shopravis.com. Ravi's 21st Annual Trade Market. Bigger deals, bigger opportunities, bigger business.
21: Customers must bring their valid tax number and tobacco license.

0: It is 9 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
4: Zindagi ek safar hai suhana. Yahan kal kya ho kisne jana.
1: Life ho ya health, kab kya ho jaye pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust. Aur ab wahi trusted care, urgent care services ke saath naye Kaiserway location par. Lunoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. Adults aur bachchon ke liye primary care, urgent care, x-ray, CT scan, heart testing aur med spa. Sab kuch ek hi roof ke niche. Lunoxy Medical Urgent Care. Open 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiserway, Suite 205, Frisco.
5: Desi flavors bhi aur Texas ke favorites bhi. Ab sab kuch milega ek hi jagah. HEB mein. Sona Masuri Rice, Nanak Paneer, Pale Ji Biscuits aur bahut kuch. Wahi authentic swad jiske saath aap bade hue hain. Aur saath hi HEB ke exclusive Texan favorites jo aapko yahan pasand hain. Ab ek hi shopping trip mein zyada kaam niptaiye. Aur is summer zarur dekhiye HEB ke naye DFW stores. Mid Cities, Irving aur Murphy mein khul rahe hain. To aaj hi apne nazdeeki HEB par jaye aur khareediye apne traditionals aur Texan favorites. HEB. Here, everything is better.
6: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
7: Hey, are you going to Ravi's Trade Market this year?
1: Of course. Where else can you check out new products, meet vendors, grab exclusive deals, giveaways and save big for your store?
7: When is it?
1: Thursday, October 29th, Friday, October 30th and Saturday, October 31st. From 9 a.m. to 5 p.m. at Ravi's Import Warehouse on Harry Hines Boulevard in Dallas.
7: Perfect. I'll register ahead on shopravis.com. Ravi's 21st Annual Trade Market. Bigger deals, bigger opportunities, bigger business.
8: Customers must bring their valid tax number and tobacco license.
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
10: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
11: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
13: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
14: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
15: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
16: मंदिर DFW हिंदू टेंपल सोसाइटी प्रेजेंट्स नवरात्रि महोत्सवम अक्टूबर 11th टू 20th.
1: डेली पूजास, आरतीज, ललिता सहस्रनामम, महामंगल आरती, माताजी पूजा और हर शाम 8:30 बजे रास गरबा.
16: अक्टूबर 16th 17th सरस्वती पूजा और अक्षर अभ्यासम.
1: अक्टूबर 17th माता की चौकी.
16: अक्टूबर 18th दुर्गाष्टमी हवन और 20th रामलीला और रावण दहन.
1: विजिट hindutemple.org और कॉल 972-445-3111.
0: Let's get started with this final hour of our program on this lovely Thursday morning. It is the 15th of October. And for those who are observing Navratri, it is the fifth day of Navratri. Adi Shakti Shri Durga ka pancham roop Shri Skand Mata hai. Shri Skand, yani ke Kumar Kartikeya ki mata hone ke karan, inhe Skand Mata kaha jata hai. नवरात्रि के पंचम दिन इनकी पूजा और आराधना की जाती है और इनकी आराधना से विशुद्ध चक्र के जागृत होने वाली सिद्धियां स्वतः प्राप्त हो जाती हैं तथा मृत्यु लोक में ही साधक को परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वयमेव सुलभ हो जाता है। द फिफ्थ डे ऑफ नवरात्रि टुडे।

0: Your dream home may be closer than you think. Since 1998, Dream Home Mortgage has helped families nationwide with personalized mortgage solutions for buying or refinancing. You can call them 972-245-5626, 972-245-5626, or visit dreamhomemortgage.com. Dream Home Mortgage, making dream homes happen. Moving on with our program, I do have some messages from our sponsors and advertisers that are coming up for you. But the biggest thing that I want to tell you is to get ready for a 30-degree plunge in the temperatures. We will touch 89 or maybe even 90 today, and then the weather is going to change. You're going to knock the temperatures down, waking up tomorrow morning in the 50s with the wind chills in the 60s with blustery winds, maybe 40 miles per hour. That's right. Fall temperatures, for those of you who have been awaiting those, are going to be finally here. Huge change in the weather for late tonight into tomorrow morning. And of course, we'll keep you updated right here on the airwaves of the Fun Asia Network.
1: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
2: अरे सारे तो सेम है।
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो, ये वाला।
2: ओ हाँ, ये तो अलग है।
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: सुनो सुनो सुनो सारे मैकनी वाले सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं, और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म। सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर।
5: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह। कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259।
6: हुजूर, आपको चुनना होगा हम या ये बिरयानी।
7: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
6: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
7: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
8: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
3: Happy hours Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
8: Barista House, richness of biryani bliss.
9: Order, order. Mr. Impressions, campaign का result.
10: Your Honor, हजारों लोगों ने ad देखा.
9: Miss Clicks?
11: 100 लोगों ने click भी किया.
9: Customers कितने आए?
12: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
13: Marketing में clicks नहीं, customers matter करते हैं. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. SmartReach AI. Turn attention into customers. SmartReach AI, a Fun Asia Network product.
14: इस दिवाली जब अपनों के संग रोशनी और प्यार का माहौल हो, तो Red Label के स्वाद और कड़कपन से घुले हर एक मोमेंट। Red Label की हर एक रोशनी वाली चुस्की दिलों के रिश्ते और सेलिब्रेशन को कर दे और भी रोशन। हर पैक के साथ बढ़ाएं अपनों का प्यार, ताकि खुशियां छलकती रहें। इस दिवाली रेड लेबल की रोशनी वाली चुस्की खुशियों को करे ज्यादा और भी ज्यादा।
15: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
3: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर।
16: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
3: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं।
16: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी।
15: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड। बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर।
17: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
18: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
17: Kya matlab?
18: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
17: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
18: उरा डेट रिलीफ इज वन ऑफ द लीडिंग डेट सेटलमेंट कंपनीज। दे डोंट चार्ज अ सिंगल पेनी अंटिल आवर डेट इज सेटल्ड एंड दे हैव 100% मनी बैक गारंटी। कॉल तो करो 888-888-9914।
17: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
5: डोंट लेट डेट रुइन योर लाइफ। विजिट ura.org और कॉल 888-888-9914 एंड टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल फ्यूचर।
3: इस दिवाली टॉपल में देखिए एक भव्य नजारा, गणेशा, लक्ष्मी और सरस्वती के ग्रैंड LED कटआउट्स और पहली बार रामलीला। साउथ एशियन फूड फेस्टिवल बाय बिंदास सर्विसेज, नवंबर 1st, द साउंड कपेल।

आपको आपके काम कहीं भी ले जाएं, लेकिन देर इज नथिंग लाइक होम एंड एज फार एज म्यूजिक इज कंसर्न वी आर होम फॉर यू राइट. फनीचर नेटवर्क सुन रहे हैं आप ये शो जिसका नाम है गपशप गली विथ मी टू. और अगर मेडिकल कुछ हेल्प चाहिए, कुछ हेल्थ रिलेटेड आपको चेकअप्स की जरूरत है, बी इट यू नो अर्जेंट केयर और प्राइमरी केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्सरे, सीटी स्कैन, कार्डियक डायग्नोस्टिक्स या फिर हिमालयन मेट्सपा सर्विसेज की अगर जरूरत है, एक जगह जो हम सजेस्ट करना चाहते हैं दैट इज ल्यूनॉक्सी मेडिकल. दिस इज बाय फ्रॉम टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक और ये हमारी कम्युनिटी को काफ़ी सालों से यू नो सर्व करते आए हैं. और अब इनका ये जो नया ब्रांड है, सेकंड फ्रिस्को लोकेशन है, ल्यूनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, आप इनके साथ जरूर कनेक्ट करें. No appointments needed, walk in any time, literally 7 days a week from 8 a.m. to 8 p.m. is that timing for all of you. And their urgent care centers are designed to bridge that gap between primary care and the emergency room, offering same day care with transparent processes and compassionate clinicians. That's what they promise for you. That's ल्यूनॉक्सी मेडिकल. This is Gapshap Gali with me too.

हम भी मिलते रहेंगे राइट हियर ऑन फाइनेंशियल नेटवर्क. यू आर ट्यून्ड टू गपशप गली विथ मी टू. 10 से 12:30 के बीच इट इज माय शो दैट आई ब्रिंग फॉर ऑल ऑफ यू. होपफुली यू एंजॉय दिस शो, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है आप लोगों से इंटरेक्ट करने में. एंड थैंक यू फॉर द वंडरफुल रिक्वेस्ट दैट्स कमिंग अप फॉर यू राइट नाउ फ्रॉम सीमा.

0: As a Texas state legislator, James Tallarico has stood with the South Asian community and fought to lower our costs. He believes that being a Texan isn't about where you come from or how you pray. It's about how you love your neighbors. He's running for U.S. Senate to stand up for all Texans and end the corruption raising our prices. Vote to bring light and hope to Texas. Vote James Tallarico.
1: I'm James Tallarico, and I approve this message.
2: Paid for by Tallarico for Texas.
3: That garba was totally worth it. We had so much fun.
4: I lost so much of calories today, and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
3: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
5: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta, and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your Garba Fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your Garba may end, but the party doesn't.
6: तो बताइए, आजकल स्ट्रेस किस बात का है?
7: डॉक्टर साहब, हर महीने वही कहानी। इलेक्ट्रिसिटी बिल कभी भी बढ़ जाता है, कस्टमर सर्विस डोंट आंसर, और रिन्यूअल के टाइम बस नए सरप्राइजेस। सच कहूँ, बिजनेस कम, टेंशन ज्यादा है।
8: क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं?
6: यू नो, आपको थेरेपी की नहीं, तारा कमर्शियल एनर्जी की जरूरत है।
9: 2002 से तारा कमर्शियल एनर्जी टेक्सास के बिजनेसेस को कम्पेटिटिव कमर्शियल एनर्जी प्लान्स और डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट दे रही है। कॉल 844-428-2808 or visit taraenergy.com.
10: Order, order. Mr. Impressions, campaign ka result.
11: Your Honor, hazaron logon ne ad dekha.
10: Miss clicks.
12: 100 logon ne click bhi kiya.
10: Customers kitne aaye?
13: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
14: Marketing mein clicks nahi, customers matter karte hain. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smartreach AI, turn attention into customers. Smartreach AI, a Funasia network product.
15: Agar kisi cheez ko dil se chaho,
16: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं।
17: डील कहाँ?
16: सिंपल, पास्या पे। इंट्रोड्यूसिंग पास्या, डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ। ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड अ डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन।
17: डाउनलोड पास्या, दैट्स PAASYA टुडे, बिकॉज डील्स दूर नहीं, पास है।
18: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग है।
19: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
20: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
21: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
20: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
0: दिवाली बाजार हो या फूड स्टॉल, अपने बिजनेस को दीजिए फेस्टिव स्पॉटलाइट। बुक योर बूथ एट द साउथ एशियन फूड फेस्टिवल बाय बिंदास सर्विसेज, नवंबर 1st, द साउंड, कपेल। कॉल मार्विन 9723027012।
22: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनेजिया रेडियो।

टेल मी इफ यू थॉट दैट दिस वॉज श्रेया घोषाल्स वॉइस. एक्चुअली कुछ तो एक सिमिलैरिटी, एक जो स्वीट मेलोडी है उनकी आवाज में, ये जो आवाज आप सुन रहे थे ये है हंसिका पारेख की. जस्ट FYI लेडीज एंड जेंटलमैन, एक ऐसी आवाज जिसकी तारीफ खुद श्रेया घोषाल ने भी की है, मेंशन किया है कि भाई वो भी सुनती रहती है हंसिका पारेख को. तो ए वॉइस टू डेफिनेटली यू नो बी वेरी होपफुल अबाउट इन द फ्यूचर कि और भी बहुत सारे गाने सुनने को मिलेंगे. बाकी रही बात श्रेया घोषाल की, उनका भी एक गाना सुनवाते चलते हैं. ऐसे कैसे हो सकता है यार कि उनके बारे में बात करें और फिर उनका एक गाना नहीं लगाएं आपके लिए, पर्टिकुलरली आफ्टर द अनस्टॉपेबल टूअर दैट शी इज़ हैड, अ वेरी वेरी सक्सेसफुल टूअर दैट शी इज़ हैड, विच आई विल ब्रीफली टॉक अबाउट. फिलहाल तो ये गाना हो जाए, आप इंजॉय करें गपशप गली विथ मीठू पे. दिस नेक्स्ट ट्रैक कंपोज बाय शेखर रवचियानी.

दैट सॉन्ग लेडीज एंड जेंटलमैन श्रेया घोषाल की आवाज में आप सुन रहे थे। मैं ना आप लोगों के साथ श्रेया घोषाल के उस कॉन्सर्ट के बारे में बात करने वाली थी कि जिसमें उन्होंने इतना इंप्रेस किया है सबको कि क्या ही कहा जाए। अभी रिसेंट एक पोस्ट देखा जिसमें उन्होंने एक बेंचमार्क सेट कर लिया है लाइव म्यूजिक की दुनिया में। ग्लोबली 225,000 प्लस टिकट्स वर सोल्ड फॉर हर शो, 250 प्लस crore revenues that was generated, 21 shows were sold out of this tour, one artist and a generation of fans that she has, and a sold out merchandise inventory that she had for the tour, and 700 plus you first attendees, 70,000 plus people employed on tour, and 20 plus fans got the spotlight at the tour. Yes, that is Shreya Ghoshal for us, a living legend by all means that she is, and more power to her. That's what we want to say to this beautiful voice, beautiful soul, Shreya Ghoshal.

दिस मीठा सा गाना, आई थॉट इट इज इन द वॉइस ऑफ श्रेया घोषाल बट अपेरेंटली नॉट. ये कोई और सिंगर हैं जिनका नाम मुझे अभी तक नहीं मिला है, बट येस आई विल फाइंड इट फॉर यू. बट आई वॉन्टेड टू रियली प्ले द श्रेया घोषाल वर्जन ऑफ इट एज वेल. बहुत ही मीठा सा ये गाना फ्रॉम भारत भाग्य विधाता, दैट कंगना रनौत फिल्म. हैव यू वॉच्ड इट? मैं अभी तक देख नहीं पाई हूँ, कुछ आपके रिव्यूज मिल जाए तो देख भी लेंगे. दिस इज गपशप गली विथ मी टू.

श्रेया घोषाल की मीठी सी आवाज में ये गाना जो आपने सुना, आई होप यू एंजॉयड इट. मैंने बहुत एंजॉय किया यार. इट इज़ ऑलवेज लवली टू लिसन टू हर, और इन पर्सन भी सुनने को मौका मिला. अब अगर इन पर्सन की बात की जाए तो हमारे जितने भी पसंदीदा आर्टिस्ट हैं ना, उनको लाइव सुनने का मज़ा कुछ और ही है. और ये मज़ा आपके लिए रिजर्व्ड फॉर टुमारो. जी हाँ, आप ज़रूर पहुँच जाएँ टाइम पे 8:30 बजे एट को अमेरिका सेंटर इन फ्रिस्को टू लिसन टू द मैजिक ऑफ राहत फतेह अली खान साहब्स वॉइस. एंड अलॉन्ग विथ हिम इज हिज सन शहजमन अली खान. और ये वंस अपॉन अ टाइम वर्ल्ड टूर 2026 दैट यू कैन एब्सोल्यूटली इन्जॉय टुमारो. यानी कि आपके फेवरेट कव्वाली, सूफी गाने, बॉलीवुड हिट्स और उनके जो टाइमलेस मेलोडीज हैं, वो सारा कुछ कल शाम को आप इंजॉय करने वाले हैं. श्योरली एन इवनिंग दैट यू विल रिमेंबर फॉर ए वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. दिस इज गपशप गली विद मी टू.

0: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
1: Call 857-891-8942 today. Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
2: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में
1: दैट मैजिक रिमूवल हो लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी
2: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से नाउ इट्स योर टर्न समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com
3: अजी सुनते हो सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे
4: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे
3: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा
4: हेलो तुम डैलस में हो यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो
3: सच में सब संभालेंगे
4: अरे सब कुछ वेडिंग हो हाउस वार्मिंग ग्रेजुएशन यू नेम इट दे डिलीवर वेन्यू फोटोग्राफी हॉस्पिटैलिटी सब कुछ एक ही जगह सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली
1: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770 वैनेसा इवेंट्स योर सेलिब्रेशन पार्टनर
5: बेटा 95% आए
6: हाँ मम्मी
5: गुड अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए
7: मेरा
5: हाँ प्रॉफिट मार्जिन कैश फ्लो टैक्स प्लानिंग बिजनेस गोल्स सारे अकाउंट्स अपडेटेड
7: वो
1: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
8: It's the time to clock out. It's the time to catch up.
9: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू sizzling flavors और चटपटे appetizers make an ordinary weekday feel like a delicious celebration. Every Monday through Friday from 5 to 8 p.m. order any two entrees and get one appetizer absolutely free. Bring your family, friends and your appetite. Visit Tandoori Flame in Garland. Terms and conditions apply.
10: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
11: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
10: क्या मतलब?
11: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
10: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
11: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
10: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
12: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
13: हर मोहब्बत की आवाज द वन एंड ओनली लिविंग लेजेंड राहत फतेह अली खान
14: राहत फतेह अली खान
1: एक्सपीरियंस वंस अपॉन अ टाइम वर्ल्ड टूर 2026 राहत फतेह अली खान और उनके बेटे शहजमान अली खान एक ही स्टेज पर
13: ब्रॉट टू यू बाय रेहान सिद्दीकी डॉक्टर यास्मीन कुरैशी एंड ट्रू पेमेंट सॉल्यूशंस फ्राइडे अक्टूबर 16 8:30 PM कमेरिका सेंटर फ्रिस्को
1: ग्रैंड स्पॉन्सर कराही पॉइंट प्लेनो के एक्सक्लूसिव कंसेशन के साथ
13: टिकट्स ऑन टिकटमास्टर एंड सुलेखा.com
15: जग घूमे थारे जैसा न कोई
16: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो

फ्रॉम द फिल्म नॉकआउट इट्स पे बैक टाइम एंड दिस फिल्म जो रिलीज हुई थी आज के दिन 15th of October 2010 इसीलिए तो इस सेगमेंट में प्ले कर रही हूँ वेरी स्पेशली फॉर ऑल ऑफ यू. ये सेगमेंट है दिस डे दैट ईयर और इस सेगमेंट में मैं आपके लिए ऐसे गाने लेकर आती हूँ जो ऐसी फिल्मों से होते हैं जो आज के दिन रिलीज हुई होती हैं. उसमें से ये एक फिल्म जिसका नाम है नॉकआउट और नॉकआउट में मैंने काफ़ी धुरंधर एक्टर्स थे यू नो कंसिडरिंग ये फिल्म नहीं चल पाई विच वॉज क्वाइट अ सरप्राइज टू एक्चुअली थिंक अबाउट इट. इरफान खान, संजय दत्त, कंगना रनौत और ये मनी शंकर की फिल्म थी एंड दिस फिल्म एक्चुअली वॉज एन अनक्रेडिटेड एडाप्टेशन ऑफ द हॉलीवुड फिल्म फोन बूथ जो कि कॉलिन फैरल की फिल्म थी और काफ़ी अच्छी चली थी ये फिल्म. तो ये जो फिल्म है इसके राइट्स 20th Century Fox के पास थे और क्योंकि ये इनको क्रेडिट नहीं दिया गया था फॉर द फिल्म और परमिशन नहीं ली गई थी या कॉपी राइट इन्फ्रिंजमेंट के कारण कह लीजिए, इन्हें एक बॉम्बे कोर्ट से ऑर्डर मिला था टू पे ए हेफ्टी अमाउंट फ्रॉम देयर रेवेन्यूज एंड दैट वॉज बिकॉज 20th Century Fox sued the makers of Knockout, जो आज ही के दिन 2010 में रिलीज हुई थी. एंड लेट मी टेल यू इट वॉज अ कमर्शियल फेलियर, इट वॉज अ बॉक्स ऑफिस फेलियर एंड वेन इट रिलीज काफ़ी बड़ा वाला यू नो एक जो पे करना पड़ा टू फॉर द प्रोड्यूसर्स फॉर नॉट क्रेडिटिंग दैम, फिर वो फिल्म फेल हो जाने का डबल जिसे कहते हैं ना वैमी दैट इट वॉज. And taking you to another film that released on the same day as Knockout, and that's Akrosh. Akrosh, ladies and gentlemen, again an uncredited Indian adaptation of the 1988 Oscar-winning Hollywood film Mississippi Burning. And guess what? ये film भी जो थी ये नहीं चल पाई थी at the box office despite big names in the film. I mean, think about Ajay Devgan, think about Akshay Khanna, Bipasha Basu, Paresh Rawal. In sub के होते हुए भी ये फिल्म ये क्राइम थ्रिलर नहीं चल पाई एट द बॉक्स ऑफिस एंड जो चला वो था ये गाना फ्रॉम द फिल्म. दिस इज गपशप गली विथ मी टू.

the crime thriller Akrosh to another movie that was a romantic musical film. और ये फिल्म डायरेक्ट की थी राम गोपाल वर्मा ने, जो एक्चुअली ऐसे क्राइम थ्रिलर्स या क्राइम फिल्म्स या यू नो हैवी ड्यूटी फिल्म्स बनाने के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने ये एक रोमांटिक म्यूजिकल बनाई थी एंड ये आई थी 1999 में. आज ही के दिन रिलीज हुई थी. फिल्म का नाम है मस्त. फिल्म कुडंट डू वेल एट द बॉक्स ऑफिस. आफ्ताब शिवदसानी का ये जो डेब्यू रोल था एज लीड एक्टर एट जस्ट द एज ऑफ 20 दैट ही वॉज एट, और ये उनकी फिल्म नहीं चल पाई थी जिसके कारण उनको काफ़ी बड़ा हिट लेना पड़ा था अपनी करियर में. लेकिन स्टिल यू कैन गो बैक टू बी टू वॉचिंग दिस फिल्म जस्ट फॉर द फैक्ट दैट बोथ ऑफ देम, उर्मिला मटोंडकर एंड आफ्ताब शिवदसानी, डिड लुक वेरी वेरी क्यूट. और ये गाना जो मैं लेकर आने वाली हूँ इस फिल्म का, इट इज़ द टाइटल ट्रैक, सुनिधि चौहान.

आप सुन रहे हैं फनीशा एंड दिस इज गपशप गली विथ मी टू। लिसन, वी आर यहाँ पर ना हम कुछ ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो सबके लिए एक कंफर्ट है, यू नो द मैजिक ऑफ नॉस्टैल्जिया दैट वी कॉल। कितने नए ट्रेंड्स आए और गए, लेकिन जब भी हमारे ना चाइल्डहुड या ग्रोइंग अप ईयर्स की चीज़ें वापस आती हैं ना, तो उफ एक अलग ही मज़ा आ जाता है। वुडंट यू अग्री? कुछ ऐसे ही गाने लगाने वाली हूँ फ्रॉम येस्टर ईयर्स, दैट रेट्रो मैजिक दैट वी विल रीलिव इन दिस नॉस्टैल्जिया एक्सप्रेस सेगमेंट एवरी थर्सडे बिटवीन 11 to 11:30 दैट आई ब्रिंग फॉर ऑल ऑफ यू। सो वेदर इट इज यू नो रेट्रो म्यूजिक मेकिंग अ रोरिंग कमबैक ऑन योर प्लेलिस्ट और विंटेज 90s फैशन कंप्लीटली टेकिंग ओवर द कॉलेज कैंपसेस, वी सिंपली कैन नॉट रेजिस्ट द कम्फर्ट ऑफ द पास्ट। वुडंट यू अग्री टू दैट? भाई साइकोलॉजिस्ट भी अग्री करते हैं कि ये जो फैशन और लाइफस्टाइल ट्रेंड्स रिपीट होती हैं, इट इज ड्यू टू अ मिक्स ऑफ डीप नॉस्टैल्जिया एंड द साइकोलॉजिकल कंफर्ट ऑफ फेमिलियर एस्थेटिक्स। मानते हैं कि नहीं, हर 15 से 20 साल में पुराने ट्रेंड्स एक नए रूप में लौट आते हैं, क्योंकि एक जनरेशन जब एक वर्कफोर्स एंटर करती है ना, बड़ी होती है और एक वर्कफोर्स एंटर करती है, तब उन्हें पुराने दिनों की बहुत याद आती है। एंड स्पेशली इतनी टेंशन वाले वर्कफोर्स में जब एंटर करती है तो ऑब्वियसली इतना प्रेशर, इन सब में ना वो बचपन का कम्फर्ट याद आता है। और इसी वजह से द फेमस 20-year साइकिल एग्जिस्ट इन डिज़ाइन, ब्रिंगिंग बैक द एग्जैक्ट सेम sort of oversized jacket, flared jeans, या वही कुर्ते का स्टाइल, या यू नो एथनिक वेयर का स्टाइल जो कि वापस आता हमें दिखता रहता है टाइम एंड अगेन। वक्त चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, हमारा दिल हमेशा उस पुराने सिंपल दौर को ही ढूंढता है। वुडंट यू अग्री? दिस इज गपशप गली विथ मी टू।

जेंसी भी हमें कुछ अंदाज सिखा रही है एंड वी आर टेकिंग अ फैसिनेटिंग ट्रिप डाउन मेमोरी लेन, और इस लेन में बरकरार रही है और गपशप गली में मेरा साथ देते रहिए. दिस इज योर होस्ट मी टू. बहुत हैरानी की बात है कि जेंसी भी ओल्ड वर्ल्ड चार्म को पूरी तरह से एम्ब्रेस कर रही है, एंड आई एम नॉट सरप्राइज रियली वाई. इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ एंडलेस स्मार्टफोन नोटिफिकेशंस, जहाँ 20 हमारे ब्राउजर टैब्स खुले होते हैं, कॉन्स्टेंट डूम स्क्रोलिंग हो रही है और एक माइंडलेस डिजिटल डिस्ट्रैक्शन है, विंटेज गैजेट्स आर मेकिंग एन एब्सोल्यूट मैसिव कमबैक. आई थिंक वी हैव स्पोकन अबाउट इट अर्लियर ऑल्सो, किसी शो में मैंने इन सब चीज़ों के बारे में बात की थी. लेकिन फिर एक बार बताते हैं कि आजकल लोग अपने ना मल्टीपर्पज टैबलेट्स और स्मार्ट स्क्रीन्स को छोड़कर क्लासिक बूम बॉक्सेस और वाइनल रिकॉर्ड प्लेयर्स और साथ ही साथ मॉडर्न स्मार्ट टाइपराइटर्स ये सारे खरीद रहे हैं. एंड इफ यू आस्क व्हाई डिजिटल टाइपराइटर्स, वेल ए मॉडर्न स्मार्ट टाइपराइटर स्ट्रिप्स एवरीथिंग बैक टू प्योर सिंप्लिसिटी, लीविंग जस्ट यू ए हैवी मैकेनिकल कीबोर्ड एंड योर अनफिल्टर्ड वर्ड्स ऑन ए टाइनी स्क्रीन. नाउ हाउ ब्यूटिफुल इज दैट. ये नया ट्रेंड साबित करता है कि आज के सुपर फास्ट पेस जनरेशन भी सच में थोड़ा रुक कर एक लंबी सांस लेकर फोकस करना चाहती है उस डिजिटल डिटॉक्स पे और उसे महसूस करना चाहती है. एंड समटाइम्स द एब्सोल्यूट बेस्ट वे टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ इज टू कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट फ्रॉम द नॉइज एंड गो स्ट्रेट बैक टू द बेसिक्स. वुडंट यू अग्री टू दैट?

0: नॉस्टैल्जिया एक्सप्रेस पे सवार हैं आप मेरे साथ. दिस इज गपशप गली विथ मी टू एंड आई हैव सेव्ड द क्रेजीएस्ट रेट्रो ट्रेंड फॉर लास्ट. हम सब जानते हैं कि विंटेज क्रेज बढ़ चढ़ के बोल रहा है आजकल, लेकिन मार्केट में ना एक ऐसी एक नई चीज आई है जिसे देखकर ना कई लोग सीरियसली कहेंगे कि बॉस ये हो क्या रहा है, ये थोड़ी अति नहीं हो गई, ये वाली फीलिंग आएगी आपको. बिलीव इट और नॉट, इफ यू गो ऑन Amazon राइट नाउ यू कैन बाय ए क्लासिक ओल्ड स्कूल लैंडलाइन handset telephone receiver that plugs directly into your ultra modern smartphone via this USB cord. Can you imagine this really? मतलब क्या जरूरत है, मुझे तो यही नहीं समझ में आया. वो फील लेने के लिए वो पुराने फोन्स में जैसे वो आप वो हैंडसेट उठा के जैसे बात करते थे ना, वैसे ही मतलब मोबाइल फोन के साथ, आपके मोबाइल फोन के साथ आप कर सकते हो. यू नो, इमेजिन वॉकिंग अराउंड योर हाउस होल्डिंग दैट हैवी बल्की विंटेज रिसीवर टू योर ईयर वाइल स्टिल sort of aggressively scrolling through your touch screen phone. I mean, completely understand that people want to go back to the basics for some mental peace, but walking around talking on a giant spiral cord handset 2026 feels absolutely wild to me, honestly. Yeah, something that I wanted to share because I came across this thing and I said, what in the world is this? मैंने देखा कि Amazon में मिलता है और फिर मैंने वाकई में जाके देखा Amazon पे कि सच्ची में ये ऐसी ऐवी बात है कि मतलब वाकई में ही मिलता है, और वाकई में ही मिलता है. सीरियसली, यू कैन गेट इट फॉर सम $12 to $20 के बीच के रेंज में आपको ये मिल सकता है. जस्ट FYI, इफ यू आर कीन ऑन डूइंग इट, आई मीन वाई नॉट, किसने रोका है आपको? रोका तो वैसे किसी ने आपको यहाँ पे कॉल करने से भी नहीं. सो जरूर कीजिएगा 972-235-5555. अब नेक्स्ट इज द नवरात्रि सेगमेंट फॉर ऑल ऑफ यू. इट इज अ डे 5, लेडीज एंड जेंटलमैन.
1: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
2: अरे सारे तो सेम है.
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
2: ओ हाँ, ये तो अलग है.
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: मंदिर DFW हिंदू टेंपल सोसाइटी प्रेजेंट्स नवरात्रि महोत्सव अक्टूबर 11th to 20th.
3: डेली पूजास, आरतीज, ललिता सहस्रनामम, महामंगल आरती, माताजी पूजा और हर शाम 8:30 बजे रास गरबा.
4: अक्टूबर 16th-17th सरस्वती पूजा और अक्षर अभ्यासम.
3: अक्टूबर 17th माता की चौकी.
4: अक्टूबर 18th दुर्गाष्टमी हवन और 20th रामलीला और रावण दहन.
3: विजिट hindutemple.org और कॉल 972-445-3111.
5: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
3: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 days a week, 8 AM to 8 PM. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco. What if your next home came fully loaded with over $35,000 in premium appliances, electronics, and designer furnishings included? This nearly new home in Cambridge Crossing, Selina, first occupied in January, is available as the seller relocates. Enjoy resort-style amenities, upgraded interiors, and truly move-in ready. Just bring your suitcase. Buyers agents, get your client under contract by October 15th and earn an additional $2,000 bonus. Call Navneeta Khemka with Keller Williams Realty at 347-449-4242.
6: Every home has a story. Let's create yours together.
7: वेलकम टू द शादी मेमोरी टेस्ट. रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं. डेकोरेशंस का कलर,
8: नेक्स्ट क्वेश्चन.
7: ब्राइड की एंट्री सॉन्ग,
8: याद नहीं.
7: बफे में क्या था?
8: चना पापड़ी चाट, बिहारी कबाब, दिल्ली निहारी, अचारी चिकन, मटन बिरयानी.
3: शादी में बाकी डिटेल्स भूल सकते हैं लेकिन खाना कभी नहीं. गैदरिंग्स 50 की हो या 500 गेस्ट के लिए, चूज सिग्नेचर कुजीन्स, कस्टमाइज्ड केटरिंग, लाइव कुकिंग स्टेशंस एंड प्रोफेशनल सर्विस. कॉल 972-905-5449. सिग्नेचर कुजीन, द टेस्ट योर गेस्ट्स विल रिमेम्बर.
2: डैड प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ हैं?
9: लैपटॉप में.
2: इन्वेस्टमेंट?
9: गूगल ड्राइव.
2: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
9: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है.
2: डैड वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है.
3: योर फैमिली शुडंट हैव टू सर्च फॉर आंसर्स व्हेन यू आर नॉट देयर टू गिव देम.
10: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. विद प्रॉपर एस्टेट प्लानिंग, प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव बिल्ट एंड गिव योर फैमिली क्लैरिटी एंड कंट्रोल.
3: कॉल 669-243-5799. दैट्स 669-243-5799 और विजिट nriwealth.com फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन. NRI वेल्थ, डोंट लीव अ मेस, लीव अ प्लान.
11: Your Dubai investment opportunity is here. Success Real Estate and Janu Properties present the Grand Dubai Property Show, October 17th and 18th, 10 a.m. to 9 p.m. at Lux Hotel Arlington. Explore luxury properties with payment plans starting at $1,300 a month. Meet the developer directly, book at the show and qualify for round-trip flights to Dubai and a luxury hotel stay for two. Call Habib Mita at 954-790-2620. That's 954-790-2620.
12: कस्टमर्स हिंदी में मिलते हैं, तेलुगु में भी, पंजाबी में भी और तमिल में भी, तो ऐड सिर्फ एक लैंग्वेज में क्यों?
3: वन एशिया नेटवर्क के साथ रीच कीजिए DFW के मल्टीपल देसीज को एक ही पावरफुल नेटवर्क पर. आज ही कॉल करें 469-424-3188 और ईमेल sales@funasia.net. फन एशिया नेटवर्क, वन नेटवर्क, मेनी लैंग्वेजेस एंड मैक्सिमम रीच.
13: डालस की धड़कन 104.9 FM, Funasia Radio.

सेलिब्रेशन दैट इज ऑन गोइंग और आज है पांचवा दिन नवरात्रि का और नवरात्रि के सेगमेंट में इसी दिन पर हम थोड़ा सा हाईलाइट करने वाले हैं. बट प्रायर टू दैट आई डू वांट टू मेक श्योर कि आप माई टाइम इक्विटी के बारे में सारा कुछ जानते हैं, क्योंकि अगर यू नो अगर आप अपने ये जो यू नो फाइनेंशियल रिलेटेड चीज़ों को आप अगर सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, दे ऑफर पर्सनलाइज स्ट्रैटेजीज फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल एस्टेट एंड ऑल्टरनेटिव investments and retirement planning that they can help you with, led by CPA Sudhir Pai. mytimeequity.com pe zarur jaye, inki website pe zarur jaye and find out their strengths and how they can help you. Client centric hai, integrity is always important for them, the most important for them, innovative thinking that they bring for you and institutional access. And MyTime Equity brings investment management, alternative investments, as I said, tax aware strategies and financial planning together under one coordinated approach, and that's My Time Equity. One team, one approach to your wealth. It is mytimeequity.com. ये अगला गाना जो है ना, it is from the film धड़क 2, और उस गाने का कुछ गरबा remake इन्होंने बनाया है. इन्होंने माने किसी ने तो बनाया है और मैं ये try out करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ. So that's coming up for you next. लेकिन पांचवें दिन के बारे में बात किए बगैर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? Yes, it is the fifth day of नवरात्रि और माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है आज के दिन, the fiercely protective and loving mother of Lord Kartikeya. माँ की मूर्ति में आप देखेंगे वो अपने बेटे को गोद में लिए हुए रहती हैं, जो एक अनकंडीशनल लव और एक सुप्रीम नर्चरिंग का एक एब्सोल्यूट सिंबल है. एंड शी परफेक्टली रिप्रेजेंट्स द इनक्रेडिबल मॉडर्न वुमन हु अग्रेसिवली प्रोटेक्ट्स हर लव्ड वंस व्हाइल नर्चरिंग हर ओन एम्बिशंस. तो आज के वक्त में उनकी एनर्जी हमें फैमिली और करियर के बीच वो परफेक्ट गिल्ड फ्री बैलेंस ढूंढना सिखाती हैं. शी शोज अस दैट यू कैन बी इनक्रेडिबली टेंडर हार्टेड एंड फियर्सली पावरफुल एट द सेम टाइम, एग्जैक्ट सेम टाइम. दिस इज the fifth day of Navratri that we are celebrating with you. This is Gapshap Gali with me too.

Ladies and gentlemen, it's the fifth day of नवरात्रि एंड दैट इज़ वॉट वी आर सेलिब्रेटिंग हियर. तो जैसे कि पहले भी बताया कि महाराष्ट्र टाइम्स 2003 से ना एक कलर स्कीम लेके आई है फॉर द 9 days ऑफ नवरात्रि, और उन्होंने ये एक एड कैंपेन ऐसे शुरू किया कि वो अब एक कल्चर में तब्दील हो चुका है. एंड वी हैव रीच द ब्यूटिफुल मिडवे पॉइंट ऑफ नवरात्रि एंड डे 5 इज शाइनिंग ब्राइट विद द कलर येलो. ये रंग खुशी और ऑप्टिमिज्म और उस वॉर्म सनशाइन जैसी एनर्जी का प्रतीक है जो हर किसी को एक बहुत दिल वाला कंफर्ट देता है. वेयरिंग येलो टुडे इज बेसिकली लाइक वॉकिंग अराउंड एज अ ह्यूमन रे ऑफ सनशाइन इन द मिडल ऑफ अ बिजी वर्क डे. तो आज अपने वार्डरोब में वो ब्राइट येलो दुपट्टा या तो फिर वो फ्लोरल शर्ट या फिर वो खिलखिलाता हुआ धूप की तरह चमकता हुआ एक शर्ट निकालें और पहने और इसे इंजॉय करें. एक इंस्टेंट मूड लिफ्ट जो आपको मिलता है एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू फील सैड व्हेन यू आर वेयरिंग सच अ चीयरफुल एंड वाइब्रेंट ह्यू ऑफ garment, you know. Drop a yellow heart on your page and show off your vibrant looks for the day and take a nice selfie. Ek navratri challenge bhi jo hum aapke liye lekar aate hain, that is coming up for you in a bit. Ji haan, aaj ke din ke saath wo challenge kya hai wo main batane wali hu in a bit. Tab tak ek aur garba dance ho jaye. Let's get you this next one.

नाच तो आप खूब रहे होंगे. इट इज आफ्टर ऑल द नवरात्रि टाइम एंड इट्स द फिफ्थ डे ऑफ नवरात्रि. और रियल लाइफ के साथ एक बैलेंस जो है वो बहुत जरूरी है. और माँ स्कंद माता शायद हमें कहीं यही सिखाती हैं कि बैलेंसिंग प्रोफेशनल एम्बिशंस विद पर्सनल रिलेशनशिप इज इट्स बेसिकली द बिगेस्ट टाइटरोप वॉक फॉर मोस्ट ऑफ द वुमेन एंड द मेन इन द डायस्पोरा. करेक्ट. और यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा कि माँ स्कंद माता हमें यही चैनल करना सिखाती हैं, विच मीन्स अंडरस्टैंडिंग दैट यू आर डूइंग योर एब्सोल्यूट इन बोथ वर्ल्ड्स एंड दैट इज मोर देन इनफ. जी हाँ, कभी कभी हमें खुद पर थोड़ा सा आप नरम लेना, अपने आप को अपने आप से थोड़ा सा यू नो प्यार रखना बहुत ज़रूरी है. जस्ट लाइक अ mother is with her child, you know, so give yourself that extra grace today and every day, because nurturing your own mental health is just as important as nurturing your family. To zarur yaad rakhiyega maa skand mata ko aur unki energy zarur channel kijiye. Be protective for your family and yourself as well. It is Gapshap Gali with me too.

और ये नवरात्रि की बात हो रही है तो चमचमाते हुए कपड़ों के साथ चमचमाते हुए ज्वेलरी की बात भी होनी ही चाहिए, राइट? एंड इसीलिए श्री कृष्णा ज्वेलर्स की याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आप ऐसी कोई शॉपिंग करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो मे वी सजेस्ट श्री कृष्णा ज्वेलर्स की, जहाँ पे आपको स्टनिंग हैंडक्राफ्टेड कलेक्शन मिलेगा, गोल्ड डायमंड्स पोल की और बहुत कुछ और मिलेगा, और डिजाइंस कई सारे अलग अलग वेराइटी मिलेगी फॉर एवरी ओकेशन एंड एवरी स्टाइल. That is their specialty, and do remember to check their showroom out. It is at 13145 Main Street, Suite 220 in Frisco. Number hai 430-231-1111. Maine kitne sare one bole, fir se bol rahi hu, 430-231-1111. Yes. I am there with you right here on Fun Asia Network. This is Gapshap Gali with me too. और day 5 का आपका challenge क्या है? क्योंकि मैं हर बार आपके लिए एक नवरात्रि challenge लेकर आती हूँ, तो day 5 का challenge completely dedicated है to the amazing nurturing figures in your life. माँ स्कंद माता को याद करते हुए आज अपने ना बिजी स्केड्यूल से 5 मिनट जरूर निकाल के अपनी मॉम या आपके जो भी मेंटोर होंगे आपके लाइफ के, दैट कैन बी एन इंडिविजुअल हु हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड इन अ वे जो कि आप शायद कभी मेंशन ही नहीं कर पाए हैं उनको, जिस तरह का सपोर्ट उन्होंने दिया है शायद आपने बोला है, कई बार बोला है, लेकिन आज फिर एक बार फ़ोन उठा के ज़रूर उनको याद कीजिएगा और ज़रूर उनको बताइएगा. जस्ट टेल देम हाउ मच यू अप्रिशिएट देयर endless warmth and unconditional protection. ये छोटा सा gesture उनके दिन में बिल्कुल एक yellow sunshine जैसा खुशी बिखेर देगा. And today is the color yellow that has all the prominence. So do that. This is my challenge to you. Once again, this is Gapshap Gali with me too.

0: You are listening to Funnychur Radio 104.9 FM, and I thought it is just absolutely right to get our listener on the airwaves of Funnychur Radio, because अपने बारे में सोचकर you know जो चीज की जाती है उसे guilt free way में enjoy कर सकें, ये आपको माँ स्कंदमाता आज याद दिलाती हैं. और इसी के बारे में कुछ नेहा हमसे बात करना चाहती थी. I thought I'll take you on air, and you know whatever you were telling me, it was so meaningful. I thought I would like to like my listeners to hear that as well. So Neha, welcome on the airwaves. Batao.
1: Thank you, me too. Thank you so much. Yes, I loved how you were saying, you know, that self-compassion and self-kindness needs to be extended to ourselves. And being in the mental health field as a therapist, I can tell you that South Asian, all of us South Asians, we struggle with that so much. Because humne dekha hi nahi hai that we have to prioritize ourselves.
0: Absolutely.
1: So taking out a few minutes in your day for yourself to do something that you like can bring you so much joy. It can bring calmness to your nervous system, and it can regulate yourself, and you also model to your children that
0: Absolutely.
1: It's okay to prioritize yourself.
0: Absolutely, Neha, and I completely agree with you on this fact that, you know, you have to teach the next generation actually what it is to take care of yourself, and do it guilt-free. Absolutely guilt-free.
1: Absolutely. Do it guilt-free. Do it as a lesson that we are passing on, something beautiful we're passing on to our next generation.
0: Absolutely, Neha. What a pleasure it is to always talk to you. I told you, you are my sunshine in my radio world.
1: Oh, thank you.
0: Well, thank you.
1: It's lovely to have you back on the airwaves.
0: Thank you so much. Means the world to me. I have such lovely, amazing listeners, I'll tell you. And it absolutely fills my day with that golden sunshine. Seriously. We will be going into a short commercial break. लेकिन ब्रेक से वापस आने के बाद जानते हैं ना, एक सेगमेंट है जिसका नाम है ताज़ा एंड न्यू, यानी कि कुछ नई खबरें जो हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं इन द लिमिटेड टाइम दैट वी हैव. जो भी मेरे स्कोप ऑफ कंटेंट कंज्यूमिंग में आता है वो मैं आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ. बाकी अगर आपको कुछ लगता है कि ये बात लोगों तक पहुँचनी चाहिए, यू नो द नंबर टू द स्टूडियो, राइट? 9722355555 स्टूडियो का नंबर है. और कनेक्टेड रहेंगे आप हमारे साथ, मेरे साथ और हम सबके साथ राइट हियर ऑन फनएशिया नेटवर्क. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ गपशप गली.
2: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
3: Official tax and finance partner, AG FinTax.
2: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: In association with Passion Health Primary Care.
4: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
5: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
6: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
7: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
8: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
9: Ek aur laddu le lo.
10: Thodi aur biryani.
9: Are America jaake thodi milega.
11: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बन के साथ आ गए.
12: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए. स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. अलोंग विद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स, दे आल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जायटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स. कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर.
13: यार बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग,
10: और ऊपर से स्ट्रेस।
13: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
10: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
13: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
10: ये क्या होता?
13: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
12: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
14: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन available.
15: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
16: लिया।
15: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
16: नहीं आया।
15: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। Whether it's home, auto, health or business, every policy is customized around you. Hotels, motels, gas stations and small businesses, they help protect what you worked hard for. No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jumani at Sonata Inc. 972-863-772. That's 972-863-772.
12: Visit www.sanadainc.com today.
17: Dil ki baat kisse kahein?
18: Pandit Gurudev se. 35 saal se zyada ke experience ke saath, Pandit Gurudev karte hain kundali reading, birth chart analysis, palm reading aur face reading. Black magic aur negative energy removal mein expertise. प्यार, शादी या रिश्तों की उलझन हो तो पर्सनल गाइडेंस लीजिए। कॉल 469-581-1777. That's 469-581-1777. पंडित गुरुदेव, आइए अपनी बात कहिए।
9: हुजूर, आपको चुनना होगा, हम या ये बिरयानी।
19: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
9: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
19: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
20: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
21: Happy hours Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
20: Barista House, richness of biryani bliss.
21: Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
22: Is Diwali, Topal mein dekhiye ek bhavya nazara. Ganesha, Lakshmi aur Saraswati ke grand LED cutouts. Aur pehli baar Ram Leela. South Asian Food Festival by Bindas Services. November 1st, The Sound, Kapel.
23: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनेजिया रेडियो।

लिसन, ए आर रहमान का अपना एक ब्रांड है, राइट? और उस ब्रांड को क्रिएट करने के लिए बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़े, तो जाके उनकी जो एक्चुअल जो पोटेंशियल है लोगों तक पहुंची। ये बात आप मानते हैं कि नहीं? ऐसे ही अगर आपके ब्रांड को कुछ हेल्प चाहिए, यू नो, जस्ट अ सोशल मीडिया पोस्ट दैट नीड्स द अटेंशन, द रीच, द रिजल्ट्स, तो फिर फनीशा नेटवर्क आपके लिए मीडिया एक्सपर्टीज लेकर आ रहे हैं सोशल मीडिया टू योर सोशल मीडिया विद रिलेटिव मीडिया, स्क्रोल स्टॉपिंग रील्स या आई कैचिंग ग्राफिक्स टू कैप्शंस, कॉन्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड एम्प्लीफिकेशन अक्रॉस फनीशियाज रेडियो।

यू आर ट्यून्ड इन टू फाइनेंशियल नेटवर्क और ये है गपशप गली विथ मी टू। और ये गपशप गली का वो गली है ये जहाँ पर हम ताज़ा और न्यू की बात करते हैं। तो फर्स्ट आप नॉट अ गुड न्यूज़, स्ट्रीमिंग जायंट नेटफ्लिक्स हैज़ जस्ट अनाउंस इट्स बिगेस्ट राउंड ऑफ जॉब कट्स टू डेट, लेइंग ऑफ अराउंड 1,000 एम्प्लॉयज विच रिप्रेजेंट्स अबाउट 6% ऑफ इट्स टोटल वर्क फोर्स। Co-CEOs Ted Sarandos और साथ में Greg Peters ने एक इंटरनल मेमो में ये बताया है कि layoffs mostly product, technology, legal और HR teams को affect करने वाले हैं। What makes this surprising is that the company posted massive numbers in 2025, reaching $45.2 billion in revenue and earning $11 billion in net income. लेकिन investors का कहना ये है कि 2026 में Netflix की per user engagement थोड़ी स्लो हो गई है, पर्टिकुलरली नेटफ्लिक्स के पर यूजर एंगेजमेंट जो है फर्स्ट हाफ में काफ़ी स्लो हो गई थी। हाउएवर वाइल दे आर एक्टिवली

लिसन, ये है सेगमेंट ताज़ा एंड न्यू. और ताज़ा खबर जो हम आपके लिए लेकर आए थे, वी टोल्ड यू दैट नेटफ्लिक्स हैज सिक्योर्ड एक्सक्लूसिव स्ट्रीमिंग राइट्स टू द 2030 फीफा वर्ल्ड कप इन स्पेन एंड एंडोरा, राइट? नाउ देयर इज अनदर अपडेट एंड एन एक्साइटिंग वन, माइट आई ऐड, फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड बिजनेस. अगर आपको लगता है कि भाई लिंक्डइन सिर्फ जॉब सर्चेस और रेज्यूमे अपडेट्स के लिए है, तो भाई दोबारा चेक कीजिए, क्योंकि किंग कोहली हैज ऑफिशियली एंटर्ड द चैट. जी हाँ, विराट कोहली ने अपने लिंक्डइन डेब्यू जो किया है, उसे थोड़ा सा धमाका मचा है लिंक्डइन में, मूविंग बियॉन्ड हिज 271 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स टू शोकेस हिज सेकंड इनिंग्स एज ए सीरियस एंटरप्रेन्योर विद वेंचर्स लाइक 18 वर्ल्ड एंड एजिलिटास स्पोर्ट्स. बाय द वे, लिंक्डइन का गेम अब पूरी तरह से बदल चुका है. इफ यू डोंट नो, लेट मी अपडेट यू विद दैट. इट हैज एक्सपेंडेड वे पास ट्रेडिशनल रिक्रूटमेंट टू बिकम ए पावरफुल हब वेयर you know founders, investors and industry leaders discuss real business decisions and build credibility. Aur is massive global shift ke bilkul center mein hai India. Ji ha, you will be amazed to know that India already crossed 160 million members on the platform last year. The fact of the matter that I can tell you, experts predict that if this explosive growth continues, aane wale 2 se 3 saalon ke andar India will officially become LinkedIn's largest market in the entire world. Coming back to Virat Kohli's debut in LinkedIn, unke प्लेटफॉर्म पर आते हैं और बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला के बारे में, क्योंकि उन्होंने जो वार्म वेलकम दिया है यार, और जो कमेंट लिखा है विच सेड माय फीड जस्ट गॉट इवन मोर इंटरेस्टिंग. वेल, वी कांट डिनाई दैट, एंड इट डेफिनेटली इज एप्लीकेबल फॉर आर प्लेटफॉर्म एज वेल, राइट? अपनी पहली पोस्ट में विराट कोहली ने अपने बिजनेस एम्बिशंस की बात की है, एंड ही हाईलाइटेड हिज मैसिव विजन ऑफ बिल्डिंग एन एंड टू एंड स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म फ्रॉम इंडिया दैट हेल्प शेप ग्लोबल स्पोर्ट्स, शेयरिंग हिज जर्नी एज एन इन्वेस्टर इन एजिलिटा स्पोर्ट्स एंड को फाउंडर ऑफ द ब्रांड 18 वर्ल्ड. उनकी फिलोसफी सिंपल और बहुत पावरफुल है. Progress comes from pushing boundaries, and it is time to build something that will outlive us all. That's Taza and News segment ka ek aur update for all of you right here on Gapshap Gali with me too.

इट इज नवरात्रि दैट इज ऑन गोइंग, तो सेलिब्रेशन तो ऑन इन द एयर है ही, और यही सेलिब्रेशन आपकी जुबान पे भी होना चाहिए, और इसीलिए तो हम चाहते हैं द फ्लेवर ऑफ सेलिब्रेशन दैट यू कैन गेट एट द फ्लेवर लाउंज. लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑल न्यू वीकेंड लंच बफे फॉर ऑल ऑफ यू, जहां पर आपको एक्साइटिंग लाइव काउंटर्स के साथ साथ शेफ्स की स्पेशलिटीज मिलेंगी, वो फ्रेश फ्लेवर्स मिलेंगे, बहुत ही मजेदार डिलिशियस डिशेज जो यहाँ पे हैं, आप उसे ट्राई करने के लिए जरूर जाए. सैटरडे या संडे को जाए या दोनों दिन जाएं यार, आपकी मर्जी. 12 PM to 3 PM, 12 यानी नून से लेके 3 PM तक, टेक योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, और मेक श्योर कि आपका ये सेलिब्रेशन टाइम थोड़ा सा और सेलिब्रेटरी हो जाए विथ द फ्लेवर लाउंज. 5855 प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को, द फ्लेवर लाउंज, जहाँ पे आप अच्छा खाना खाते हैं और अच्छी मेमोरीज बनाते हैं. Just like what you do at Phoenicia Network with me right here. This is Gapshap Gali with me too.

0: रियलिटी चेक अक्सर डर बीमारी का नहीं उसके पकड़े जाने का होता है, लेकिन व्हाट इफ में मत अटके, एनुअल चेकअप करवाइए।
1: विजिट एलन इंटरनल मेडिसिन एंड ट्रस्ट डॉक्टर वनीता एंड हर टीम फॉर एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग्स एंड वेट मैनेजमेंट। न्यू पेशेंट्स विद सेम डे अपॉइंटमेंट्स वेलकम। कॉल 4696499995 और विजिट aimallen.com।
2: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
3: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
4: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
3: Kya matlab?
4: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
3: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
4: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
3: Ab to karna hi padega, madam.
5: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
6: Family ko chahiye North Indian, friends ko South Indian. Ab jaye to jaye kahan?
1: Simple. बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर।
7: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
1: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहां चॉइसेस ही चॉइसेस हैं।
7: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी।
6: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड। बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर।
8: Order, order. Mr. Impressions, campaign का result.
9: Your Honor, हजारों लोगों ने ad देखा.
8: Miss Clicks?
10: 100 लोगों ने click भी किया.
8: Customers कितने आए?
11: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
12: Marketing में clicks नहीं, customers matter करते हैं. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smartreach AI. Turn attention into customers. Smartreach AI, a Phanasia Network product.
13: जब सेलिब्रेशन देसी हो तो अंदाज भी खास होना चाहिए। इस फेस्टिव सीजन अपने ट्रेडिशनल स्टाइल को दीजिए एक ग्रैंड अपग्रेड विद मान्यवर मोहे। फेस्टिव और वेडिंग वेयर फॉर मेन एंड वुमेन।
14: विजय देवरकोंडा की कॉन्फिडेंट स्टाइल हो या रश्मिका की एफर्टलेस ग्रेस, गेट दैट परफेक्ट लुक डिजाइंड फॉर एवरी सेलिब्रेशन।
13: लोकेटेड एट I-635 इन इरविंग, मान्यवर मोहे। सेलिब्रेशन आपका, अंदाज खास।
14: ओपनिंग सून ऑन रोनाल्ड रेगन बुलेवार्ड इन लियांडर, ऑस्टिन।
13: 15th को फेस्टिव शॉपिंग,
15: उसके बाद फ्लेवर लाउंज,
13: 20 को गरबा का प्लान,
15: देन फ्लेवर लाउंज,
13: 1st को दिवाली मीटअप,
15: लेट्स केटर फ्रॉम फ्लेवर लाउंज।
13: और आज कोई प्लान ही नहीं है
15: तो चलो फ्लेवर लाउंज।
16: खाने वालों को खाने का बहाना चाहिए।
14: सेलिब्रेशन हो, शॉपिंग की भूख या बस कुछ अच्छा खाने का मूड, डाइन इन और केटरिंग, थिंक फ्लेवर, थिंक द फ्लेवर लाउंज, फ्रिस्को। इस फेस्टिव सीजन हर प्लान में थोड़ा फ्लेवर, खाने वालों को खाने का बहाना चाहिए।
17: हर मोहब्बत की आवाज, द वन एंड ओनली लिविंग लेजेंड राहत फतेह अली खान।
18: राहत फतेह अली खान,
14: एक्सपीरियंस वंस अपॉन अ टाइम वर्ल्ड टूर 2026। राहत फतेह अली खान और उनके बेटे शहजमान अली खान एक ही स्टेज पर।
17: ब्रॉट टू यू बाय रेहान सिद्दीकी, डॉक्टर यास्मीन कुरैशी एंड ट्रू पेमेंट सॉल्यूशंस। फ्राइडे अक्टूबर 16, 8:30 PM, कमेरिका सेंटर, फ्रिस्को।
14: ग्रैंड स्पॉन्सर कराही पॉइंट प्लेनो के एक्सक्लूसिव कंसेशंस के साथ।
17: टिकट्स ऑन टिकटमास्टर एंड सुलेखा.com।

0: जिंदगी के कई रंग फनीशा रेडियो के संग।
1: हेलो नमस्ते गुड आफ्टरनून और आपकी होस्ट आयुषी पहुंच गई है स्टूडियो आपको एंटरटेन करने के लिए और आप सबको नवरात्रि के पांचवें दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

नवरात्रि का पांचवा दिन और आज हम बात करेंगे माँ दुर्गा के पांचवे स्वरूप की, माँ स्कंद माता की। दोस्तों, नव दुर्गा के हर रूप में एक अलग ही कहानी है, एक अलग ही सीख है और माँ स्कंद माता का रूप हमें याद दिलाता है कि एक औरत की उस ताकत को जो शायद दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे पावरफुल ताकत है, एक माँ की ताकत। माँ के इस रूप में, माँ की गोद में ना एक बच्चा दिखता है। माँ को आम तौर पर चार भुजाओं में दर्शाया जाता है, लेकिन इस रूप में उनकी गोद में बालक स्कंदा विराजमान होते हैं। दो हाथों में कमल के फूल होते हैं और उनका वाहन शेर है। उनके इस रूप में ममता भी है, शांति भी है और ज़रूरत पड़ने पर बुराई से लड़ने की साहस भी है। कहा जाता है कि माँ स्कंद माता की पूजा करने से भक्तों को सुख, शांति और संतान के लिए आशीर्वाद मिलता है। उनका कमल पर विराजमान रूप उनकी पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक है। और अब बात करें आज के मॉडर्न वुमेन की और इनको माँ स्कंदा का रूप कैसे कह सकते हैं, स्कंद माता का रूप कैसे कह सकते हैं। तो आज की वुमेन भी तो कितने रोल्स निभाती है ना। वो ऑफिस में टारगेट्स अचीव करती है, अपना करियर बनाती है, घर संभालती है, बच्चों की परवरिश करती है और आजकल की माएँ कुछ ज़्यादा ही फिनिकी भी कहलाती है, क्योंकि वो बहुत सारे अच्छी चीज़ें करने की कोशिश करती है अपने बच्चे के लिए और फैमिली की हर मेंबर की ज़रूरत का ख्याल रखती है। लेकिन माँ स्कंद माता से हमें एक बात बहुत खूबसूरती से सीखने मिलती है, माँ होना सिर्फ बच्चे को संभालना नहीं है बल्कि उससे इतना मजबूत भी बनाना है कि वो एक दिन अपनी पहचान खुद बना सके। माँ स्कंद माता की गोद में कार्तिकेय हैं, लेकिन कार्तिकेय की अपनी एक पहचान भी तो है। इसी तरह एक मॉडर्न मदर भी अपने बच्चे को प्यार और प्रोटेक्शन देती है, लेकिन उसके सपनों को उड़ने के लिए पंख भी देती है। और एक बात और, हर वक्त स्ट्रांग रहना, हर जिम्मेदारी अकेले उठाना ये भी ज़रूरी नहीं है। जो माँ सबका ख्याल रखती है उसे भी केयर की, रेस्ट की और सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो आज नवरात्रि के पांचवे दिन माँ स्कंद माता से ये प्रार्थना करें कि हर माँ को ममता के साथ शक्ति मिले और हर बच्चे को सही दिशा मिले और हर वुमन को अपनी पहचान और अपने सपने जीने का मौका मिले। आप सबको नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं।

टेकिंग यू टूअर्स अ ब्यूटिफुल ट्रैक। माँ की ही भक्ति का समय है, माँ की भक्ति का दिन है। तो अभी 1 बजे तक कुछ ऐसे ही भक्ति गीत चलने वाले हैं। स्टूडियो के नंबर पे कॉल करिए और अपनी फरमाइशें दीजिए। उसके पहले आपको लेकर के चलती हूँ इस प्यारे से माँ के भक्ति गीत की ओर, जो कि है जगजीत सिंह की आवाज़ में।

आपके सपनों का घर आपसे बहुत ही करीब है, आप सोच भी नहीं सकते उससे ज्यादा, क्योंकि 1998 से ड्रीम होम मॉर्गेज ने बहुत सारे परिवार को नेशन वाइड हेल्प किया है पर्सनलाइज मॉर्गेज सॉल्यूशन के साथ घर खरीदने के लिए और रीफाइनेंस करने के लिए। तो आप भी इनकी मदद ले सकते हैं, आप इनको कॉल कर सकते हैं 9722455626 पर, या फिर आप dreamhomemortgage.com पे विजिट करके डिटेल्स जान सकते हैं। ड्रीम होम मॉर्गेज, मेकिंग ड्रीम होम्स हैपन। और अपने शो के इस सेगमेंट में हम कुछ प्यारे और खूबसूरत गाने सुन रहे हैं। नवरात्रि का के 9 दिन चल रहे हैं, आज 5वां दिन है और हर तरफ बस नवरात्रि के डांडिये की गरबे की धूम है। मंदिरों में पूजा अर्चना चल रही है, सबके घरों में पूजा चल रही है, कीर्तन चल रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना अपने शो का पहला आधा घंटा सिर्फ और सिर्फ माँ की भक्ति में लगाए। तो ये रहा अगला गाना जुबिन नौटियाल की आवाज में।

Injured in a car, truck or slip and fall incident? Focus on healing while attorney Omar fights for you, and you pay nothing unless he wins. You can call him on 469-300-5046 या फिर आप उनका वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, विच इज attorneyomar.com. तो चलिए अगले गाने की तरफ जल्दी से लेकर के चलते हैं. बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा गाना लेकर के आए हैं आपके लिए फिल्म क्रांतिवीर से.

जल्दी से अगले गाने की तरफ लेकर के चलते हैं क्योंकि वक्त हो रहा है उसके बाद छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, और हमारा ये सेगमेंट यहीं पे खत्म होता है। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे सारे लिसनर्स को, और ब्रेक के बाद आते हैं और फिर शुरू करेंगे अपना अगला सेगमेंट। आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फनेशा 104.9 FM पर।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
4: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
5: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
6: Call 857-891-8942 today.
7: अजी सुनते हो?
8: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
9: The OG of tax planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Fun Asia Radio.
10: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
11: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
12: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
13: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
12: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
14: तो बताइए, आजकल स्ट्रेस किस बात का है?
15: डॉक्टर साहब, हर महीने वही कहानी। इलेक्ट्रिसिटी बिल कभी भी बढ़ जाता है, कस्टमर सर्विस डोंट आंसर, और रिन्यूअल के टाइम बस नए सरप्राइजेस। सच कहूँ, बिजनेस कम, टेंशन ज्यादा है।
16: क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं?
14: यू नो, आपको थेरेपी की नहीं, तारा कमर्शियल एनर्जी की जरूरत है।
4: 2002 से तारा कमर्शियल एनर्जी टेक्सास के बिजनेसेस को कम्पेटिटिव कमर्शियल एनर्जी प्लान्स और डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट दे रही है। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com।
17: अगर किसी चीज को दिल से चाहो
18: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं।
19: डील कहाँ?
18: सिंपल, पास्या पे। इंट्रोड्यूसिंग पास्या। डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ। ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड अ डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन।
19: डाउनलोड पास्या, दैट्स PAASYA टुडे, बिकॉज डील्स दूर नहीं, पास है।
20: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम? Okay, name of the lawyer? Omar Khwaja.
19: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
21: Your Dubai investment opportunity is here. Success Real Estate and Danu Properties present the Grand Dubai Property Show, October 17th and 18th, 10 a.m. to 9 p.m. at Lux Hotel Arlington. Explore luxury properties with payment plans starting at $1,300 a month. Meet the developer directly, book at the show, and qualify for round-trip flights to Dubai and a luxury hotel stay for two. Call Habib Mita at 954-790-2620. That's 954-790-2620.
22: हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। और आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फन एशिया 104.9 FM पे। और अब हम शुरू करने वाले हैं अपने शो का अगला सेगमेंट। अगला सेगमेंट है कुछ ऐसी रियल लाइफ रोमांस जोड़ीज का जो कि कुछ समय बाद रियल लाइफ रोमांस जोड़ियां बन गई और उनके पीछे की कुछ कहानियां लाएंगे, कुछ बातें लाएंगे और उनके फिल्मों को आपके गाने सुनाएंगे। और अगर आपको भी कोई ऐसी जोड़ी याद है जो कि पहले पर्दे पे आई और फिर जा करके अनएक्सपेक्टेडली यू नो उनकी जोड़ी रियल लाइफ में भी बन गई, तो एक्सपेक्टेडली या अनएक्सपेक्टेडली जैसे भी, तो प्लीज़ मुझे कॉल करिए और बताइए। शुरू कर रहे हैं अपना अगला सेगमेंट इस बहुत ही प्यारे और खूबसूरत के 70s के नंबर के साथ और फिल्म का नाम है अभिमान। पहले गाना सुनते हैं फिर वापस आके इस जोड़ी के बारे में बात करेंगे। ऐसे ही और सदा

अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी की ये जोड़ी, जी हाँ, जिसको हमने देखा है पर्दे पर कई बार। और बॉलीवुड की कुछ जोड़ियां ऐसी होती हैं जिन्हें पर्दे पर देखते देखते हम उनकी असली जिंदगी में ही कहानी में भी दिलचस्पी रखने लगते हैं। और ऐसी ही एक जोड़ी है अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की। और इन दोनों की कहानी जो कुछ ऐसी है कि इन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी फिल्म गुड्डी के दौरान, लेकिन अमिताभ जी ने इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए थे। फिर फिल्म बंसी बिरजू और एक नज़र में दोनों साथ में नज़र आए और धीरे धीरे इनकी नज़दीकियां बढ़ने लगीं। एंड जया जी वॉज अ वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड एक्टर बैक देन जब अमित जी आए थे, और क्योंकि गुड्डी में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, बहुत पहचान मिली थी। उसके बाद कई सारी फिल्मों में ये लोग साथ इन्होंने काम किया, लेकिन इनकी प्रेम कहानी को एक खूबसूरत पहचान मिली फिल्म जंजीर के दौरान। कहा जाता है कि फिल्म की सफलता के बाद दोनों छुट्टियां मनाने जाने वाले थे और इसका प्लान बन रहा था, लेकिन इन अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हरिवंश राय बच्चन और तेजी जी ने कहा दोनों ने कि अगर तुम लोगों को साथ में घूमने फिरने जाना है तो भाई पहले शादी कर लो। और फिर 3 जून 1973 को इनकी हो गई शादी, और उसके बाद ये लोग गए वेकेशन पे। और पर्दे पर अभिमान मिली शोले और सिलसिला जैसी फिल्मों में इनकी केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया था, और असली जिंदगी में भी दोनों ने एक लंबा सफर तय किया है। आजकल जया जी थोड़ा गुस्से में रहती हैं और अमिताभ जी उतने ही सहज और शांत हो गए हैं, शायद भगवान जोड़ियां बना के भेजता है। जया जी ने अमिताभ बच्चन के संघर्ष के दिनों में को भी देखा है और उनके शोहरत का शिखर भी देखा है। वहीं अमिताभ जी और जया जी ने अपने रिश्ते को हमेशा अपनी निजी जिंदगी का हिस्सा बनाए रखा है, और शायद यही जोड़ी की सबसे खूबसूरत बात है। पर्दे पर इनकी मोहब्बत को हमने कई रूप में देखा, लेकिन असल जिंदगी में इनके रिश्ते की कहानी 5 दशक से भी ज्यादा की है। तो दोस्तों, अमिताभ बच्चन और जया जी की जो ये जोड़ी है सिर्फ बॉलीवुड की यादगार ऑन स्क्रीन जोड़ी नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ ये उस दौर की एक ऐसी प्रेम कहानी है जिसमें सिनेमा और जिंदगी के रास्ते एक दूसरे से मिल जाया करते हैं। तो बहुत ही हम सब जानते हैं कि बहुत ही प्यारी जोड़ी है। थोड़ी सी जया जी गुस्से वाली और हमारे अमिताभ बच्चन जी थोड़े से सहज और शांत दिखने वाले, और पिछले 5 दशक से दोनों हैं साथ और बहुत सारी उन्होंने फिल्में साथ में की हैं। तो एक इनकी ही फिल्म से गाना और लेकर के आते हैं, उसके बाद से अगली जोड़ी के बारे में बात करेंगे। हमारी

0: पिछले 5 दशक से दोनों हैं साथ और बहुत सारी उन्होंने फिल्में साथ में की हैं। तो एक इनकी ही फिल्म से गाना और लेकर के आते हैं, उसके बाद से अगली जोड़ी के बारे में बात करेंगे। हमारी कॉलर पुष्पा जी ने भी कॉल करके बताया कि ये भी जो है ना, ये जोड़ी उनकी भी फेवरेट जोड़ी में से एक है। उसके साथ साथ उनको रणबीर और आलिया की भी जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसी बहुत सारी जोड़ियां हैं जिनको हमने पर्दे पर देखा है और आज उनके बारे में बात भी करेंगे। फिलहाल ये गाना फिल्म जंजीर से।
1: आपके दिल में जो

individuals and businesses, call 469-942-9888. I repeat, it's 469-942-9888 or visit agfintaxer.com today. तो चलिए आज कुछ ऐसी जोड़ियों की बात कर रहे हैं जिनको हमने पर्दे पर भी देखा है और असल जिंदगी में भी साथ देखा है, और बॉलीवुड में कई ऐसी जोड़ियां रही हैं जिनकी केमिस्ट्री पर्दे पर दिखी, लेकिन कुछ जोड़ियां ऐसी भी हैं जिनका प्यार पर्दे से निकलकर असली जिंदगी तक पहुंच गया। उनमें से एक और नाम है धर्मेंद्र जी और हेमा मालिनी जी का। 1970 में फिल्म तुम हसीना मैं जवान के सेट पर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी जी मिले। एक तरफ थे बॉलीवुड के हैंडसम हीमैन और दूसरी तरफ थी ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी। फिर आई सीता और गीता, ड्रीम गर्ल और शोले जैसी फिल्में, और जब वीरू ने बसंती के साथ रोमांस किया तो ऑडियंस को सिर्फ एक्टिंग नहीं कुछ असली सा एहसास भी नजर आया। कहते हैं उनकी दोस्ती धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गई, लेकिन इस लव स्टोरी का एक पहलू ऐसा है जो इसे दूसरी बॉलीवुड लव स्टोरी से अलग बनाता है। धर्मेंद्र जी पहले से शादीशुदा थे, उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर जी और चार बच्चे भी थे, फिर भी हेमा मालिनी जी के साथ उनका रिश्ता इतना गहरा हुआ कि 1980 में दोनों ने शादी कर ली। लेकिन धर्मेंद्र जी ने अपनी पहली शादी खत्म नहीं की, वो अपने पहले परिवार से भी जुड़े रहे और हेमा जी के साथ उनकी दो बेटियां भी हुईं। हेमा जी ने भी बार बार कहा कि वो उनके पहले परिवार को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हैं और प्रकाश कौर जी के लिए उनके मन में रिस्पेक्ट है। तो देखिए, जिंदगी कभी कभी फिल्मों की तरह सीधी नहीं होती है। प्यार की कहानी में रोमांस होता है, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारियां भी होती हैं, कॉम्प्रोमाइजेस और दूसरे लोगों की जज्बात भी होते हैं। एंड वीरू एंड बसंती की जोड़ी आज भी हमें मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है, लेकिन धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की असली कहानी हमें याद दिलाती है स्क्रीन पर दिखने वाला रोमांस रियल लाइफ के हिसाब से ना, और रियल लाइफ में जो चीज़ें होती हैं उनमें काफ़ी फ़र्क होता है, और शायद इसीलिए इनकी जोड़ी और उनकी कहानी आज भी बॉलीवुड के सबसे ज़्यादा चर्चित लव स्टोरीज में से एक हैं। एंड विद दिस टेकिंग यू टूवर्ड्स द मज़ेदार सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म शोले, जिसमें आपको धर्मेंद्र और हेमा मालिनी जी की याद आ जाएगी। और ऐसी कोई और जोड़ी जिसके बारे में आप सुनना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो ज़रूर स्टूडियो के नंबर पे कॉल करिए। 972-235-5555 है स्टूडियो का नंबर। आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फनेशिया 104.9 FM पर।

तो अब बात करते हैं अगली जोड़ी के बारे में, और पुष्पा जी दे रही हैं मेरा फुल ऑन साथ, बिकॉज बिल्कुल मैं और वो साथ ही साथ चल रहे हैं। जो नाम मेरे जहन में है वही वो कॉल करके बता रही हैं। थैंक यू पुष्पा जी फॉर यू नो टेकिंग दिस, लाइक मेकिंग दिस मोर एक्साइटिंग फॉर मी। तो अगली जोड़ी के बारे में बात करते हैं। एक बिल्कुल रिजर्व, शांत, एकदम ऐसे चुप बैठ जाए तो लगता है कि खड़ूस है, और दूसरी दिन भर जय जय पापा करने वाली मस्ती खोर सी लड़की। इनकी जोड़ी के बारे में बात करते हैं। तो बॉलीवुड में हमने बहुत सी स्टोरीज देखी हैं, कुछ में पहली नज़र का प्यार, कुछ में फिल्मी प्रपोजल, और कुछ में घुटनों पर बैठकर हीरोइन को रिंग पहनाना। ये सब हमने बॉलीवुड में ही देखा है, फिल्मों में, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। लेकिन अजय देवगन और काजोल की स्टोरी के बारे में बात करते हैं। इसमें ना कोई ग्रैंड प्रपोजल था, ना ही शुरुआत में एक दूसरे को देख के दिल की घंटी बजी थी। साल 1995 में आई थी फिल्म हलचल। एक तरफ थी काजोल बिंदास चुलबुली और नॉनस्टॉप बोलने वाली, दूसरी तरफ अजय देवगन शांत सीरियस और अपनी ही दुनिया में रहने वाले। काजोल को अजय पहली नजर में काफी अलूफ लगे, और अजय को काजोल को ज्यादा ही टॉकेटिव लगी। ये हमने कई बार इनसे इंटरव्यूज में सुना है। लेकिन शूटिंग के दौरान बातें शुरू हुई और दोस्ती हुई, और मजेदार बात यह है कि काजोल शुरू में अजय से अपने बॉयफ्रेंड के बारे में एडवाइस लेती थी। किसे पता था कि जो वो अपने दिल की बात शेयर कर रहे हैं, एक दिन वही उनके दिल के सबसे करीब आ जाएगा। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदली, इश्क और प्यार तो होना ही था जैसी फिल्में इन दोनों ने साथ में की, और इनकी केमिस्ट्री ने, ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने ऑडियंसेस का दिल जीत लिया, और रियल लाइफ में भी दोनों को समझ में आ गया कि वो एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। एंड 24 फरवरी 1999 को दोनों ने शादी कर ली। कोई ग्रैंड बॉलीवुड वेडिंग नहीं थी, घर पर इंटिमेट सेरेमनी और मीडिया की नज़रों से दूर अपना खास दिन था। और शादी के वक्त एक मज़ेदार किस्सा भी है। काजोल ने बताया कि फेरों के दौरान अजय पंडित जी को जल्दी करने के लिए कह रहे थे। आज उनकी कहानी सिर्फ दो एक्टर्स की लव स्टोरी नहीं है, ये दो बिल्कुल अलग पर्सनालिटीज की कहानी है, जिन्होंने एक दूसरे को बदलने के बजाय एक दूसरे को समझना सीखा है। ओके, तो ये थी काजोल और अजय देवगन की कहानी। और आजकल हम सोशल मीडिया पे ना कुछ ज़्यादा ही देख रहे हैं कि दोनों हमेशा एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं, मतलब पैपरासीज को कुछ काम नहीं है। ठीक है यार, हर पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, इन लोगों ने हर, अभी स्पेशली इस टाइम पे जब दुर्गा पूजा के पंडाल में ना काजोल रानी मुखर्जी ये लोग कुछ ज़्यादा ही दिखते हैं, उस समय ये लोग कोई एक सीन पकड़ लेंगे जहाँ पे काजोल इज़ बिजी और एंग्री और व्हाटएवर है, उसके बाद उसको पकड़ कर ही लगा देंगे कि यार देखो इन दोनों के बीच में बन नहीं रही है। बन रही है, नहीं बन रही है, क्या फ़र्क पड़ता है? हमें तो पर्दे पर दोनों साथ में अच्छे लगते हैं। और इतने सालों से, 1999 से लेके 2026 तक साथ में हैं, तो शादी अच्छी ही चल रही होगी ऐसा मान के हम भी चल देते हैं, क्योंकि इनकी जोड़ी मुझे बहुत पसंद है और इनकी फिल्मों के गाने भी बहुत प्यारे हैं। आपको अगले गाने की तरफ लेकर के चलते हैं, जो कि है फिल्म प्यार तो होना ही था से।

0: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले सुनो,
1: हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं, और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म।
0: सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर।
2: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह। कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259।
3: एकता मंदिर DFW हिंदू टेंपल सोसाइटी प्रेजेंट्स नवरात्रि महोत्सव अक्टूबर 11th to 20th।
4: डेली पूजा, आरतीज, ललिता सहस्रनामम, महामंगल आरती, माताजी पूजा और हर शाम 8:30 बजे रास गरबा।
3: अक्टूबर 16th-17th सरस्वती पूजा और अक्षर अभ्यासम।
4: अक्टूबर 17th माता की चौकी।
3: अक्टूबर 18th दुर्गाष्टमी हवन और 20th रामलीला और रावण दहन।
4: विजिट hindutemple.org और कॉल 972-445-3111. It's the time to clock out.
5: It's the time to catch up. And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन। एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM, ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री। ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
6: इस दिवाली जब अपनों के संग रोशनी और प्यार का माहौल हो, तो रेड लेबल के स्वाद और कड़कपन से घुले हर एक मोमेंट। रेड लेबल की हर एक रोशनी वाली चुस्की दिलों के रिश्ते और सेलिब्रेशन को कर दे और भी रोशन। हर पैक के साथ बढ़ाएं अपनों का प्यार ताकि खुशियां छलकती रहें। इस दिवाली रेड लेबल की रोशनी वाली चुस्की खुशियों को करे ज्यादा और भी ज्यादा।
7: यार फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है।
5: कितनी लंबी लिस्ट है?
7: बस 2 पेजेस। इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ एक पूजा मंदिर भी।
5: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो, SFL वर्ल्डवाइड है ना। इंडिया में आपके डोरस्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं। पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है।
3: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL वर्ल्डवाइड, शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड वर्ल्डवाइड। विजिट SFLWorldwide.com।
8: ये लास्ट दिवाली पहना था, ये नेहा की शादी में, इस पे तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर DP है।
9: हे भगवान, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है।
10: जब वार्डरोब में हो फैशन का अकाल, तो सीधा इंडियन अटायर जाओ बालिके।
8: प्रभु डिस्काउंट भी मिलेगा?
10: ऑफ कोर्स, फेस्टिव कलेक्शन पर अप टू 25% ऑफ। तथास्तु।
11: डिस्कवर स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी एंड फेस्टिव स्टाइल्स फॉर मेन एंड किड्स, ऑल एट इंडियन अटायर ऑन 2995 प्रेस्टन रोड, फ्रिस्को। इंडियन अटायर, फ्रिस्को, योर डिवाइन डेस्टिनेशन फॉर फेस्टिव फैशन। Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
12: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
11: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
12: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 945-527-0897 और विजिट astrologerishwar.com.
13: बिंदास बोलो, बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो।
9: जब गाना बोले बिंदास तो शाम भी होगी बिंदास। जॉइन बंदा बिंदास मारविंदास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट, पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार, सिर्फ वनीशा रेडियो पर।
14: 104.9 FM Fun Asia Radio, Fun Asia Radio, non-stop entertainment.
15: 104.9 FM में एक बार फिर से आपका स्वागत है. आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फन एशिया पर, और नेशन का फन स्टेशन है ये. और आपकी होस्ट आयुषी आपका ब्रेक पे जाने के पहले आपसे बातें कर रही थी और आने के बाद भी आपका इंतजार कर रही है. भाई बात कर रहे हैं हम, आपके कॉल्स ले रहे हैं और आपकी बातें सुन रहे हैं. फिलहाल अपने इस सेगमेंट में हम कुछ ऐसी बॉलीवुड जोड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं जो हमें पर्दे पर भी दिखे और रियल लाइफ में भी उनकी जोड़ियां बनी. वैसे बहुत सारी जोड़ियां हैं जिनको हमने पर्दे पर देखा और सोचा कि कुछ हो जाएगा पर कुछ हुआ नहीं. कुछ बहुत कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं हो पाया. लेकिन ऐसी जोड़ियां हैं ना, एक ऐसी जोड़ी है जो कि पर्दे पर हमें दिखी और बिल्कुल भी ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस जोड़ी के बीच में कुछ ऐसा होगा. दोनों ने पहली फिल्म साथ में की थी और वो था साल 2013, और जब इनका रिलेशनशिप जो है वो सामने आया वो आया 2012 में. और इतने सालों तक ना इसकी चर्चा हुई, ना कोई मीडिया और पैपराजी ने हल्ला किया, कुछ भी नहीं पता चला. बड़ा ही शांत और इंटीमेट अफेयर रखा था इन्हें अपना. सो वी टॉकिंग अबाउट रितेश देशमुख एंड जिनलिया डिसूजा. आज जब इन दोनों को साथ में पर्दे पर देखते हैं तो लगता है कि यार जोड़ी ऐसी होनी चाहिए. जिस तरह से रितेश जिनलिया को अडोर करते हैं, जैसे जिनलिया उनको प्यार करती हैं, और रितेश जो रिस्पेक्ट करते हैं ना, वो देख के लगता है कि एक शादी में ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है. तो इनकी कहानी के बारे में बात करते हैं. इनकी पहली मुलाकात हुई थी इनकी फिल्म के सेट पर, और उस समय दोनों की पहली फिल्म थी. और जिनलिया के मन में ना एक ऐसा था कि ये चीफ मिनिस्टर विलासराव देशमुख के बेटे हैं, भाई पॉलिटिशियन के बेटे, जरूर इनमें थोड़ा एटीट्यूड होगा, इसलिए मैं इनसे ज्यादा दोस्ती नहीं करूंगी, दूरी बना के रखूंगी. लेकिन जैसे जैसे शूटिंग आगे बढ़ी, जिनलिया को समझ में आया कि रितेश बिल्कुल अलग हैं. उनका रिस्पेक्टफुल नेचर, उनका बिहेवियर और हर किसी को साथ लेकर चलने वाला जो उनका एटीट्यूड था, वो जिनलिया को बहुत पसंद आया. मतलब चीफ मिनिस्टर होने का बेटा होने के बाद इतना डाउन टू अर्थ बंदा है भाई. फिर इनकी दोस्ती शुरू हुई और दोस्ती धीरे धीरे रिश्ते में बदली. लेकिन रितेश ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनको कब रियलाइज हुआ कि जिनलिया उनको पसंद आने लगी हैं. वो एक थोड़ा ड्रामेटिक सा मोमेंट था जो उन्होंने डिस्क्राइब किया कि वो हैदराबाद से शूटिंग करके लौटे थे, और लौटने के बाद भी ही वॉज मिसिंग ऑल दोज थिंग्स, द फन एंड यू नो द मोमेंट्स दैट हैपेंड ऑन द सेट. एंड उनको जिनलिया की याद आ रही थी. तब उनको रियलाइज हुआ कि भैया कुछ तो गड़बड़ है, मतलब ये दोस्ती से कुछ ज्यादा ही है. और फिर इनकी दोस्ती शुरू हुई और धीरे धीरे प्यार में बदल गई. 2003 में शुरू हुआ ये सफर, जैसा कि मैंने आपको बताया. वो 2012 में इन दोनों ने शादी की थी, और बीच में दोनों ने अपने अपने करियर्स बनाए, अलग अलग फिल्में की, लेकिन एक दूसरे के साथ अपनी दोस्ती, अपना टच कभी खोया नहीं और ज़्यादा हंगामा नहीं किया. सो दे वो मोर ऑफ फ्रेंड्स, एंड धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदली. और जिनलिया का करियर भी शायद इसके बाद कुछ वक्त के लिए शादी के बाद शांत हो गया, बिकॉज शी चोज टू गिव टाइम टू हर फैमिली, गिव टाइम टू हर किड्स. एंड वही उन्होंने किया. शायद इसीलिए रितेश इतनी रिस्पेक्ट करते हैं जिनलिया की, कि फैमिली को टाइम दिया और प्रोजेक्ट्स, अपने लाइफ के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने के बाद फिल्मों के प्रोजेक्ट में वो फिर से आई. एंड रिसेंटली शी हैज डन अ मराठी मूवी वेद, जिसको बहुत ज़्यादा यू नो प्रेज मिला है. सो यस, इनकी जो जोड़ी है मुझे तो बहुत प्यारी लगती है. इनकी जो केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छी लगती है, और इनको देख करके लगता है कि यार रोमांस और प्यार से ज़्यादा म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक टाइम के बाद रिलेशनशिप्स में इम्पॉर्टेंट हो जाता है. दिस इज़ वॉट आई कुड मेक आउट ऑफ इट. अगर आपको भी जिनलिया और रितेश की जोड़ी ऐसी प्यारी सी लगती है ना, तो बताइए मुझे, कॉल करिए स्टूडियो के नंबर पे, या फिर किसी और प्यारी सी जोड़ी जिसके बारे में आप जानते हो और कुछ स्टोरीज आपने सुनी हो, देखी हो, तो प्लीज़ शेयर करिए मेरे साथ. स्टूडियो का नंबर है 9722355555. आप कॉल करके गाने भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं. फिलहाल ये गाना इन दोनों की पहली फिल्म से, तुझे मेरी कसम.

Attention Texas business owners looking for smarter commercial energy solution. Trust Ala Commercial Energy, proudly serving Texas businesses since 2002 with competitive rates, reliable services and customized energy plans. Call 844-428-2808. I repeat, it's 844-428-2808 or visit taraenergy.com. तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और अब ऐसी जोड़ी के बारे में बात करते हैं जिनको देख करके बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा था कि ये दोनों कभी शादी करेंगे. यार इनकी जोड़ी भी बनेगी, मतलब कुछ बहुत ही अलग है इस जोड़ी के बारे में. एक ऑलरेडी शादी करके डिवोर्स थे और उनके बच्चे ऑलमोस्ट टीनेज के थे, और दूसरी जो कि मतलब यू नो अपने में ही क्वीन थी और हम उनका एक अलग ही स्टाइल था भाई, उनसे भी उम्मीद नहीं थी. उनकी भी एक लव स्टोरी बहुत चर्चा में रही थी. सो वी टॉकिंग अबाउट सैफ अली खान एंड करीना कपूर. सैफ पटौदी के नवाब, अपने चार्मिंग और सोफेस्टिकेटेड अंदाज के लिए मशहूर, और करीना कपूर खानदान की ग्लैमरस, आउटस्पोकन एंड फुल ऑफ एटीट्यूड दीवा. दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे, लेकिन और कुछ फिल्मों में भी साथ काम किया था, लाइक एलओसी, कारगिल और ओमकारा में. लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब वो फिल्म टशन में एक साथ दिखे. लद्दाख की खूबसूरत वादियां, जैसलमेर का सफर और लॉन्ग बाइक राइड्स और लंबी लंबी बातें, और फिर कब अट्रैक्शन प्यार में बदल गया शायद दोनों को खुद भी नहीं पता चला. ये तो मतलब बोलने का तरीका है, अंदाज है, लिखने वाले की काबिलियत है जो कि हम हैं. बट या मतलब इस तरह का जो है ना एक रोमांटिक सा हमने इसको पिक्चर्स क्यों दिया है, बट ये अनएक्सपेक्टेड जोड़ी थी बिल्कुल. करीना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि सैफ के साथ उनका कनेक्शन बहुत ही नेचुरली हुआ था, जबकि दोनों आई मीन सैफ वाज ऑलरेडी मैरिड टू अमृता सिंह एंड ही हैड टू किड्स हु वर टीनेजर्स, एंड देन करीना और शाहिद का बहुत ही यू नो सेंसेशनल जो लव स्टोरी थी वो चल रही थी, और उसके बीच में उनका ब्रेकअप हुआ था. इधर सैफ भी सिंगल ही थे, तो इन दोनों ने अपने जब मिले तो इनको लगा कि कुछ बहुत ही नेचुरल सा कनेक्शन है, और सैफ ने भी अपने रिश्ते को छुपाने के बजाय खुलकर एक्सेप्ट किया था. और फिर सैफ ने अपने हाथों पर एक बड़ा सा टैटू भी बनवा लिया था जो कि बहुत ही फेमस हुआ था, बहुत ही वायरल हुआ था. मतलब नवाब साहब ने प्यार का ऐसा परमानेंट डिक्लेरेशन कर दिया था कि पूरी दुनिया उनके रिलेशनशिप की खबर हो गई थी उसको. लेकिन हाँ, इन लोगों के लव स्टोरी का सबसे फिल्मी मोमेंट जो इन लोगों ने शेयर किया है इंटरव्यूज़ में, वो आया था पेरिस में, जब सैफ और करीना ने सैफ ने करीना को शादी के लिए प्रपोज़ किया था. और रिपोर्ट्स के मुताबिक, मतलब कहानियों के मुताबिक, इंटरव्यूज़ के मुताबिक एक बार नहीं दो बार प्रपोज़ किया था. आखिर बार करीना ने हाँ कह ही दी थी, दैट वॉज इन 2012, एंड फिर उन लोगों ने शादी कर ली. एक ऐसा रिश्ता जो शुरू हुआ था फिल्म के सेट पर, एक परिवार है, दो प्यारे बच्चे हैं और सालों की कंपेनियनशिप है, और इनका भी जो कनेक्शन है ना वो दिखता है जब ये स्क्रीन पर हमें दिखते हैं किसी ऐसे मोमेंट पे, जब कोई भी बॉलीवुड पार्टी है या किसी की शादी है या कुछ है, तो वी सी दैट कनेक्शन. करीना ने एक बार बहुत खूबसूरती से कहा था कि जब वी मेट में उनका करियर बदला, लेकिन टशन ने उनकी ज़िंदगी बदल दी थी. एंड देन दे वर सीन इन दिस मूवी कॉल कुर्बान. फिल्म इतनी नहीं चली, बट देयर जोड़ी वॉज रियली अप्रिशिएटेड. और सैफ और करीना की कहानी बहुत ही प्यारी है. मतलब लाइफ में सेकेंड चांस सबको मिलना चाहिए और ये सेकेंड चांस बहुत ही प्यारा है, एंड दे हैव अ ब्यूटिफुल फैमिली. सो दिस ब्यूटिफुल ट्रैक इज फ्रॉम द मूवी, कौन सी फिल्म थी ये, मेरा कुर्बान का गाना है ये आपके लिए जो लेकर के आ रहे हैं अभी.

0: तो हियर वॉज दिस ब्यूटिफुल ट्रैक। और अगली जोड़ी के बारे में बात करते हैं। जोड़ियां तो बहुत सारी हैं और अभी हमारे कॉलर ने भी बताया, लेकिन पहले बात कर लेते हैं एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी प्यारी सी जोड़ी के बारे में। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि अगर मेरी बातें सुनते सुनते भूख लग गया ना, अगर आप अच्छा खाना ढूंढ रहे हैं प्लेनों में, तो जाइए सिग्नेचर कुजीन, बिकॉज दे हैव ऑल द राइट फ्लेवर्स। एंजॉय द फेमस निहारी सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन, माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स। And if you're planning for a birthday, anniversary or any special celebration, they also offer banquet services. So visit Signature Cuisine at Spring Creek and Alma in East Plano or go to signaturecuisine.net. Signature Cuisine, leaving its signature on every taste. तो हाँ भाई, एक और जोड़ी के बारे में बात करते हैं। बहुत प्यारी सी जोड़ी है और ये एक ऐसी जोड़ी है ना जिनके बीच में शायद 10 या 11 साल का उम्र का फर्क है। एंड एक्ट्रेस जो हैं उनको क्रश था एक्टर पे, ठीक है। और वो मतलब एज एन इन्होंने बहुत बार इंटरव्यूज़ में ये एडमिट किया है कि आई हैड अ क्रश ऑन हिम, एंड किस तरह से वो मिले एक फिल्म के सेट पर। लेकिन आप सोच सकते हैं कि जोड़ी कौन सी है, तो मुझे बताइए। और इसी बात पे ना हम आपको गिव अवे दे देंगे फनीशा का फन पिज्ज़ा का, आई एम सॉरी ये बार बार गड़बड़ होती है मेरे से, फन पिज्ज़ा किचन का गिव अवे दे देंगे, जिनके पास है मेक्सिकन इंस्पायर्ड पिज्ज़ा, एकदम फुल ऑन फ्लेवर फिएस्टा, मज़ा आ जाएगा खा के। फिएस्टा वेजी है, फायरी लोको सी फूड पैक्स एंड और कैमरॉन है, और बहुत कुछ है। तो बस सवाल ये है कि अगर आप मेरी ना ऐसे आधी अधूरी बातों से गेस कर सकते हैं कि ये कौन सी जोड़ी है जिनके बीच में कुछ 11 साल का गैप है और ऑन स्क्रीन बहुत प्यारे लगते हैं दोनों साथ में, दोनों ने उनको क्रश था एक दूसरे के ऊपर, अगर आप मुझे ये बता पाए ना तो गिव अवे आपका, अदरवाइज फिर से दूसरा सवाल पूछेंगे। फिलहाल आपको एक गाना सुनाते हैं, गाना सुन के तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा, लेकिन जिसने पहला कॉल किया वो ले गया ये गिव अवे। हेलो, हाय फनीशा। Yes, you are right.
1: मुझको
0: क्या नाम नाम आपका?
1: इतना बताए कोई कैसे तुझसे
0: दिल ना लगा। फन पिज़्ज़ा किचन का $10 का गिफ्ट कार्ड है।

ओके तो ये थी वो प्यारी सी जोड़ी। मतलब आपने अब गाना सुन के तो समझ ही लिया होगा, बट गाना के पहले ही बता दिया किसी ने मुझे सही जवाब। एंड जोरदार तालियां हो जाएं निधि मेहरोत्रा के लिए भाई। तो सबसे पहले निधि, आपको गिव अवे मिल रहा है फन पिज्जा किचन की तरफ से। फ्रिस्को लोकेशन से आपको $10 का गिफ्ट कार्ड मिलता है। प्लीज जाइए और इसको पिक करिए और एंजॉय करिए इनका मजेदार वाला पिज्जा। और हम बात कर रहे थे आलिया और रणबीर की, और बस 11 साल का डिफरेंस बताया, उतने में निधि ने जवाब दे दिया, काम खत्म भैया। बट यस, इनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी बहुत प्यारी है, ऑफ स्क्रीन जोड़ी बहुत प्यारी है, मुझे दोनों बहुत सुंदर लगते हैं। चाहे इनके बारे में कुछ भी कोई कहे, मैं नहीं सुन सकती हूँ। दे लुक वेरी क्यूट टुगेदर। आलिया एंड रणबीर कभी सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं थे, बल्कि उनके चाइल्डहुड क्रश भी थे। तो आलिया ने खुद कई बार बताया कि रणबीर को देखकर उनके दिल में ना उनके लिए एक स्पेशल फीलिंग आ गई थी। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों की पहली मुलाकात तब हुई थी जब आलिया 9 साल की थी और रणबीर 20 साल के थे। मतलब सुन के बहुत ही वियर्ड लग रहा है अभी, बट मतलब ये जोड़ी बहुत प्यारी है। लेकिन उनकी असली लव स्टोरी शुरू हुई थी फिल्म ब्रह्मास्त्र के सेट पे, जब दोनों ने ज्यादा टाइम स्पेंड किया साथ में और वो ट्रैवल कर रहे थे, उस दौरान बहुत सी बातें की, तो उनके बीच एक अलग सी केमिस्ट्री हो गई थी। एंड धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने अपने रिश्ते को पब्लिक किए बिना आगे बढ़ाया। रणबीर ने केन्या के मसाई मारा ट्रिप के दौरान आलिया को प्रपोज किया था, ये तो सबको पता है, आलिया खुद ही बताते रहती हैं। सो यहाँ 14 अप्रैल 2022 को मुंबई में अपने घर वास्तु में दोनों फैमिली ने एक बड़े क्लोज सा अफेयर किया था और शादी कर ली थी। और शादी के कुछ ही महीने बाद नवंबर 2022 में उनकी ज़िंदगी में उनकी प्यारी सी बेटी राहा आई। और आज रणबीर और आलिया सिर्फ एक हिट ऑन स्क्रीन नहीं बल्कि एक फैमिली भी हैं। और रणबीर ने एक इंटरव्यू में आलिया को अपना बेस्ट फ्रेंड भी बताया था। यार अच्छा खूबसूरत सा सफ़र है दोनों का और बहुत ही प्यारी सी जोड़ी भी है ये। तो चलिए एक और गाना सुना देते हैं आपको जल्दी से, इनके ही फिल्म का, कोई इनकी ही ऊपर फिल्माया हुआ।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
3: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
4: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
5: कौन सा?
4: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
5: अरे सारे तो सेम है।
4: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
5: ओ हाँ, ये तो अलग है।
6: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
7: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
8: लिया।
7: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
8: नहीं आया।
7: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे? इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। Whether it's home, auto, health or business, every policy is customized around you. Hotels, motels, gas stations and small businesses, they help protect what you worked hard for. No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jamani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
9: Visit www.sanadainc.com today.
10: Discover Tassels by Renu in Frisco. Designer ethnic wear at great prices.
11: From elegant saris, lehengas to Indo-Western fusion sets and men's ethnic wear. Find festive and wedding styles.
10: For exclusive deals and collections, join Renu's weekly Facebook Live or follow them on Insta.
11: Visit Tassels by Renu.com or call 563-508-5673. That's 563-508-5673. Tassels by Renu. Dress beautifully, celebrate stylishly.
12: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
13: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
14: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
15: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
14: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
16: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
17: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइजरवे, स्वीट 205, फ्रिस्को।
18: डैड, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ है?
19: लैपटॉप में।
18: इन्वेस्टमेंट?
19: गूगल ड्राइव।
18: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
19: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है।
18: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है।
20: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
21: Hi, this is Deepti Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
20: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
22: This Diwali, Tanishq celebrates what brings us together. Traditions shared.
8: New friends welcomed and memories that become theirs too. Because Diwali shines brighter when shared. This India Wali Diwali, share the light. Enjoy up to 25% off and 0% deduction on exchange. Visit Tanishq at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
9: हर मोहब्बत की आवाज, the one and only living legend, Rahat Fateh Ali Khan.
22: Rahat Fateh Ali Khan.
23: Experience Once Upon a Time World Tour 2026. Rahat Fateh Ali Khan और उनके बेटे Shahzaman Ali Khan एक ही स्टेज पर.
9: Brought to you by Rehan Siddiqui, Dr. Yasmin Qureshi and True Payment Solutions. Friday, October 16, 8:30 PM, Comerica Center, Frisco.
23: Grand sponsor Karahi Point Plano के exclusive concessions के साथ.
9: Tickets on Ticketmaster and Soleha.com.
24: जग घूमे थारे जैसा ना कोई.
25: वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फन एशिया 104.9 FM पे. और ऐसी कुछ जोड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं जिनको ऑन स्क्रीन भी देखा है और ऑफ स्क्रीन में भी वो रियल लाइफ जोड़ियां बन के आए हैं, मतलब रियल टू रियल. और ऐसी ही कुछ जोड़ियों की कहानी लेकर के आए हैं. कुछ जोड़ियां मैंने सोच के रखी थी, कुछ आपने उस लिस्ट में ऐड करी. और ऐसी ही एक जोड़ी जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, उसके बारे में हमारे कॉलर मिस्टर किसने, रजत जी, नो आई थिंक आई एम मिसिंग आउट द नेम, आई एम सॉरी अबाउट दैट, बट हाँ उन्होंने बताया था हमें. और ये जोड़ी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, मतलब अब तो इनके बारे में जब भी ये इंटरव्यूज़ में दिखते हैं दोनों बहुत ही हंसते खेलते नज़र आते हैं. दोनों ही बड़े चुलबुले से हैं अपने अपने अंदाज में. तो भाई इनकी मतलब बहुत सारी प्यार की कहानियां हमने सुने, पर ये ऐसी लव स्टोरी है जहां पर ना लड़का जो है, मतलब जो हीरो है, वो लेकर के आया था प्यार का प्रपोजल और लड़की ने शुरू कर दी उसके पूरे खानदान की इन्वेस्टिगेशन. क्या आप लोग पहचानते हैं इस जोड़ी को? इनको भाई इनके पति देव ने ना गिफ्ट में पेपर वेट दिया था. ये सारी स्टोरीज ये खुद आते हैं और स्क्रीन पे आके अपने बारे में शेयर करते हैं और खुद का ही मजाक उड़ाते हैं. और जैसा कि मैंने कहा कि रितेश और जनीलिया के लव स्टोरी में जो रिस्पेक्ट वाला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही ना इनकी तरह भी अब लाइफ में थोड़ी सी मस्ती होते रहनी चाहिए. बिना हंसे खेले ज़िंदगी बड़ी खाली और बड़ी बोरिंग सी हो जाती है. हम बात कर रहे हैं अक्षय कुमार और फनी बोन्स ट्विंकल खन्ना की. दोनों की पहली मुलाकात हुई फिल्म फेयर मैगजीन के एक फ़ोटोशूट के दौरान, लेकिन असली केमिस्ट्री शुरू हुई इनकी फिल्म इंटरनेशनल खिलाड़ी के बाद. ट्विंकल उस वक्त एक लंबे रिलेशनशिप से बाहर आई थी और उन्होंने सोचा था कि ज़िंदगी में पहली बार उनको एक छोटा सा फ्लिंग हुआ है तो टाइम पास कर लेते हैं. कुछ 15 दिन तक ये चलेगा और उसकी आउटडोर शूटिंग थी तो मस्ती करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और फिर इनको टाटा बाय बाय कर देंगे. लेकिन ट्विंकल को ये नहीं पता था कि ये जो 6 फुट का वो चॉकलेट आइसक्रीम के बारे में बात करें जिसको वो 15 दिन तक इन्जॉय करने वाली थी, वो इनका लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बनने वाला था. अब अक्षय जी को प्यार हो गया था, शादी का प्रपोजल भी आ गया था, लेकिन ट्विंकल को जल्दी में फैसला नहीं लेना था. उनको भैया शादी के पहले ड्यू डिलिजेंस करनी थी. तो अक्षय की पहले उन्होंने कुंडली मंगवाई, फिर उनके पापा मम्मी और चाचा चाची की भी कुंडली मंगवा ली. कुंडली नहीं, मेडिकल हिस्ट्री भी मंगा ली. एंड दिस स्टोरी इज ऑल्सो बीन शेयर्ड बाय ट्विंकल हरसेल्फ ऑन मेनी ऑफ द शोज. एंड किसको क्या बीमारी है, क्या प्रॉब्लम है, बाल कब गिरते हैं लोग, आई डोंट नो व्हाट शी डिड, बट या व्हेन दे टॉक अबाउट इट एंड व्हेन दे बोथ लाफ इट आउट ना, ये देख के बहुत अच्छा लगता है. तो भाई ये जो प्यारी सी जोड़ी है, जो मज़ेदार सी जोड़ी है, इनकी भी शादी 2001 में हो गई थी. एक प्राइवेट सेरेमनी, शांति से अपने परिवारों के बीच में, दो परिवारों के बीच में रिश्ता बना. और इनकी बहुत ही प्यारी सी फैमिली है. इनके बेटे हैं आरव और बेटी है नितारा. और यस, हमेशा सामने दिखते हैं तो हंसते खेलते ही दिखते हैं. और अक्षय के बारे में भी जब उनके कोस्टार्स बोलते हैं तो यही बोलते हैं कि बहुत ही फनी हैं, बहुत ही बदमाश हैं. एंड ट्विंकल को तो हम सब देख ही रहे हैं दैट शी हैज़ आल्सो बीन वेरी लाइक शी एडमिटेड दैट एक्टिंग वाज नॉट फॉर हर, फिल्म वॉज नॉट फॉर हर. सो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो फिल्म नहीं करेंगी. और अभी फिलहाल जो वो कर रही हैं ना, बातें बना रही हैं, वो बहुत अच्छा कर रही हैं. चलिए इसी बात पर अगले गाने की तरफ लेकर के चलते हैं. अक्षय और ट्विंकल की फिल्म से ये गाना, इंटरनेशनल खिलाड़ी की फिल्म साथ की है इन दोनों ने, उसका गाना आपके लिए.

Okay, so your health deserves care that you can trust. So visit Allen Internal Medicine and trust Dr. Vanita and her team for annual physicals, preventive screenings, weight management, women's health and chronic condition care. तो भाई इनके पास सेम डे अपॉइंटमेंट्स भी अवेलेबल हैं और नए पेशेंट्स के लिए भी अपॉइंटमेंट अवेलेबल है. यू कैन कॉल देम ऑन 469-649-9995 और विजिट aimallen.com टुडे. तो चलिए अब शो को आगे बढ़ाते हैं और अगली जोड़ी के बारे में बात करते हैं. इनको कैसे मिस कर सकते हैं हम भाई. बॉलीवुड में कई बार ऐसा होता है कि हीरो हीरोइन पर्दे पर प्यार करते करते रियल लाइफ में एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा ही हुआ था. दीपिका और रणवीर सिंह की कहानी के बारे में बात करते हैं. तो इनको पर्दे पर तो रोमांस हुआ ही, लेकिन उसके पहले ही 2012 में जब रणवीर ने दीपिका को एक अवार्ड इवेंट्स में देखा था, रणवीर को उसी समय उनको देख करके ना कुछ कुछ हो गया था. मतलब बिल्कुल फ्लैट ही हो गए थे वो दीपिका पादुकोण के ऊपर पे. और फिर किस्मत देखी, अगले ही साल संजय लीला भंसाली ने दोनों को कास्ट कर लिया रामलीला में. अब फिल्म में दोनों का रोमांस, नोक झोंक, केमिस्ट्री और इंटेंस प्यार देखकर ऑडियंस तो दीवानी हो गई थी, लेकिन सेट पर कुछ और ही चल रहा था. रणवीर तो दीपिका पर दिल हार ही बैठे थे. और उनके को स्टार जो हैं गुलशन देवैया ने बाद में बताया कि पहली शूटिंग शेड्यूल में ही कुछ खास नजर आ गया था. और धीरे धीरे फिर दीपिका को भी उनकी तरफ झुकाव हुआ और भाई दोनों को प्यार हो गया. रणवीर सिंह ने तो अपने प्यार का इजहार करने में कभी पीछे नहीं रहे हैं. दीपिका ने बाद में बताया कि उनके 6 साल के रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स तो आए, लेकिन दोनों कभी अलग नहीं हुए. वो रणवीर के साथ इमोशनली काफ़ी ज़्यादा जुड़ गई थी. और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों अपनी इंगेजमेंट भी 4 साल तक सीक्रेट रखी थी, सिर्फ घर वालों को पता था. बॉलीवुड में जहां रिलेशनशिप स्टेटस बदलने से पहले इंस्टाग्राम पे अपडेट आ जाता है, वहां दीप वीर द हैशटैग जो उनकी शादी में यूज हुआ था, उन्होंने अपनी इंगेजमेंट को काफी टाइम तक सीक्रेट रखा था. ऊपर से रणवीर सिंह जैसा आदमी जो कि ऐसे लगता है देख के कितना ही ज्यादा लाउड है, उनके मुंह में कुछ बात ही नहीं रहती है, तो वो बोल देते हैं सब कुछ. बट यस, नवम्बर 2018 में दोनों की शादी हो गई. उन्होंने शादी की इटली के खूबसूरत लेक कोमो में और बड़ा ही प्यारा सा शादी का भी इन्होंने वीडियो शेयर किया था कुछ साल बाद. तो भाई अब इनकी इनकी इनकी लाइफ में एक बेटी है दुआ, बड़ा प्यारा सा नाम है, और दूसरी भी बेटी ही है शायद इनकी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. या सो देयर सो मेनी बेबीज हैपनिंग इन बॉलीवुड दैट यू नो आई एम कंफ्यूज्ड. तो भाई इन दोनों की जोड़ी ऑन स्क्रीन भी अच्छी लगती है और

business owners, it's not just about how many people see or click your ad, it's about how many become customers. यही तो सारे business owners चाहते हैं ना. तो आप को आज बताते हैं स्मार्ट रीच एआई के बारे में. फनेशिया नेटवर्क का प्रोडक्ट है ये दैट हेल्प्स यू रीच पोटेंशियल लोकल कस्टमर्स इवन दोज विजिटिंग योर कॉम्पिटिटर्स अक्रॉस रेडियो हो, डिजिटल या फिर स्ट्रीमिंग टीवी हो या फिर ऑनलाइन ऑडियो हो. एंड देन व्हाट यू कैन मेजर व्हाट ट्रूली मैटर्स कॉल्स बुकिंग्स ऑफर रिडेम्पशंस एंड एक्चुअल विजिट्स टू योर बिजनेस. विजिट स्मार्ट रीच एआई डॉट यूएस एंड टर्न लोकल अटेंशन into customers. तो जल्दी से जाइए smartreachai.us पे लॉग इन करिए और डिटेल्स गैदर करिए. चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं. बस कुछ मिनट बचे हैं मेरे पास और जाते जाते एक और जोड़ी के बारे में बात कर लेते हैं यार, क्योंकि आज हम जोड़ियों की बात कर रहे हैं जो कि ऑन स्क्रीन देख करके हमको लगता है ना कि इनकी केमिस्ट्री, इनका साथ में जो जैसे लगते हैं ये लोग, उसे देख के लगता है काश ये जोड़ी जो है पर्दे पे इतनी सुंदर लग रही है, साथ में कितनी सुंदर लगेगी. तो इनका कुछ हो जाए यार. और ऐसी ही एक जोड़ी और है जिसमें है सिड और कियारा की जोड़ी, सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड कियारा आडवाणी. सबसे इंटरेस्टिंग बात, इनकी लव स्टोरी की शुरुआत शेरशाह के सेट पर नहीं बल्कि उसके पहले हो चुकी थी. दोनों पहली बार 2018 में मिले थे कियारा की फिल्म लव स्टोरीज की रैपअप पार्टी पे, और वहां से इनकी बातचीत शुरू हुई थी. बाद में फिल्म शेरशाह ने इनकी नजदीकियों को और गहरा किया. अब जरा सोचिए, एक तरफ सिद्धार्थ मल्होत्रा जो फिल्म में कैप्टन विक्रम बत्रा का किरदार निभा रहे हैं, और दूसरी तरफ कियारा आडवाणी जो उनकी मोहब्बत डिंपल चीमा बनी है. पर्दे पर उनकी लव स्टोरी इतनी इमोशनल थी कि लोगों की आंखें नम हो गई, लेकिन रियल लाइफ में भी दोनों के बीच में प्यार की कहानी लिखी जा रही थी. कियारा ने बाद में बताया कि सिद्धार्थ के साथ रहकर उनके घर जैसा सुकून महसूस होता है उनको. और सिद्धार्थ ने भी कहा कि शेरशाह ने उन्हें ऑडियंस का भी प्यार नहीं बल्कि उनकी वाइफ भी दी है. मतलब फिल्म हिट हुई और हीरो की पर्सनल लाइफ भी ब्लॉकबस्टर हो गई.

2021 में ये फिल्म आई और इससे बढ़ी इनकी नजदीकियां, उसके बाद हुआ रोम में प्रपोजल और 2023 में हुई दोनों की शादी और 2025 में आई उनकी बेटी सराया एंड 2026 में अभी इसी महीने इन्होंने अपने दूसरे बच्चे के भी आने की खुशी जाहिर की है. सो यस, दिस वाज द लास्ट जोड़ी ऑफ द डे जिसके बारे में हमने बात की. बहुत ही प्यारा कपल सिद्धार्थ इनके आ रहा. तो बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड पे दिखने वाले चेहरे, मतलब पर्दे पे दिखने वाले बॉलीवुड के चेहरे हैं जिनको हम रियल लाइफ में भी साथ दे के खुश होते हैं. कई जोड़ियां दिल को बिल्कुल छू जाती हैं और मन करता है कि सच में यार ये शादी कर लें, और ऐसी कई सारी जोड़ियां हैं जिनके साथ ये हुआ है. सो आज का सेगमेंट यहीं पर ख़त्म करते हैं, आज का दिन यहीं पर ख़त्म करते हैं और आपसे आज के लिए विदा ले रही है आपके होस्ट आयुषी. आप सुन रहे हैं फनेशिया 104.9 FM पे. आज इसके बाद आएंगी हमारी सुनहरी किरण जो कि आफ्टरनून ड्राइव टाइम लेके आती हैं और आपको करेंगी एंटरटेन. तो आज के लिए दीजिए विदा, कल फिर मिलते हैं ठीक 12:30 बजे और आपको सुनाते हैं कुछ अच्छे प्यारे बॉलीवुड गाने और ढेर सारी प्यारी प्यारी बातें. आप सबको हैप्पी नवरात्रि, एंजॉय योर डे एंड आपका दिन शुभ हो.

0: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
1: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
2: एकता मंदिर DFW हिंदू टेंपल सोसाइटी प्रेजेंट्स नवरात्रि महोत्सव अक्टूबर 11th to 20th।
3: डेली पूजास, आरतीज, ललिता सहस्रनामम, महामंगल आरती, माताजी पूजा और हर शाम 8:30 बजे रास गरबा।
2: अक्टूबर 16th-17th सरस्वती पूजा और अक्षर अभ्यासम।
3: अक्टूबर 17th माता की चौकी।
2: अक्टूबर 18th दुर्गाष्टमी हवन और 20th रामलीला और रावण दहन।
3: विजिट hindutemple.org और कॉल 972-445-3111।
2: जब सेलिब्रेशन देसी हो तो अंदाज भी खास होना चाहिए। इस फेस्टिव सीजन अपने ट्रेडिशनल स्टाइल को दीजिए एक ग्रैंड अपग्रेड विद मान्यवर मोहे। फेस्टिव और वेडिंग वेयर फॉर मेन एंड वुमेन।
4: विजय देवरकोंडा की कॉन्फिडेंट स्टाइल हो या रश्मिका की एफर्टलेस ग्रेस, गेट दैट परफेक्ट लुक डिजाइंड फॉर एवरी सेलिब्रेशन।
2: लोकेटेड एट I-635 इन इरविंग। मान्यवर मोहे, सेलिब्रेशन आपका, अंदाज खास।
3: ओपनिंग सून ऑन रोनाल्ड रेगन बुलेवार्ड इन लियांडर, ऑस्टिन।
5: बेटा, 95% आए?
6: हाँ मम्मी।
5: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
7: मेरा?
5: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
7: वो
8: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com। कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी।
9: सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
10: हुजूर, आपको चुनना होगा, हम या ये बिरयानी।
11: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
10: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
11: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
12: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
13: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
12: Barista House, richness of biryani bliss.
14: दिल की बात किससे कहें?
15: पंडित गुरुदेव से। 35 साल से ज्यादा के एक्सपीरियंस के साथ पंडित गुरुदेव करते हैं कुंडली रीडिंग, बर्थ चार्ट एनालिसिस, पाम रीडिंग और फेस रीडिंग, ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एनर्जी रिमूवल में एक्सपर्टाइज। प्यार, शादी या रिश्तों की उलझन हो तो पर्सनल गाइडेंस लीजिए। कॉल 4695811777। दैट्स 4695811777। पंडित गुरुदेव, आइए अपनी बात कहिए।
10: ब्रेकफास्ट में क्या खाना है?
16: कीमा पराठा।
6: मम्मी, ऑमलेट पराठा।
16: बेटी, हलवा पूरी और तरकारी।
10: अब संडे को 3 अलग नाश्ता कौन बनाएगा?
17: सिग्नेचर क्विजीन बनाएगा। चूज एनी डिलिशियस ब्रेकफास्ट ऑप्शन, कीमा विद पराठा, हलवा पूरी विद तरकारी और ऑमलेट विद पराठा, सर्व्ड विद अ कप ऑफ हॉट कड़क चाय फॉर ओनली $8.99। अवेलेबल ड्यूरिंग वीकेंड ब्रेकफास्ट आवर्स एट सिग्नेचर क्विजीन इन प्लेनो। वीकेंड का मूड गर्मा गर्म देसी फूड। विजिट signaturecuisine.net।
18: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
19: कुछ भी नहीं, Oura Debt Relief will do it for us.
18: क्या मतलब?
19: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
18: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
19: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
18: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
20: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
21: Family को चाहिए North Indian, friends को South Indian. अब
7: जाए तो जाए कहाँ?
21: सिंपल बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन डबल द फ्लेवर.
22: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
21: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं.
22: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी.
23: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड. बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर.
24: दिस दिवाली तनिष्क सेलिब्रेट्स व्हाट ब्रिंग्स अस टुगेदर. Traditions shared, new friends welcomed, and memories that become theirs too. Because Diwali shines brighter when shared. This India Wali Diwali, share the light. Enjoy up to 25% off and 0% deduction on exchange. Visit Tanishq at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
25: दिवाली बाजार हो या फूड स्टॉल, अपने बिजनेस को दीजिए फेस्टिव स्पॉटलाइट. बुक योर बूथ एट द साउथ एशियन फूड फेस्टिवल बाय बिंदास सर्विसेज. नवंबर 1st, द साउंड कपेल. कॉल मार्विन 972-302-7012.

A very, very good afternoon to the listeners of 104.9 FM Financial Radio. सुन रहे हैं आप Afternoon Drive Time with Sunehri Kiran. मैं हूँ किरण आपके साथ. Thank you so much for connecting with me this afternoon. अच्छा जी, आज है Thursday, तो बस weekend आने वाला है. और Thursdays आप जानते हैं, the first Thursday of every month Afternoon Drive Time पे आपके लिए आता है Food Junction, जिसमें हम बात करते हैं मुख्तलिफ मुल्कों की, मुख्तलिफ शहरों की, वहाँ के local favorites क्या हैं, वहाँ के local desserts क्या है, वहां के देसी फेवरेट्स क्या है, एज अ टूरिस्ट जब हम वहां जाएं तो हमें क्या खाना चाहिए. और जो रेस्ट ऑफ द थर्सडेज ऑफ द मंथ होते हैं वो आप ही की फरमाइश पर लेकर आती हूं, वो 90s का बॉलीवुड, 90s के एरा के कुछ खूबसूरत गाने जिन्होंने मेरे लिए बॉलीवुड को डिफाइन किया. व्हेन आई वाज फॉलिंग इन लव विद द बॉलीवुड, 90s वाज द रीजन एक्चुअली आई फेल इन लव विद बॉलीवुड. सो आई एम श्योर बहुत सारे लोग आप में से कुछ ऐसी ही फीलिंग्स के साथ 90s का बॉलीवुड सुनते हैं. और जी, हमने पिछले हफ्ते बात की थी अलका याग्निक जी की, मैं आपके लिए लेकर आई थी कुछ खूबसूरत गाने 90s के. वैसे तो अलका जी 80s से गा रही हैं और आगे 2000s में अब तक मतलब काफी उनके गाने आते रहे हैं, लेकिन वी आर गोइंग टू कवर द 90s की जर्नी ऑफ अलका, जब वो बन गई थी द म्यूजिकल सेंसेशन ऑफ बॉलीवुड. 1993 के एंड तक हम लोग पहुंच गए थे, मैंने 89 से जो ये जर्नी शुरू की थी. तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैं गाने आगे बढ़ा रही थी कि 91 में उन्होंने क्या क्या गाया, फिर 92 में क्या आया, ताकि आपको उनकी जर्नी का अंदाजा हो कि चीजें कैसे उनकी जर्नी में शेप अप हुई और किस तरह से वो बेहतर से बेहतरीन होती गई.

कुछ खूबसूरत गाने अलका याग्निक जी के आपके लिए प्ले कर रही हूँ. और उदित नारायण के साथ तो इन्होंने खैर क्या ही जोड़ी बनाई, और बहुत सारे मतलब ऐसा लगता था जैसे 90s का जो भी मशहूर गाना है या तो वो कुमार सानू साहब ने गाया है या उदित नारायण ने गाया है या अलका याग्निक ने गाया है या फिर इनमें से किसी एक की जोड़ी ने एक साथ गाया है. कुछ ऐसी ही पॉपुलैरिटी थी इनकी, अलका याग्निक की जोड़ी की, उदित नारायण और कुमार शानू के साथ. तो अब जो मैं गाना आपके लिए प्ले कर रही हूँ ये है अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज में टेकन फ्रॉम द मूवी फिर तेरी कहानी याद आई. बट बिफोर आई प्ले दैट सॉन्ग आई मस्ट टेल यू अपने फाइनेंसिस का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है जी. और अगर आप सोच रहे हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, रियल एस्टेट का, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स का ख्याल आपके जहन में आ रहा है, रिटायरमेंट प्लानिंग आपने करनी है, कोई भी आपकी फाइनेंशियल नीड्स हैं, स्ट्रैटेजीज आपने बनानी है, तो देन माई टाइम इक्विटी लेड बाय सी Sudhir Pai is where you need to go because they are going to listen to all your questions and concerns and what you want and how you want things to be, and then they are going to guide you step by step and make the right customized personalized strategies for you. So that number is 469-702-1272 469-702-1272 ya phir mytimeequity.com is where you need to log on.

एक तरफ कुमार सानू की सोलफुल रोमांटिक आवाज़, हर जो म्यूज़िक कंपोज़र है वो उनके दरवाजे पे लाइन लगा के खड़ा होता था कि कुमार सानू साहब उनकी फिल्म का अगला गाना गा दें, बिकॉज ही वॉज़ डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट बैंकेबल सिंगर्स इन द 90s. और दूसरी तरफ अलका याग्निक, प्रॉबली वन ऑफ दोज सिंगर्स इन द 90s जो कि इतनी ज़्यादा पॉपुलर थी, और हर गाना जो उनकी आवाज़ से निकलता था वो ऐसा लगता था उसी हीरोइन के लिए गाया गया है. रोमांस हो, मेलेडीज हो, नटखटपन हो, नॉटीनेस हो, जो भी हो, अलका वाज द एब्सोल्यूट चॉइस फॉर दैट सॉन्ग. और खास तौर पे अलका याग्निक ने जो माधुरी दीक्षित के लिए गाने गाए वो तो मतलब एक से बढ़कर एक गाए, जैसे कि एक दो तीन, या फिर चोली के पीछे क्या है, या फिर ये गाना जो मैं आपके लिए खलनायक का लगाने वाली हूँ, अ ब्यूटिफुल नंबर, अ नॉटी, अ सिंपल, अ हैप्पी, मतलब एक एक एक लड़की के इमोशंस की बड़ी परफेक्ट रिफ्लेक्शन था ये सॉन्ग. दिस इज पालकी में होके सवार चली रे.

और इसी के साथ अगर आपका कुछ मजे का खाने का मूड है लेकिन घर पे पकाने का मूड नहीं है. कई बार होता है कि हमारा घर पे खाना पकाने का बिल्कुल मूड नहीं कर रहा होता, लेकिन दिल कर रहा होता है कि बाहर भी जाके खाइए, तो कुछ ऐसा जो घर जैसा स्वाद दे. तो मैं आपको ऐसी जगह बताती हूँ जी, तंदूरी फ्लेम. गार्लैंड में लोकेटेड है तंदूरी फ्लेम. यू विल फाइंड एब्सोल्युटली ब्रिलियंट डिशेस देयर. बटर चिकन, बिरयानी, पनीर टिक्का, दाल मखनी, और भी बहुत कुछ है उनके मेन्यू पे. और जो सबसे सबसे स्पेशल बात है वो है घर जैसा स्वाद. सो तंदूरी फ्लेम TX.com, TandooriFlameTX.com पे आप लॉग ऑन कीजिए और चेकआउट कीजिए उनकी डिटेल्स, उनका मेन्यू, मोर अबाउट देम. और एक और जबरदस्त बात आपको बताने वाली हूँ, फ्लेम आवर चल रहा है उनका मंडे थ्रू थर्सडे, नॉट फ्राइडे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, ये 4 दिन. अगर आप 5 बजे से 8 बजे तक शाम तंदूरी फ्लेम जाएंगे तो आप 2 एंट्रीज ऑर्डर करेंगे तो एक एपेटाइजर आपको मिलेगा बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री. सो दैट इज एन अमेजिंग डील दैट यू हैव गोइंग ऑन एज फ्लेम आवर, 5 PM टिल 8 PM, मंडे ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे. ऑर्डर 2 डिशेज, 2 एंट्रीज एंड गेट 1 एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री. ये अगले 2-3 गाने इत्तेफाक से कुछ ऐसे लाइंड अप हुए हैं. मैं अभी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हूँ. 93-94 में हम एंटर कर चुके हैं और ये 2-3 गाने कुछ ऐसे लाइन अप हुए कि कॉन्स्टेंटली जो बेहतरीन गाने अलका याग्निक ने इस टाइम में गाए वो कुमार सानू के साथ गाए. तो चलिए फिर यही 2-3 गानों की जर्नी आपके साथ शुरू कर रहे हैं. दिस इज अक्षय कुमार एंड शिल्पा शेट्टी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, कुमार सानू एंड अलका याग्निक.

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: This Diwali, Tanishq celebrates what brings us together. Traditions shared, new friends welcomed, and memories that become theirs too. Because Diwali shines brighter when shared. This India Wali Diwali, share the light. Enjoy up to 25% off and 0% deduction on exchange. Visit Tanishq at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
3: As a Texas state legislator, James Tallarico has stood with the South Asian community and fought to lower our costs. He believes that being a Texan isn't about where you come from or how you pray. It's about how you love your neighbors. He's running for U.S. Senate to stand up for all Texans and end the corruption raising our prices. Vote to bring light and hope to Texas. Vote James Tallarico.
4: I'm James Tallarico, and I approve this message.
3: Paid for by Tallarico for Texas. 15th को festive shopping?
5: उसके बाद flavor lounge?
3: 20th को गरबा का plan?
5: Then flavor lounge.
3: 1st को Diwali meetup.
5: Let's cater from flavor lounge.
3: और आज कोई plan ही नहीं है.
5: तो चलो flavor lounge.
6: खाने वालों को खाने का बहाना चाहिए.
7: Celebration हो, shopping की भूख या बस कुछ अच्छा खाने का mood. Dine in or catering. Think flavor. Think the Flavor Lounge, Frisco. इस festive season हर plan में थोड़ा flavor. खाने वालों को खाने का बहाना चाहिए.
5: Shopping? बिल्कुल. पर कहाँ? Festive looks के लिए वही दो से तीन options?
3: Options? I will give you the latest destination.
7: Introducing Pooja's Trends. Lehengas, co-ord sets, fusion wear, shararas or jewelry. Premium quality, affordable prices. Grand opening sale, flat 15% off. Visit 10202 Coit Road, Suite 400, Frisco. Call 214-457-4897. Pooja's Trends. Your trend, your style.
8: यार बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस.
9: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
8: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
9: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
8: ये क्या होता?
9: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
10: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
11: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल.
12: Floors clean.
13: Check.
12: Windows clean.
13: Check.
12: Kitchen clean.
13: Check.
12: Air ducts clean.
13: Wait, air ducts भी clean करना होता है?
14: बिल्कुल, जो दिखता है वो तो हम clean कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush. Plus dryer vent or chimney cleaning. घर हो, restaurants, hotels, offices या फिर any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
15: एलविंग वालो, ध्यान से सुनो, ये सिर्फ म्यूजिक नहीं हिंट है. Because the best chicken in Dallas is finally in Irving. Crispy, juicy, bold. The chicken Dallas has been craving after Plano and Richardson. Sal's Hot Chicken is now in Irving, bringing the crunch, the flavor and the heat. You heard chicken, we heard Sal's. Grand opening on 10th October.
16: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
3: एकता मंदिर DFW हिंदू टेंपल सोसाइटी प्रेजेंट्स नवरात्रि महोत्सव अक्टूबर 11th to 20th।
11: डेली पूजास, आरतीज, ललिता सहस्रनामम, महामंगल आरती, माताजी पूजा और हर शाम 8:30 बजे रास गरबा।
3: अक्टूबर 16th-17th सरस्वती पूजा और अक्षर अभ्यासम।
11: अक्टूबर 17th माता की चौकी।
3: अक्टूबर 18th दुर्गाष्टमी हवन और 20th रामलीला और रावण दहन।
11: विजिट hindutemple.org और कॉल 972-445-3111।
12: Hi, I'm Rajkumar Rao and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.
17: जुड़ जाओ अपनी धरती से देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फन एशिया 104.9 FM।

104.9 FM फाइनेंशियल रेडियो पे एक बार फिर आपको वेलकम करती हूँ. आफ्टरनून ड्राइव टाइम में आप सुन रहे हैं वो 90s का बॉलीवुड अलका याग्निक स्पेशल. मतलब अगर वो 90s का बॉलीवुड एक गाना होता तो मुझे लगता है उसकी आवाज होती अलका याग्निक. वो दौर जब कैसेट प्लेयर्स पर लव सॉन्ग्स बजा करते थे, पहला प्यार होता था और हार्ट ब्रेक से भी हम गुजरते थे और बॉलीवुड का एक गाना जरूर हमारे एहसासात की अक्कासी करता था. चाहे वो हैप्पीनेस हो, कॉलेज हो, रोमांस हो, हार्ट ब्रेक हो, जो कुछ भी हो, इवन पेरेंट्स के साथ कोई एसोसिएशन हो, आपकी बहन भाई के साथ, कोई ना कोई गाना आपका जरूर बॉलीवुड आपको एक देता था. और ऐसे ही कुछ खूबसूरत गाने अलका याग्निक जी की आवाज में आपके लिए प्ले कर रही हूँ. जैसे हम बात कर रहे थे, अलका याग्निक, उदित नारायण और कुमार सानू, ये दो ऐसी आवाजें हैं जिनके साथ अलका याग्निक ने सबसे ज्यादा बेहतरीन गाने दिए. वैसे ये वाला गाना उदित नारायण के साथ था उनका डुएट, और कुछ अलका याग्निक के कुमार सानू के साथ खूबसूरत गाने में प्ले कर रही हूं और कुछ उदित नारायण के साथ. अभी थोड़ी देर में आपसे एक सवाल भी करने वाली हूं क्योंकि एक गिव अवे लेकर आई हूं आपके लिए. और अब जो अगला गाना आपके लिए प्ले कर रही हूं, दिस इज अनदर एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल रोमांटिक नंबर, तब्बू और अजय देवगन पे पिक्चराइज्ड, कुमार सानू एंड अलका याग्निक फॉर द मूवी विजय.

और अब जो अगला गाना आपके लिए प्ले कर रही हूँ, दिस इज अनदर एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल रोमांटिक नंबर, तब्बू और अजय देवगन पे पिक्चराइज्ड, कुमार सानू एंड अलका याग्निक फॉर द मूवी विजयपथ. बट बिफोर आई प्ले दैट सॉन्ग, आई हैव टू टेल यू कि जी, अपनी सेहत का ख्याल रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है. और वो आप कैसे कर सकते हैं, अगर आपके पास वीक डे में टाइम नहीं है, वीकेंड पे टाइम है, तो भी देयर इज अ प्लेस दैट कैन अकोमोडेट यू. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अर्विंग और फ्रिस्को की लोकेशन सैटरडे और संडे को भी आपके लिए खुली है. और अगर पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर आपके नेटवर्क में नहीं है या फिर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, दे आर इंट्रोड्यूसिंग पैशन हेल्थ डायरेक्ट फॉर जस्ट $85 अ मंथ. आप ये मेंबरशिप ले सकते हैं, आपको मिलेगा प्राइमरी केयर, प्रिवेंटिव केयर, मेडिकेशन मैनेजमेंट, टेली हेल्थ और भी बहुत कुछ. टू बुक योर अपॉइंटमेंट यू कैन कॉल देम, टेक्स्ट देम एट दिस नंबर 214-666-6259, 214-666-6259, या फिर passionhealthphysicians.com is where you need to log on. This Passion Health Direct is not a health insurance plan, please yaad rakhiyega, some eligibility restrictions do apply.

म्यूजिक सुनने का तरीका बदल गया, अंदाज बदल गए, कैसेट से हम सीडी, सीडी से हम एयरपॉड्स, एयरपॉड्स से हम पता नहीं कौन से जमाने में म्यूजिक, एप्पल म्यूजिक और फला म्यूजिक के दौर में पहुंच चुके हैं, स्पॉटिफाई के दौर में पहुंच चुके हैं। लेकिन आज भी चंद आवाजें हमें सीधा 90s के दौर में ले जाती हैं, जिनमें से ऑफकोर्स एक है अलका याग्निक। तो कुछ आवाजें वाकई सिर्फ गाना नहीं गाती बल्कि वो यादें बन जाती हैं मेरी और आपकी, मेमोरीज की। हम एंटर हो रहे हैं 1995 के एरा में, जब अलका याग्निक वॉज ऑलरेडी एन एब्सल्यूट सुपरस्टार, सुपर सिंगर, और बहुत सारे ऐसे नए नए स्टार्स थे जिनको जिनकी पहली फिल्मों में अलका याग्निक ने गाना गाया था, और ये भी दोनों कुछ ऐसे ही सितारे थे।

कुमार सानू के साथ अलका याग्निक की म्यूजिक केमिस्ट्री ने 90s के रोमांस को और भी खूबसूरत बना दिया। दोनों की आवाज की स्वीटनेस, उनकी क्लैरिटी, और ऐसा लगता था जैसे वाकई दोनों इतनी रोमांटिकली गाना गाते थे। उनकी आवाजों में इतना रोमांस होता लगता था कि वाकई एक दूसरे से यही कहना चाह रहे हैं। और जब वो हीरो हीरोइन पे पिक्चराइज होता था तो चार चांद लग जाते थे। और सबसे खास बात ये कि वक्त बदल गया।

जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि 90s का दौर मेरे लिए इसलिए स्पेशल है बिकॉज वन आई वॉज फॉलिंग इन लव विद बॉलीवुड, आई वॉज फॉलिंग इन लव विद अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज आई वॉज ग्रोइंग अप, स्कूल का दौर और फिर वहीं 90s के ही में कॉलेज का दौर और वो सारा जो आपने ग्रोइंग अप का दौर गुजारा और इमोशंस, नए नए इमोशंस और एहसास हर इंसान महसूस करता है ऑफकोर्स व्हेन दे आर ग्रोइंग अप. और उसमें जब आपको, जैसे हम बात कर रहे थे कि हर एहसास के लिए बॉलीवुड के पास एक गाना था और एज ग्रोइंग अप टीनेजर्स ऑफकोर्स वो एहसास हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो गाने हमारे साथ रह जाते हैं. और कुछ ऐसे ही नए स्टार्स इंट्रोड्यूस हो रहे थे 90s में, तो एक जर्नी जो हमारी उन स्टार्स के साथ बनी वो बड़ी ही स्पेशल है, चाहे वो आमिर खान हो, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो या फिर इवन दिव्या भारती. मैं दिव्या भारती को बहुत मिस करती हूँ. आई थॉट द वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू मूवीज़ जो मेरी फेवरेट्स होती थी वो दिव्या भारती उनमें मौजूद होती थी. उसके अलावा शिल्पा शेट्टी हुई. अब ये देखिए जो गाना मैंने आपके लिए प्ले किया था जिनमें हमें नज़र आए बॉबी देओल और साथ ट्विंकल खन्ना, ये इनकी पहली मूवी थी और कितने लकी थे ये लोग कि अपनी पहली मूवी में इन्हें मौका मिला अपने ऊपर ऐसे गाने पिक्चराइज करने का जो कि लिविंग लेजेंड्स गा रहे थे, कुमार सानू, अलका याग्निक. और वही आज मेरा मकसद है कि कुछ ऐसे खूबसूरत गाने आपको अलका याग्निक की आवाज में सुनाए जाए. 90s का बॉलीवुड में आपके लिए आज लेके आई हूं अलका याग्निक स्पेशल. दिस वन इज येट अनदर ब्यूटिफुल नंबर, अलका याग्निक और कुमार सानू. अब तक मैंने आपको बड़े रोमांटिक रोमांटिक नंबर सुनाए उनके, अब जरा थोड़ा सा चंचल नंबर हो जाए.

0: बड़ा सही जवाब दिया है। कुछ लोगों को जो आपकी सक्सेस से जलते हैं कि भाई मैं क्या करूं, आपको मिर्ची लग रही है तो लगती रहे, आपका मसला है, अपने मसले का हल खुद ढूंढिए। लेकिन मैं आपकी ज्वेलरी का हल ढूंढ के आपको बता चुकी हूँ, बता रही हूँ। अगर आप फेस्टिव सीजन चल रहा है जी, इफ़ यू लुकिंग टू बाय समथिंग स्पेशल फॉर योर सेल्फ और समवन यू केयर फॉर, या फिर कोई इवेंट आ रहा है शादी ब्याह का और समथिंग लाइक दैट, तो फिर आपको कहाँ जाना है, PMJ ज्वेल्स जाना है जो कि फ्रिस्को में लोकेटेड है। दे आर नाउ हेयर इन फ्रिस्को ऑन Main Street. They have brought with them 60 years of jewelry excellence and timeless Indian craftsmanship. जी हाँ, किसी भी किस्म का आपको जेवर खरीदना है, gold, diamonds, bridal collections, any celebration, engagement, party, pampering yourself, anything and everything, PMJ Jewels on Main Street in Frisco. Do visit them, check them out. You are going to absolutely love their collection. With that, I am going to see you after a short break. Stay tuned.
1: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
2: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग।
3: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
4: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
5: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
6: Agar main kahun tumhara cholesterol 300 hai aur blood pressure 160, to kya kahoge?
2: Kya?
7: Wake up!
2: ड्रीम में रियलिटी चेक अक्सर डर बीमारी का नहीं, उसके पकड़े जाने का होता है। लेकिन व्हाट इफ में मत अटके, एनुअल चेकअप करवाइए।
4: विजिट एलन इंटरनल मेडिसिन एंड ट्रस्ट डॉक्टर वनीता एंड हर टीम फॉर एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग्स एंड वेट मैनेजमेंट। न्यू पेशेंट्स विद सेम डे अपॉइंटमेंट्स वेलकम। कॉल 4696499995 और विजिट aimallen.com.
8: 5 से 8 स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, कल हिंदी हिंदी बोल।
9: यू नो माय वॉइस ऑन द रेडियो, नाउ लेट मी बी अ वॉइस यू कैन ट्रस्ट इन रियल एस्टेट। मैं हूँ नवनीता खेमका, रियल्टर विद केलर विलियम्स रियल्टी। बाइंग, मूविंग और सेलिंग अ होम, आई ब्रिंग मार्केट नॉलेज, क्रिएटिव मार्केटिंग एंड पर्सनल कमिटमेंट टू योर जर्नी। बिकॉज टू मी रियल एस्टेट इजंट जस्ट अबाउट प्रॉपर्टीज, इट्स अबाउट यू मेरे दोस्तों, योर पॉसिबिलिटीज एंड योर न्यू बिगिनिंग्स। Every home has a story. Let's create yours together.
10: Call Namrita Khemka at 347-449-4242.
8: Phone uthaye, number dabaye.
9: 347-449-4242.
2: हो सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो। जॉइन पासिया एंड मार्केट योर बिजनेस फॉर फ्री। शोकेस योर डील्स एंड गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स नियर बाय। पासिया, बी वेयर योर कस्टमर्स आर लुकिंग।
11: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
12: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
11: नहीं।
12: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
11: नहीं।
12: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
11: वो भी नहीं।
12: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
13: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com। कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी।
14: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
15: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
16: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
17: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
16: That magic removal ho. Love and relationship issues ho. Get trusted solutions with 100% privacy.
17: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn. Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar. नंबर. कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
7: दिस दिवाली तनिष्क सेलिब्रेट्स व्हाट ब्रिंग्स अस टुगेदर. ट्रेडिशंस शेयर्ड, न्यू फ्रेंड्स वेलकम्ड एंड मेमोरीज दैट बिकम देयर्स टू. Because Diwali shines brighter when shared. This India Wali Diwali, share the light. Enjoy up to 25% off and 0% deduction on exchange. Visit Tanishq at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
10: Your Dubai investment opportunity is here. Success Real Estate and Danu Properties present the Grand Dubai Property Show, October 17th and 18th, 10 a.m. to 9 p.m. at Lux Hotel Arlington. Explore luxury properties with payment plans starting at $1,300 a month. Meet the developer directly, book at the show and qualify for round-trip flights to Dubai and a luxury hotel stay for two. Call Habib Mita at 954-790-2620. That's 954-790-2620.
18: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनीजिया रेडियो.

104.9 FM फन एशिया रेडियो पे एक बार फिर आपको वेलकम करती हूँ. आप सुन रहे हैं आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण और 90s का बॉलीवुड हर थर्सडे को लेकर आती हूँ आपके लिए, एक्सेप्ट द फर्स्ट थर्सडे जिसमें हम बात करते हैं फूड जंक्शन की, यानी कि नए मुल्क, नए शहर, नए खाने, उनकी लोकल स्पेशलिटीज. अच्छा जी, 90s के बॉलीवुड में हमने एक्सप्लोर किया है पिछले हफ्ते और इस हफ्ते अलका याग्निक के गाए हुए कुछ खूबसूरत गाने, और यही सिलसिला आपके साथ जारी है. उदित नारायण के साथ उनका ये गाना आप सुन रहे थे, और अब मैं लेकर आई हूँ आपके लिए गिव अवे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताइए कि अलका याग्निक के जो आपके पसंदीदा गाने हैं वो किस मेल सिंगर के साथ आपको पसंद है, या फिर आपको मेरी तरह उनके अकेले गाने भी बहुत पसंद हैं, जैसे कि चोली के पीछे क्या है मुझे बहुत अच्छा लगता है, या पालकी में होके सवार बहुत अच्छा लगता है, तो या एक दो तीन बहुत अच्छा लगता है, तो किस किस्म का आपके फेवरेट्स हैं अलका याग्निक के, आपने किस डुएट सिंगर के साथ उन्हें ज़्यादा पसंद किया, या फिर आपको सोलो ही पसंद है वो. ये गिव अवे आपका लिए कहाँ से आया है, फन पिज्ज़ा किचन की तरफ से. $10 ऑफ मिल सकते हैं आपको फ्रॉम फॉर योर नेक्स्ट बिल एट फन पिज्जा किचन फ्रिस्को लोकेशन. इस बात का याद ध्यान रखिएगा, फ्रिस्को लोकेशन पे ही वैलिड होगा ये गिव अवे आपके लिए. और दूसरा ये कि अगर आप पिछले एक महीने में इस गिव अवे को जीत चुके हैं फनेजा के किसी और शो पे, तो काइंडली थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, सो दैट यू कैन ओनली बी अ विनर वंस अ मंथ, सो कीप नोट ऑफ दैट. और फन पिज्जा किचन की तो खैर आप funpizzakitchen.com पे लॉग ऑन कीजिए और चेकआउट कीजिए उनका मेन्यू, यू आर गोइंग टू एब्सोल्युटली लव देयर मेन्यू. और अब तो उन्होंने एक मैक्सिकन इंस्पायर्ड पिज्जा लाइनअप शुरू कर दी है जी, चिकन, वेजिटेबल, सी फूड, जैसा भी आपका चॉइस है, पैलेट चॉइस है, वैसा ही आपको पिज्जा मिलेगा वहां पर. सो जरूर चेकआउट कीजिए. और अब आप मुझे ये बताइए कि अलका याग्निक के को आप अकेले ज्यादा अच्छी लगी वो गाते हुए, या किस सिंगर के साथ, मेल सिंगर के साथ आपको उनके ड्यूएट्स लगे सबसे ज्यादा अच्छे. 972-235-5555.

जी हाँ, आपसे सवाल पूछा था कि बताइए आपको अलका याग्निक की जोड़ी किसके साथ सिंगिंग में सबसे अच्छी लगी, या फिर आपको सोलो ही पसंद थी वो ज्यादा। तो हर तरह का जवाब आया मुझे, लेकिन जो हमारे मेल सिंगर्स थे जिनका सबसे ज्यादा जवाब आया, ऑफ कोर्स कुमार सानू और उदित नारायण, इन्हीं के साथ उन्होंने कुछ बेहतरीन, बहुत बेहतरीन गाने दिए, और भी दिए, जैसे कि अभिजीत के साथ उन्होंने कुछ अच्छे गाने दिए, लेकिन यही दो के साथ बेहतरीन गाने दिए, और कुछ अकेले गाने जो कि बहुत ही पसंद थी। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कॉल्स, पल्लवी, शिवानी, सुचित्रा, आनंद, रवि एंड मेनी मोर। जैसे आप जानते हैं, जिस सीक्वेंस में आप कॉल करते हैं उसको एक नंबर असाइन होता है और वही मैथ के फॉर्मूले में डलता है और आपकी लक आपके विन का फैसला करती है। अदरवाइज टू मी, टू ऑल ऑफ यू आर विनर्स। तो आज की हमारी लकी विनर है जी सुचित्रा गणेश। सुचित्रा, कंग्रेचुलेशन, जीत लिया है आपने ये गिव अवे, $10 ऑफ योर नेक्स्ट बिल एट फन पिज्जा किचन इन फ्रिस्को लोकेशन। दो दिन का हमें टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर रेस्टोरेंट पे पहुंचाने के लिए। यू विल हैव 7 days आफ्टर दैट टू गो एंड अवेल योर गिव अवे। एंड टू ऑल ऑफ यू हु पार्टिसिपेटेड, थैंक यू सो मच। और शिवानी, शिवानी आपने मुझे बताया कि आपको वो अकेली गाती हुई और भी ज्यादा अच्छी लगती हैं, और ये है आपका फेवरेट नंबर और ये है मेरा फेवरेट नंबर भी।

अलका याग्निक ने चाहे डुएट्स में गाया या चाहे सोलो गाया, लेकिन जब भी गाया वो कहते हैं ना उनकी आवाज़ ने चार चांद लगा दिए म्यूजिक सीन के ऊपर। तो कुछ ऐसा ही गाना मैं आपके लिए प्ले कर रही थी शिवानी की रिकमेंडेशन पे। शिवानी थैंक यू सो मच फॉर रिकमेंडिंग दैट ब्यूटिफुल सॉन्ग। वैसे ये सारे गाने और भी बहुत सारे अलका याग्निक स्पेशल में आपके लिए लाइंड अप हैं। तो कुछ आवाज़ें होती हैं ना जिनकी जिनकी वो जैसे लता जी का एक गाना है कि मेरी आवाज़ ही पहचान है अगर याद रहे। कुछ आवाज़ें वाकई अपनी पहचान होती हैं, कुछ आवाज़ें आवाज़ें नहीं होती, यादें होती हैं, हमारी मेमोरीज, हमारी अच्छी मीठी मीठी यादें और साथ कुछ हार्ट ब्रेक की यादें। जैसे बॉलीवुड के पास हर गाना है हमारे एहसास के लिए, इसी तरह कुछ ऐसे सिंगर्स हैं जिन्होंने हमारे एहसास को रिफ्लेक्ट करने के लिए कभी ना कभी कोई ना कोई गाना ज़रूर गाया है, जैसे कि दिस अदर नंबर। कुमार सानू के साथ एक बार फिर इनका एक बहुत ही खूबसूरत गाना आया और बहुत ही प्यार से पूछा, मतलब सच में ऐसा लगा जैसे सवाल कर रहे हैं, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, क्या तुम मुझसे मुझ पे दिल से मरती हो।

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
6: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: This Diwali, Tanishq celebrates what brings us together. Traditions shared, new friends welcomed, and memories that become theirs too. Because Diwali shines brighter when shared. This India Wali Diwali, share the light. Enjoy up to 25% off and 0% deduction on exchange. Visit Tanishq at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
8: To bataiye, आजकल स्ट्रेस किस बात का है?
9: डॉक्टर साहब, हर महीने वही कहानी। इलेक्ट्रिसिटी बिल कभी भी बढ़ जाता है, कस्टमर सर्विस डोंट आंसर, और रिन्यूअल के टाइम बस नए सरप्राइजेस। सच कहूँ, बिजनेस कम, टेंशन ज्यादा है।
10: क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं?
8: यू नो, आपको थेरेपी की नहीं, तारा कमर्शियल एनर्जी की जरूरत है।
11: 2002 से तारा कमर्शियल एनर्जी टेक्सास के बिजनेसेस को कम्पेटिटिव कमर्शियल एनर्जी प्लान्स और डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट दे रही है। कॉल 844-428-2808 or visit taraenergy.com.
12: That garba was totally worth it. We had so much fun.
13: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
12: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
14: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garb nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
15: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
16: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे।
17: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
11: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर। आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर। आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर। प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
16: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
18: यार, फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है।
19: कितनी लंबी लिस्ट है?
18: बस 2 पेजेस। इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ, एक पूजा मंदिर भी।
19: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो, SFL Worldwide है ना। इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं। पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है।
20: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाए विद SFL Worldwide, शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड वर्ल्ड वाइड। विजिट SFLWorldwide.com.
21: It's the time to crack out. It's the time to catch up.
19: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame. जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन। एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM, ऑर्डर एनी 2 एंट्रीज एंड गेट 1 एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री। ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
1: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
0: क्या मतलब?
1: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
0: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
1: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
0: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
22: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
23: इस दिवाली कॉपल में देखिए एक भव्य नजारा, गणेशा, लक्ष्मी और सरस्वती के ग्रैंड एलईडी कटआउट्स और पहली बार रामलीला, साउथ एशियन फूड फेस्टिवल बाय बिंदास सर्विसेज, नवंबर 1st, द साउंड कपेल.
24: हाय, दिस इज रानी मुखर्जी, यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो.
25: कितने आदमी थे?
26: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है.

चल रहा है आपके लिए वो 90s का बॉलीवुड स्पेशल राइट हेयर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण और जी अलका याग्निक पे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि 90s के दौर के इतने सारे गाने हैं जो अलका याग्निक जी ने गाए हैं, तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक पूरा एक यू नो गुलदस्ता उन्हीं के गानों का बना के लाया जाए। इसी तरह आने वाली एपिसोड्स में हम डिफरेंट और सिंगर्स को कवर करेंगे जिन्होंने 90s में अपनी आवाज़ का ऐसा जादू बिखेरा कि हम आज तक उसी जादू के शहर में मौजूद हैं। जी हमारे इर्द गिर्द वही गाने चल रहे हैं। और अभी किसी हमारे बहुत प्यारे लिसनर की कॉल आई थी और उनसे बात कर रहे थे और यही हम डिस्कस कर रहे थे कि 90s के गाने कुछ ऐसे गाने हैं, अगर आप उस दौर में पले बड़े हैं या आपने सुने हैं वो गाने, कि अगर 10 साल 20 साल भी मैं उस गाने को ना सुनूं और एकदम से आप मेरे सामने उस गाने को प्ले कर लें तो शायद मुखड़े तक खत्म होते होते अंतरे तक पहुंचते पहुंचते मेरे जहन में उसके सारे लिरिक्स वापस आने लगे। इट इज एज इफ आई बहुत शायद मैंने 20 साल भी ना सुना, बट एज इट वाज जैसे कभी मैंने उस गाने को भूला ही नहीं, वो मेरे दिलो दिमाग में हमेशा मौजूद था। कुछ ऐसी पावरफुल इम्पैक्ट था इन गानों का, शायद शायरी कह लीजिए, शायद म्यूजिक कह लीजिए, शायद हमारी एसोसिएशन कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, कुछ ऐसे ही खूबसूरत गाने। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि अभी तो अलका याग्निक के बहुत सारे गाने मेरे पास आपके लिए लाइन अप हैं, सो मुझे नहीं लगता कि हम एपिसोड 2 में भी इसको ख़त्म कर पाएंगे, तो आई एम डेफिनेटली गोइंग, क्योंकि आप मुझे जो गाने अभी दो चार मुझे रिक्वेस्ट आई हैं वो 1998-97 के गाने हैं और मैं सीक्वेंस में बढ़ रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप अलका

अप है, सो मुझे नहीं लगता कि हम एपिसोड टू में भी इसको खत्म कर पाएंगे. तो आई एम डेफिनेटली गोइंग, क्योंकि आप मुझे जो गाने अभी दो चार मुझे रिक्वेस्ट आई हैं वो 1998-97 के गाने हैं, और मैं सीक्वेंस में बढ़ रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप अलका याग्निक की इस जर्नी को फील करें कि किस तरह वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ी एवरी ईयर एंड सो ऑन. सो दिस वॉज, अब हम पहुँच गए हैं मूवी दिल जले तक, जिसमें उन्होंने दिया एक बहुत ही खूबसूरत गाना. वैसे तो बहुत सारे दे, दिस इज वन ऑफ दोज ब्यूटिफुल वंस.

जी हाँ, आप सबके भी फोन्स आ रहे हैं और मैं भी आपसे यही कह रही हूँ, क्या कहते हैं आप इस बारे में कि एपिसोड 3 हो जाए, बिकॉज अभी हमारे पास 97, 98, 99 की कुछ बेहतरीन फिल्मों के अलका याग्निक के गाए हुए गाने, जब वो लिटरली में ऐसी स्टार बन चुकी थी कि उनकी आवाज में जो भी गाना आता था वो सुपर हिट हो जाता था, वो अभी बहुत सारे लाइन अप है, आपकी फरमाइशें भी आ रही हैं, बट एज प्रॉमिस्ड आई एम गोइंग टू बिल्ड दिस जर्नी ईयर बाय ईयर, मूवी बाय मूवी. हम पहुंच गए थे मूवी दिल जले तक, जो कि 1996 में रिलीज हुई थी, और अब आगे बढ़ते हुए अगला गाना आपके लिए प्ले कर रही हूँ फ्रॉम द मूवी जान, जिसमें हमें अजय देवगन के साथ ट्विंकल खन्ना नजर आई है. नाइस मूवी, अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखिए, वाज बैक देन आई रियली एंजॉयड द मूवी. लेकिन इस गाने को लगाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका ब्रांड इज ऑफकोर्स वेरी स्पेशल, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी आपका ब्रांड है, तो

ना सिर्फ ये कि आपको सोशल मीडिया पोस्ट अच्छी बनानी है, बल्कि आपको अटेंशन चाहिए, रीच चाहिए, रिजल्ट्स चाहिए. तो अब फनएशिया नेटवर्क आपके लिए लेकर आ रहा है अपनी मीडिया एक्सपर्टीज टू योर सोशल मीडिया. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज रिलेटिव मीडिया. स्क्रोल स्टॉपिंग रील्स से लेकर आई कैचिंग ग्राफिक्स तक टू कैप्शंस, कॉन्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लीफिकेशन अक्रॉस फनएशिया रेडियो, डिजिटल एज वेल एज कम्युनिटी प्लेटफॉर्म, सब मिलेगा आपको. रिलेटिव मीडिया गिव्स योर बिजनेस अ कंप्लीट कॉन्टेंट सोल्यूशन. और वेदर आप बेटर कंटेंट की तलाश में हैं, या फिर आप स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी चाहते हैं, या फिर यू नीड बिगर ऑडियंस, रिलेटिव मीडिया कैन हेल्प योर ब्रांड स्टैंड आउट. सो व्हाट डू यू नीड टू डू? यू नीड टू गिव अस अ कॉल. रिलेटिव मीडिया को इस नंबर पे कॉल कीजिए. कोई क्वेश्चन है आपका, यू वांट टू बुक योर नेक्स्ट कॉन्टेंट ऑडिट, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, द नंबर इज 4694243188. 4694243188 is the number. Relative Media powered by Fun Asia Network.

All right, that was Alka Yagnik special for you, जो आज 90s के बॉलीवुड में चला. और जैसे मैंने आपसे कहा था ना, क्या कहती हैं आप इस बारे में कि एक तीसरी एपिसोड हो जाए, क्योंकि अभी बहुत सारे गाने अलका याग्निक के लाइन अप है. सो आई एम गोना ब्रिंग एपिसोड नंबर 3 नेक्स्ट थर्सडे, बिकॉज थर्सडे के थर्सडे होता है आपके लिए वो 90s के बॉलीवुड का स्पेशल जो मैं लेके आती हूँ आपके लिए. तो फिर हम इस गाने के साथ इस सेगमेंट को कर रहे हैं रैप, और इसके बाद यहीं से शुरू करेंगे जीत गाने से. 1996 जीत को याद रखिएगा, क्योंकि अब हम 1996 की अगली मूवी से अगले हफ्ते अपने सेगमेंट का शुरुआत करेंगे. ब्रेक की तरफ जा रहे हैं इस गाने के साथ, और ब्रेक के बाद हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि हमें बताएंगी, आपके साथ शेयर करेंगी स्पेशली आपकी हेल्थ के बारे में बातें. स्पेशली लेडीज, स्टे ट्यून्ड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वी विल बी टॉकिंग टू डॉक्टर वनीता बागरे ऑफ एलन इंटरनल मेडिसिन वेरी सून.

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels, India's finest, Dallas's newest.
3: Call 857-891-8942 today.
4: Ekta Mandir, DFW Hindu Temple Society presents Navaratri Mahotsavam, October 11th to 20th.
5: Daily Pujas, Aartis, Lalita Sahasranamam, Maha Mangal Aarti, Mataji Puja, aur har sham 8:30 baje Ras Garba.
4: October 16th, 17th, Saraswati Puja aur Akshara Abhyasam.
5: October 17th, Mata Ki Chauki.
4: October 18th, Durgashtami Havan. Aur 20th, Ram Leela aur Ravan Dahan.
3: Visit hindutemple.org or call 972-445-3111.
6: Dallas has its own superheroes. Fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
7: हुजूर, आपको चुनना होगा हम या ये बिरयानी।
8: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
7: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
8: दम में नरमी, मसालों में जादू और हरने वाले में नवाबी स्वाद।
9: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
10: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
9: Barista House, richness of biryani bliss.
11: Order, order. Mr. Impressions, campaign ka result.
12: Your Honor, hazaron logon ne ad dekha.
11: Miss Clicks.
13: 100 logon ne click bhi kiya.
11: Customers kitne aaye?
14: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
15: Marketing mein clicks nahi, customers matter karte hain. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. SmartReach AI, turn attention into customers. SmartReach AI, a Funasia Network product.
16: Elwing walo, dhyan se suno. Ye sirf music nahi, hint hai. Because the best chicken in Dallas is finally in Irving. Crispy, juicy, bold. The chicken Dallas has been craving after Plano and Richardson. Sal's Hot Chicken is now in Irving, bringing the crunch, the flavor and the heat. You heard chicken, we heard Sal's. Grand opening on 10th October.
17: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
18: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
19: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
20: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
19: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
0: स्टॉप, फेस्टिव फैशन चेक। नवरात्रि के आउटफिट्स रेडी है?
21: दो चनिया चोली है, मिक्स एंड मैच कर लूंगी।
0: फैशन वायलेशन, सेम आउटफिट को 9 रात ओवरटाइम।
21: तो सॉल्यूशन?
22: इंडियन एथनिक वेयर बाय ज्योतिका पटेल। एक्सप्लोर अ स्टनिंग कलेक्शन ऑफ स्टाइलिश कंटेम्प्रेरी चनिया चोलीज फॉर अ न्यू लुक एवरी डे इन नवरात्रि। प्लानिंग अ वेडिंग? डिस्कवर क्वालिटी वेडिंग एंड कस्टमाइज्ड ब्राइडल वेयर फॉर मेन एंड वुमेन एट ग्रेट प्राइसेस। कॉल 9454442194 और एक्सप्लोर ज्योतिकापटेलडिजाइंस.com। इंडियन एथनिक वेयर बाय ज्योतिका पटेल, डिजाइंड फॉर सेलिब्रेशंस।
23: हर मोहब्बत की आवाज, द वन एंड ओनली लिविंग लेजेंड राहत फतेह अली खान।
24: राहत फतेह अली खान
25: एक्सपीरियंस वंस अपॉन अ टाइम वर्ल्ड टूर 2026। राहत फतेह अली खान और उनके बेटे शहजमान अली खान एक ही स्टेज पर।
23: ब्रॉट टू यू बाय रेहान सिद्दीकी, डॉक्टर यास्मीन कुरैशी एंड ट्रू पेमेंट सॉल्यूशंस। फ्राइडे October 16, 8:30 PM, कमेरिका सेंटर, फ्रिस्को।
25: ग्रैंड स्पॉन्सर कराही पॉइंट प्लेनो के एक्सक्लूसिव कंसेशंस के साथ।
23: टिकट्स ऑन टिकट मास्टर एंड सुलेखा.com।

And with that, it is time now to give you the weather update. जी, और वेदर अपडेट आई है आपके लिए. थर्सडे अक्टूबर 15th है आज. बस अक्टूबर का महीना भी आधा खत्म और आधा रह गया. 4:48 PM इन द स्टूडियो और सिटी ऑफ मिकिनी में इस वक्त है 88 degrees. इट फील्स लाइक 90 राइट नाउ. दिन रहा सनी विद अ 40% चांस ऑफ शावर्स एंड थंडरस्टॉर्म्स हियर एंड देयर. तो शायद कुछ एरियाज में आपको गरज चमक के साथ बारिश देखने को मिली, कुछ में नहीं, बादल. एंड शाम रहेगी मोस्टली इसी तरह की क्लाउडी, अ चांस ऑफ थंडरस्टॉर्म्स इन द इवनिंग एंड देन चांस ऑफ शावर्स आफ्टर मिडनाइट एज वेल. मच कूलर विद लोज इन द मिड 50s. पॉलन काउंट आज का 8.4 विच इज मीडियम हाई, जबकि आज का यूवी इंडेक्स है 7 विच इज मीडियम एज वेल. सनराइज आज का हुआ 7:30 AM पे सुबह, जबकि आज का सनसेट होगा 6:53 PM.

करेंसी अपडेट का टाइम आ गया है जी. वेयर डज यूएस डॉलर स्टैंड टुडे विद रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज इन द वर्ल्ड. अकॉर्डिंग टू xrates.com, यूरो इस वक्त ट्रेड कर रहा है 0.89 पे, जबकि ब्रिटिश पाउंड 0.75, इंडियन रुपी 94.55 पे ट्रेड कर रहा है. कैनेडियन डॉलर 1.419 पे स्टैंड कर रहा है, जबकि पाकिस्तानी रुपी 276.73 पाकिस्तानी रुपीज अ ट्रेडिंग फॉर 1 US डॉलर. नेपालीज रुपी 151.36, जबकि बांग्लादेशी टका 123 बांग्लादेशी टकाज आर ट्रेडिंग फॉर 1 US डॉलर. गोल्ड प्राइस अपडेट के साथ अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं. गोल्ड प्राइस पर आउंस राइट नाउ इज $4,170.96, जबकि गोल्ड प्राइस पर ग्राम राइट नाउ इज $134.10. एक ग्राम सोने की कीमत में कल की नस्बत आज $2.70 का इजाफा हुआ 2.70, जबकि एक आउंस सोने की कीमत में $84.03 का इजाफा देखने को मिला. दैट्स प्रीटी मच ऑल दैट आई हैव फॉर यू विद योर फाइनेंस मैटर्स राइट हियर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण.

और इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का. ट्रैफिक में लकीली मुझे कोई खास चीज नजर नहीं आ रही. आई कैन सी अ डिसेबल्ड व्हीकल एट SH 360 टुवर्ड्स 287 साउथ बाउंड, जिसकी वजह से एक लेन ब्लॉक्ड है. बट दैट इंसिडेंट वाज रिपोर्टेड अबाउट टू आवर्स अगो, तो होपफुली यहाँ पे क्लियरिंग अप हो चुकी होगी. बट दैट्स प्रीटी मच ऑल दैट आई कैन सी फॉर यू ऑन द रोड्स ऑफ DFW. सो ड्राइव सेफ वेयर एवर यू आर गोइंग एंड एंजॉय योर इवनिंग, रेस्ट ऑफ योर इवनिंग. आई विल सी यू टुमारो. थैंक गॉड इट्स फ्राइडे टुमारो. और कल जुम्मे का दिन खास होता है, बिकॉज वन इट इज फ्राइडे, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट डे ऑफ द वीक. एंड देन आई हैव किड्स जंक्शन विद यू. बच्चा पार्टी रेडी हो जाइए. 3 PM टिल 4:30 PM आई विल बी टेकिंग योर कॉल्स लाइव. वी विल बिगिन विद मिक्स पॉट, कुछ नए और पुराने गानों का गुलदस्ता. आधा घंटा ढाई से तीन, तीन से साढ़े चार होगा बच्चा पार्टी के साथ किड्स जंक्शन. सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू टुमारो. हैव अ लवली रेस्ट ऑफ योर डे.

Put your burdens on the Almighty, and the Almighty shall redeem thee. Welcome back to your evening drive time show right here on Fun Asia Radio. It's 5:06 in the studio clock, 5:06, Thursday ki sham hai, 15 October. And that means just 15 din aur 16 din, then we get to November. Thanksgiving and Christmas will be just around the corner. सबसे पहला धन्यवाद उस ऊपर वाले को जिसने दिया जी एक और मौका एट लाइफ वेयर आई कुड बी विद यू राइट हियर ऑन फन एशिया माय फेवरेट स्पॉट एंड आपसे कुछ बातें करेंगे जी ऑल द वे टिल 7 o'clock दिस इवनिंग. स्टूडियो का नंबर हमेशा आपके लिए खुला है, स्पेशली इफ यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग, बर्थडे, एनिवर्सरी या जस्ट मेरी तरह लाइफ को अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं, देन दिस नंबर इज फॉर यू. 972-235-5555. कुछ गाने आपके, कुछ मेरी पसंद के आज चलते रहेंगे जी. सो लेट्स स्टार्ट दिस डे ऑफ विद दिस नेक्स्ट ट्रैक लाइंड अप फॉर यू. दिस इज कॉल्ड भंगड़ा टू सजदा. Now, I haven't heard this song before. Veeradi Wedding ka ye gaana hai. And maine nahi suna, to chalo, aap bhi mere saath sun lo. Here we go.

0: ओ पगड़ा तां सजदा रिमिता, आप स्टूडियो में क्या कर रही हैं जी आज?
1: मैं तो आई हूँ आप ही से बात करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड इवनिंग टू यू एंड द एंटायर DFWG।
0: गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग।
1: अच्छा ये बताओ, क्योंकि मैंने अभी अभी इस ब्रेक पे आपके फूड फेस्टिवल के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की है, तो सोचा स्टूडियो में आके आप ही से पूछ लूँ। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि 5 साल के बाद ये जो 6th ईयर है फूड फेस्टिवल का, कैसा लग रहा है आपको?
0: तो पहले तो ये बात है कि चलो खबर तुम्हारे तक पहुंच गई, रेडियो अपना काम कर रहा है।
1: एब्सोल्युटली।
0: सो जी हाँ, दिस इज द 6th ईयर एंड दिस इवेंट रिमिता वाज क्रिएटेड बाय मी। 2021 में हमने पहला किया था एंड दिस वन इज गोना बी द 6th ईयर। और एक दिमाग में कॉन्सेप्ट था कि आई वांटेड टू ब्रिंग पीपल टुगेदर बिकॉज नथिंग ब्रिंग्स पीपल टुगेदर लाइक फूड,
1: राइट?
0: तो हमने एक फूड जर्नी बनाई है जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, थाई फूड एंड दीज जो फूड वेंडर्स होंगे वो कोई ना कोई स्टेट या सिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। विच मीन्स के जो खाना उसी जगह का है वो ही वो आगे लेके आएंगे।
1: और इतने सारे ऑप्शंस होंगे,
0: बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि बाकी इवेंट्स में आप जाते हो तो खाना पहले आता है और फिर वो पड़ा रहता है और फिर वो लोग आते हैं, तो उसका मजा जो है वो किरकिरा हो जाता है। सो टू क्योर दैट प्रॉब्लम, मेजॉरिटी सारी वेंडर जो है वहाँ पे वो 2 या 3 आइटम्स जो उनके मेन्यू में होंगी वो वहीं पे बनाएंगे। सो इट्स गोना बी सर्व्ड पाइपिंग हॉट फ्रेश, ऑफ कोर्स अपीलिंग टू द आईज एंड अपीलिंग टू द पैलेट। तो ये एक फूड जर्नी है, साथ साथ तुम्हारे, अब तुम आओगी तो तुम कहोगी मार्विन ये क्या, मेरे हस्बैंड और बच्चे तो एंजॉय कर रहे हैं, बाउंस हाउसेज है बच्चों के लिए, फेस पेंटिंग है, मेरे लिए क्या? आपके लिए शॉपिंग बाजार लग रहा है पूरा।
1: रियली?
0: दिवाली है भाई, दिवाली वाली फील आनी
1: चाहिए।
0: तो दिवाली की फील पूरी पूरी आएगी जी। देर आर गोना बी अ लॉट ऑफ नॉन फूड वेंडर्स जिसमें ज्वेलरी, क्लोदिंग, साड़ियों से लेके ब्रास डेकोर एंड अ लॉट मोर थिंग्स दैट यू हैवन्ट प्रॉबली सीन बिफोर। तो वो है, उसके साथ साथ वी हैव अ लॉट ऑफ गेम्स दैट द किड्स विल प्ले। पर दिवाली के एलिमेंट के लिए क्या है,
1: क्या है?
0: अब रामलीला करवा रहे हैं जी, फर्स्ट टाइम इन कोपेल।
1: इन कोपेल रामलीला,
0: 4 बजे रामलीला स्टार्ट होगी। इट इज अ क्रू ऑफ अबाउट 30 पीपल दैट आर बी गोना बी टेकिंग पार्ट इन दैट रामलीला।
1: ओके।
0: उसके साथ साथ हमने 20 फुट के गणेश जी, 16 फुट की सरस्वती जी एंड 16 फुट की लक्ष्मी जी के कटआउट्स बनवा के उसमें LED लगवा रहे हैं, ताकि उस दिवाली का पूरा ग्रैंडियर फील आए एंड यू कैन टेक योर सेल्फीज एंड पिक्चर्स एंड डू योर दर्शन। उसके साथ साथ 7 बजे हम लोग सब मिलकर फुलझड़ियां जलाएंगे। दोज आर ऑल्सो गोइंग टू बी फ्री। तो आप मेरे को ये ना कहना मेरी वाली कहाँ है, सबके लिए एक ना एक फुलझड़ी जरूर होगी एंड वी विल डू दैट एंड वी विल गेट द दिवाली फीलिंग गोइंग बिकॉज अगले हफ्ते दिवाली।
1: इतने सारे इन्फॉर्मेशन मुझे दे दिए, बट ये भी बता दो कि एग्जैक्टली हो कहाँ रहा है और कब हो रही है ये आपकी बंदा बिंदास मार्विन दास फेस्टिवल, वो भी फूड वाली और इतने सारे एक्साइटिंग चीजों वाली।
0: तो 6th एनुअल DFW साउथ एशियन फूड फेस्टिवल ब्रॉट यू बाय बिंदास सर्विसेज हैपनिंग ऑन द 1st of November। ये 1 नवंबर यानी कि संडे को है एंड दिस इज गोना स्टार्ट एट 12 PM ऑल द वे टिल 8 o'clock इन द इवनिंग। और शाम को 7 बजे के बाद हम एक लाइव बैंड भी लगाते हैं। सो एंटरटेनमेंट की बात तो हमने की नहीं।
1: अरे
0: एंटरटेनमेंट मैडम ऐसा है कि सुबह से लेकर शाम तक द बेस्ट ऑफ DFW सिंगर्स वहां पे गाने की परफॉर्मेंसेस चलती रहेंगी। बच्चों के डांस ग्रुप्स, चाहे कल्चरल हो, चाहे मॉडर्न या यू नो बॉलीवुड हो, वो भी होंगे एंड देन वी हैव प्रोफेशनल डांस ग्रुप्स लाइक एथनिक एंड आर्या डांस अकेडमी एंड मेनी ऑफ द अदर स्कूल्स दैट आर आल्सो गोना बी देयर। सो फुल ऑन एंटरटेनमेंट थ्रू आउट द डे एंड 7 बजते ही जैसे ही मौसम थोड़ा रोमांटिक होगा, शाम होगी, सूरज जो होगा वो डूबने लगा होगा, तब हम लाइव बैंड ऑन कर देंगे। सो यू हैव फुल ऑन एंटरटेनमेंट, बहुत सारा खाना पीना एंड ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ फन। किड्स के लिए बाउंस हाउसेस, कार्निवल गेम्स एंड मोर, फेस पेंटिंग एंड द 9 yards। सो कोई रीजन बचा ही

0: लाइव बैंड ऑन कर देंगे, सो यू हैव फुल ऑन एंटरटेनमेंट, बहुत सारा खाना पीना एंड ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ फन किड्स के लिए, बाउंस हाउसेस, कार्निवल गेम्स एंड मोर, फेस पेंटिंग एंड द नाइन यार्ड्स. सो कोई रीजन बचा ही नहीं कि मत आएं आप.
1: आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस इवेंट एंड फॉर दिस फूड फेस्टिवल. स्पेशली मेरे जैसे फूडी है, इतने सारे ऑप्शन, पहली दफा ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कोई इवेंट पहले इतने सारे एंटरटेनमेंट फैक्टर के साथ पहले हुआ है. आई विल बी देयर फॉर माई बिग ब्रो बंदा बिंदास मार्विन दास फूड फेस्टिवल. आई एम श्योर द एंटायर DFW वुड बी देयर टू एंड विल बी हैविंग द ग्रेटेस्ट टाइम ऑफ देयर लाइफ.
0: एब्सोल्युटली. एंड अगर आपका बिजनेस है दैट यू वांट टू प्रमोट, देन यू कैन ऑल्सो डू दैट. गिव मी अ कॉल. वी हैव सम बूथ ऑप्शंस एंड स्पॉन्सरशिप ऑप्शंस व्हिच आर थोड़े से बचे हैं बूथ्स में. सो इफ एनीबडी वांट्स टू प्रमोट देयर बिजनेस, देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ पीपल दैट विल बी अटेंडिंग द इवेंट. आप मुझे कॉल कर सकते हैं 972-302-7012. दैट्स 972-302-7012. तो रिमिता, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग द राइट क्वेश्चंस. और मुझे अच्छा लगा कि क्यूरियोसिटी क्रिएट हुई आपके मन में. मुझे पता है आप फूडी हो, तो मैंने कहा फूडी को तो कॉर्नर में लाना ही पड़ेगा और इनसे बात करनी पड़ेगी कि क्या क्या हम इनके लिए वहां पे लेके आ रहे हैं. सो थैंक यू वेरी मच एंड DFW आई विल सी यू ऑन 1st of November. तब तक के लिए आप गाने सुनते रहिए मजेदार. दैट्स व्हाट वी डू.
2: स्वादी फुके.

0: कभी भी आपको एक्सीडेंट या आप कभी गिरे ना, अगर गिरे भी तो किसी की आंखों से ना गिरे, बट अगर बाय चांस स्लिप एंड फॉल हो जाए, नज़रों से ना गिरे, कहने का मतलब ये है, आंखों से, समझ रहे हो? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर एक्सीडेंट कभी हो जाए गलती से किसी और की या आपकी, देन डोंट वरी, यू हैव समबडी हु कैन हेल्प यू गेट द मोस्ट अमाउंट ऑफ योर एक्सीडेंट क्लेम, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज दे डोंट वांट टू पे यू, बट अटर्नी ओमर ख्वाजा नोज हाउ टू टैकल दैट। दे विल मेक श्योर दैट आपका जो, अगर इफ यू हैव एनी ऑफिस से आपको छुट्टी लेनी पड़ी बिकॉज ऑफ योर एक्सीडेंट, या आपकी गाड़ी का नुकसान हुआ है, आपके मेडिकल बिल्स हैं, दीज ऑल कैन बी टेकन केयर ऑफ विद द राइट पार्टनर ऑन योर साइड। सो एक नाम याद रखिए, यू डोंट नीड टू नो द नंबर और एनीथिंग राइट नाउ, नोट मत कीजिए, बट कभी अगर ऐसी प्रॉब्लम आए या किसी और के साथ हो जाए, जस्ट टेल देम टू कॉल अटर्नी ओमर और गो टू द वेबसाइट विच इज attorneyomar.com, दैट्स attorneyomar.com, यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑन दैट वेबसाइट इटसेल्फ। याद रखिएगा कि 1 नवंबर इज द DFW साउथ एशियन फूड फेस्टिवल, ये 6वां साल है एंड दिस इज इन कोपेल, कोपेल सिटी जो है वहाँ पे है, वहाँ पे एक वेन्यू है जिसका नाम है द साउंड, THESOUND, इट्स राइट एट दैट साइप्रस वाटर्स। सो मार्क दैट कैलेंडर, November 1st, एंड आई विल सी यू ऑल देयर। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आया, डोंट गो एनीवेयर।
1: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
2: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। Luxury Brilliance Celebration, Tanmay Jewelers in Irving.
3: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
4: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
5: Paid spokesperson. Principal Office, Dallas, Texas.
6: Discover Tassels by Renu in Frisco. Designer ethnic wear at great prices.
7: From elegant saris, lehengas to Indo-Western fusion sets and men's ethnic wear. Find festive and wedding styles.
6: For exclusive deals and collections, join Renu's weekly Facebook Live or follow them on Insta.
7: Visit tasselsbyrenu.com or call 563-508-5673. That's 563-508-5673. Tassels by Renu. Dress beautifully, celebrate stylishly.
8: हो सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो। जॉइन पास या एंड मार्केट योर बिजनेस फॉर फ्री। शोकेस योर डील्स एंड गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स नियर बाय। पास या, बी वेयर योर कस्टमर्स आर लुकिंग।
9: बेटा, 95% आए?
10: हाँ मम्मी।
9: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
11: मेरा?
9: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
11: वो
12: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड CFO सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
13: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
14: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
13: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
14: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
13: सच में सब संभालेंगे?
14: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
12: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
15: Ladies, to mark her 15 years of service to the DFW community, Dr. Madhuri Gudipati, board-certified OBGYN, is moving to a new office location in West Plano, conveniently located on Dallas Parkway in Windhaven. Visit yourobgynspecialist.com or call 972-867-7500 for an appointment today. Dr. Madhuri, helping women lead healthy lives.
7: दिवाली बाजार हो या फूड स्टॉल, अपने बिजनेस को दीजिए फेस्टिव स्पॉटलाइट। बुक योर बूथ एट द साउथ एशियन फूड फेस्टिवल बाय बिंदास सर्विसेज, नवंबर 1st, द साउंड कपेल। कॉल मार्विन 972-302-7012।
10: बर्थडे का सरप्राइज गिफ्ट।

देखो, अगर आपको कोई बेवकूफ बोले ना, तो परेशान मत होना, दुखी मत होना, अफसोस मत करना, रोना भी नहीं और डरना भी मत। हिम्मत से, धीरे से कुर्सी पर बैठना और ठंडे दिमाग से सोचना, ये साले को पता कैसे चला?

5:25 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में. वेलकम बैक टू योर इवनिंग ड्राइव टाइम शो. दिस इज अ थर्सडे इवनिंग, अक्टूबर 15. और थर्सडे का मतलब कल परसों और संडे को मेरी छुट्टी है यार. एक ज्ञान की बात आपको बता देता हूँ. मैरिड कपल्स जो होते हैं ना, उनको बताता हूँ कि मैरिज है ना, जो मैरिज इट इज बिल्ट अपॉन ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग. ठीक है जी. माई मैरिज इज ऑल्सो बिल्ट अपॉन ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग. That's a different story. She doesn't trust me and I don't understand her. This part of the show is brought to you by Texas Star Rehab. If you have godon mein teen teen toon toon chau chau peeth ke aa ukrak bajte hain to aapko jana hai ji Texas Star Rehab. Especially if you have parents that are older and they complain about pain in their joints, or if you are about to have any joint replacement surgery, then you should get with Rushi, who is the practitioner at Texas Star Rehab. Two locations to serve you, Irving and in Frisco, and they are the best at what they do. They've worked on me, they've worked on many cricket players like Sachin Tendulkar, apna Shoaib Akhtar sahab, and they are also the physiotherapist for MLC Cricket, which is the Mumbai Indian New York team and other players. So make sure to check them out on the website texasstarrehab.com. Taking you to the agla gana. वैसे मैंने आज ट्रेलर देखा है रामायण का, जो सेकंड ट्रेलर, एंड व्हाट अ ट्रेलर मैन, व्हाट ग्राफिक्स, क्या लुक आई है रॉकी भाई की, एंड रणबीर इन द रोल ऑफ राम, फैंटास्टिक. चेक कीजिए यूट्यूब.

0: ठुमक ठुमक ठुमक ठुमक ठुमक ठुमक वो चली टेकन फ्रॉम द मूवी वन. आई थिंक इट वॉज फन टू वॉच द मूवी, बट मूवी का मतलब जो मजा है ना वो आया नहीं मुझे. मतलब स्टोरी है बेतुकीसी, कुछ भी उठा के कुछ भी बना दो, ऐसा थोड़ी होता है यार. कुछ ना कुछ लॉजिक डालना चाहिए. बट नंदलस एंटरटेनिंग थी. एंटरटेनिंग से याद आया कि एंटरटेनमेंट जो आपको मिलने वाली है ना, जहाँ दैट इज़ कमिंग इन द फॉर्म ऑफ राहत फतेह अली खान साहब एंड इनके जो प्राउड स्पॉन्सर हैं, दैट इज़ कड़ाही पॉइंट राइट हेयर इन डैलस प्रेस्टन रोड पे है जी ये लोकेटेड. एंड अगर आपने अभी तक इनका खाना नहीं खाया देन यू have to go. Let me invite Nadeem ji from Kadahi Point to talk a little more about Kadahi Point and of course the concert that is coming for you this very week. And Nadeem ji, good evening to you. How are you?
1: I'm good. Nadeem, how are you, sir ji?
0: बहुत बढ़िया नदीम जी. पूरा DFW आपको सुन रहा है. पहले तो ये congratulations कि आपने इतने अच्छे शो को sponsor किया है and that is from Kadahi Point. तो पहले ये बताइए कि पहले ये बताइए कढ़ाई पॉइंट क्या है और किस तरह का खाना कढ़ाई पॉइंट पे लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड व्हाई पीपल शुड कम टू कढ़ाई पॉइंट.
1: कढ़ाई पॉइंट इस वक्त डैलस का सबसे मशहूर पाकिस्तानी और इंडियन रेस्टोरेंट बन चुका है.
0: क्या बात है.
1: और वैसे तो किसी तारीफ को मोहताज नहीं है, लेकिन डेफिनेटली कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो अभी हमें नहीं जानते या उन्हें हमारे बारे में नहीं पता, तो उनको मैं बताऊंगा कि कढ़ाई पॉइंट इस वक्त जो US और कनाडा दोनों जगह पाकिस्तानी सबसे बड़ा ब्रांड है. और बेसिकली ये एक फ्रेंचाइज है जो कि आज से तकरीबन 14 इयर्स पहले शुरू हुई थी कनाडा से और अब तक इसकी 19 लोकेशंस हो चुकी हैं.
0: क्या बात.
1: और जिनमें से तकरीबन 17 लोकेशंस कनाडा में हैं और 2 लोकेशन US में है. लास्ट ईयर US से स्टार्ट लिया है हमने अपना और पहली लोकेशन इसकी ह्यूस्टन में है जो कि आगाज रेस्टोरेंट के अपोजिट ही है. और सेकंड लोकेशन US की जो है ये डैलस में है जो कि यहाँ हम सक्सेसफुली रन कर रहे हैं. जी सर.
0: वंडरफुल, बहुत बढ़िया साहब. मैंने सुना है कि वहाँ पे कढ़ाइयाँ बड़ी ज़बरदस्त मिलती हैं और जो कढ़ाई खाने का मज़ा है वो एक्चुअली कढ़ाई में ही आता है. तो क्या आपके वहाँ भी यही सिस्टम है कि आपके सामने कढ़ाई रख दी जाएगी और दोस्तों के साथ आओ, फैमिली के साथ आओ, नान और पराठे ऑर्डर करो और बस कढ़ाई में मिल के कूद जाओ, यही यही यही मॉडल है वहाँ भी?
1: बिल्कुल, डेफिनेटली ऐसा ही है. और ये कॉन्सेप्ट कनाडा से हमने शुरू किया था और ये नॉर्थ अमेरिका में ये कॉन्सेप्ट लाने वाले भी कढ़ाई पॉइंट ही है कि जिस पॉट में या जिस कढ़ाई में खाना पकाया जाता है उसी कढ़ाई में हम सर्व करते हैं टेबल पर. तो ये एक नया कॉन्सेप्ट था आज से कई साल पहले और इसी वजह से हम काफ़ी पॉपुलर रहे इस फील्ड में. और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हमारी अब 19 लोकेशंस हो गई हैं, हम मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं.
0: Wonderful,
1: और यूएस में
0: wonderful.
1: लास्ट ईयर हम आए हैं और इंशाल्लाह और पूरे यूएस में इंशाल्लाह हम अंदरी फैल जाएंगे.
0: मेरा आना आपकी तरफ बाकी है साहब, बट मेरा कजन है जो आपके रेस्टोरेंट के बिल्कुल पास रहता है और वो जा के मुझे बताता रहता है कि मारिन भाई आपको यहाँ आना जरूर है. तो जरूर साहब मैं वहाँ पहुंचूंगा.
1: अभी भेज दें.
0: जरूर. मुझे ये बताइए जनाब कि जो इतना बड़ा कॉन्सर्ट आप लेके आ रहे हैं, राहत फतेह अली खान साहब एंड फर्स्ट टाइम वो अपने बेटे के साथ टूर पे आ रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए ना जनाब. जो जो असली कहते हैं ना जो दुल्हन है वो तो आपने छुपा रखी थी, तो अब उस पर जरा तवज्जो डालें कि ये जो शो आप लेके आ रहे हैं इसमें राहत साहब क्या क्या लेके आ रहे हैं, कब है, कहाँ है एंड थोड़ा डैलस को और एक्साइट कीजिए.
1: बिल्कुल बिल्कुल. वो आपने राहत साहब का गाना सुना है ना, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है.
0: जी जी.
1: तो ये सुहाना सेहरा सजने वाला है कल और ये 16 अक्टूबर को कल ये शो होने जा रहा है.
0: वंडरफुल.
1: और सबको पता है कि इस वक्त मतलब फन एशिया रेडियो के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमारे साथ कोऑपरेशन किया इस शो के अनाउंसमेंट के लिए और इस शो की प्रिपरेशन के लिए भी. और फन एशिया रेडियो पर तकरीबन लास्ट वीक से हमारा सेगमेंट चल रहा है जिसमें कि हम इस शो के टिकट्स को गिव अवे कर रहे हैं लोगों को. और अब तक काफ़ी तादाद में, एक बड़ी तादाद में टिकट्स जो है वो लोग विन कर चुके हैं और कढ़ाई पॉइंट डैलस रेस्टोरेंट पर आके उसे रिसीव कर चुके हैं. तो कल ये शो होने जा रहा है और इस शो का ग्रैंड स्पॉन्सर इस वक्त कढ़ाई पॉइंट डैलस है.
0: वंडरफुल. ये बताइए
1: आज इस हवाले से जी
0: मुझे ये बताइए कि इसकी टिकटें कहाँ पे मिलेंगी साहब?
1: टिकटें इसकी टिकट मास्टर से अवेलेबल है, इवन कढ़ाई पॉइंट डैलस पर भी आकर आप ले सकते हैं. तो और ऑनलाइन अवेलेबल है, आप सिर्फ राहत फतेह अली खान कॉन्सर्ट डालें डैलस तो आपको पूरी डिटेल ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएगी।
0: जबरदस्त नदीम साहब, तो DFW आपने खुद ही सुन लिया है नदीम साहब से, जो कि कॉन्सर्ट लेके आ रहे हैं। द ग्रैंड स्पॉन्सर ऑफ दैट शो इज कड़ाही पॉइंट। कड़ाही पॉइंट लोकेटेड है जी प्रेस्टन और जॉर्ज बुश के बिल्कुल पास, तो पहुंच जाइए कड़ाही पॉइंट, वहां से टिकटें ले लीजिए। और हमें ना नदीम भाई, हम देशियों को ना टिकट्स कहने में मजा नहीं आता, जो टिकटें कहने में मजा आता है ना, और फिल्में जो कहने में मजा आता है, वो अलग ही मजा है। तो भैया अपनी अपनी टिकटें फटाफट से ले लो, ticketmaster.com इज द वेबसाइट, गो देयर, गेट योर टिकट्स एंड एंजॉय दिस लवली शो।
1: बल्कि मैं आज इस इंटरव्यू के तवसुत से ये भी एक ऐलान करना चाहूंगा कि आज 15 अक्टूबर को आज जो फैमिली कड़ाही पॉइंट पर आती है और वो यहाँ पर डिनर करती है या किसी भी हवाले से वो अपने एंजॉय करते हैं, उनके लिए हम स्पेशल एक टिकट पर फैमिली हम इस कॉन्सर्ट का उन्हें गिफ्ट करेंगे।
0: वंडरफुल,
1: ये भी हमारी तरफ से एक ऐलान है।
0: लो जी, फ्री टिकट हो जाएगी जी, सिर्फ आपको कड़ाही पॉइंट पहुंचना है, एक फैमिली पर टेबल एक टिकट आप एब्सोल्युटली फ्री ले सकते हैं, और बाकी टिकट्स आर अवेलेबल एट ticketmaster.com। नदीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपको।
1: मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये कमरिका सेंटर में हो रहा है, जो 2601 एवेन्यू ऑफ द स्टार्स फ्रिस्को, ये प्रोग्राम हो रहा है। तो इसके लिए आप बिल्कुल कल हमें ज्वाइन करें। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि वहां पर कड़ाही पॉइंट के दो बड़े स्टॉल्स हम लगा रहे हैं, जहां पर कड़ाही पॉइंट के जो अनवा एक्साम के खाने हैं वो आप वहां पर एंजॉय कर सकते wonderful. हैं, और वहां पर हम अपने गिव अवे वहां पर भी देंगे।
0: Perfect,
1: और हम कुछ ऐसी स्कीम्स वहां अनाउंस करेंगे जिसकी वजह से कड़ाही पॉइंट को लोग फ्यूचर में भी एंजॉय कर सके।
0: बहुत शुक्रिया।
1: मुख्तलिफ किस्म के ऑफर्स है, 20% ऑफ है
0: नदीम साहब। आज के लिए वक्त मेरे पास इतना ही वक्त है आज के लिए मेरे पास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डालस, गेट योर टिकट्स राइट अवे एट ticketmaster.com और जाके जबरदस्त खाना खाइए एट कड़ाही पॉइंट, राइट एट द इंटरसेक्शन ऑफ जॉर्ज बुश एंड प्रेस्टन रोड।

0: गाने का नाम है बड़े भैया भाभी तबाही, नई नवेली फिल्म से लिया है बेड़ो, समझ गए, नई नवेली फिल्म है भाभी तबाही, गाने का नाम है यामी गौतम, इसमें नजर आएंगे आपको आसमानों में लाखों तारे। वैसे ही मन किया वो गाना, याद आ गया मुझे वो कैरेक्टर। एक छोटे से ब्रेक पे जाने लगा हूँ जी, पर उससे पहले आपको बता दूं, लुकिंग फॉर अ होम गेट विद नवनीता गेम का फन एजिया की नवनीता बन चुकी है जी रियल्टर विद केलर विलियम, शी विल गेट यू योर होम एंड राइट योर स्टोरी विद यू, गिव अ कॉल 347-449-4242, दैट्स 347-449-4242। पता है अगर इंसान गलत हो और चुप कर जाए ना, उसको बहुत समझदार इंसान कहते हैं। अगर आप गलत हो चुप कर जाओ, समझदारी है, पर अगर आप ठीक भी हो और तब भी चुप हो जाओ तो आप शादीशुदा हो, इट्स ऑल राइट। अभी आया
1: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
2: अरे सारे तो सेम है।
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
2: ओ हाँ, ये तो अलग है।
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सस के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में। सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं, और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है। अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज, अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, हियर एवरीथिंग इज बेटर।
5: जब सेलिब्रेशन देसी हो तो अंदाज भी खास होना चाहिए। इस फेस्टिव सीजन अपने ट्रेडिशनल स्टाइल को दीजिए एक ग्रैंड अपग्रेड विद मान्यवर मोहे, फेस्टिव और वेडिंग वेयर फॉर मेन एंड वुमेन।
3: विजय देवरकोंडा की कॉन्फिडेंट स्टाइल हो या रश्मिका की एफर्टलेस ग्रेस, गेट दैट परफेक्ट लुक डिजाइंड फॉर एवरी सेलिब्रेशन।
5: लोकेटेड एट I-635 इन इरविंग, मान्यवर मोहे, सेलिब्रेशन आपका अंदाज खास।
3: ओपनिंग सून ऑन रोनाल्ड रेगन बुलेवार्ड इन लियांडर, ऑस्टिन।
5: 15th को फेस्टिव शॉपिंग,
6: उसके बाद फ्लेवर लाउंज,
5: 20 को गरबा का प्लान,
6: देन फ्लेवर लाउंज,
5: 1st को दिवाली मीटअप,
6: लेट्स केटर फ्रॉम फ्लेवर लाउंज।
5: और आज कोई प्लान ही नहीं है
6: तो चलो फ्लेवर लाउंज।
7: खाने वालों को खाने का बहाना चाहिए,
3: सेलिब्रेशन हो, शॉपिंग की भूख या बस कुछ अच्छा खाने का मूड, डाइन इन और केटरिंग, थिंक फ्लेवर, थिंक द फ्लेवर लाउंज फ्रिस्को। इस फेस्टिव सीजन हर प्लान में थोड़ा फ्लेवर, खाने वालों को खाने का बहाना चाहिए।
8: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
9: कुछ भी नहीं, Oura Debt Relief will do it for us.
8: क्या मतलब?
9: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
8: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
9: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
8: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
10: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
11: Breakfast में क्या खाना है?
12: कीमा पराठा।
13: मम्मी ऑमलेट पराठा।
14: बेटी हलवा पूरी और तरकारी।
15: अब संडे को तीन अलग नाश्ता कौन बनाएगा?
3: सिग्नेचर क्विजीन बनाएगा। चूज एनी डिलीशियस ब्रेकफास्ट ऑप्शन, कीमा विद पराठा, हलवा पूरी विद तरकारी और ऑमलेट विद पराठा, सर्व्ड विद अ कप ऑफ हॉट कड़क चाय फॉर ओनली $8.99। अवेलेबल ड्यूरिंग वीकेंड ब्रेकफास्ट आवर्स एट सिग्नेचर क्विजीन इन प्लेनो। वीकेंड का मूड गर्मा गर्म देसी फूड, विजिट signaturecuisine.net।
16: तो बताइए आजकल स्ट्रेस किस बात का है?
17: डॉक्टर साहब हर महीने वही कहानी, इलेक्ट्रिसिटी बिल कभी भी बढ़ जाता है, कस्टमर सर्विस डोंट आंसर और रिन्यूअल के टाइम बस नए सरप्राइजेस। सच कहूं बिजनेस कम टेंशन ज्यादा है।
18: क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं?
16: यू नो, आपको थेरेपी की नहीं तारा कमर्शियल एनर्जी की जरूरत है।
3: 2002 से तारा कमर्शियल एनर्जी टेक्सास के बिजनेसेस को कम्पेटिटिव कमर्शियल एनर्जी प्लान्स और डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट दे रही है। कॉल 844-428-2808 or visit taraenergy.com.
19: This Diwali, Tanishq celebrates what brings us together. Traditions shared, new friends welcomed, and memories that become theirs too. Because Diwali shines brighter when shared. दिस इंडिया वाली दिवाली शेयर द लाइट एंजॉय अप टू 25% ऑफ एंड 0% डिडक्शन ऑन एक्सचेंज. Visit Tanishq at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
12: Bindas bolo. Bolo, bolo, bolo, bindas bolo.
15: Jab gaana bole bindas, to shaam bhi hogi bindas. Join Banda Bindas, Marvin Das, Monday se Thursday from 5 p.m. to 7 p.m. for music, musti or full-on entertainment. Powered by Texas Star Rehab and Performance Center or Himalayan Bazaar. Sirf Anisha Radio par.

0: पावरफुल बैंगर बनाया भैया चूजे, टेकन फ्रॉम द मूवी उड़ता तीर, आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, एमी में बंटा एंड सचिन जिगर का म्यूजिक इसमें मिला है जी, वंडरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल एंड आई थिंक दिस मूवी इज गोना बी एक्साइटिंग एज वेल। फॉर नाउ इट इज टाइम टू टॉक अबाउट समथिंग जो हम जब बिल आता है तो हम कहते हैं यार ये फिर आ गया, ये फिर आ गया, ये फिर आ गया, बट उसका परमानेंट सोल्यूशन ही ढूंढते हैं और सोल्यूशन है। आई एम टॉकिंग अबाउट योर क्रेडिट कार्ड बिल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट अनप्लान डेट, किसी एमरजेंसी की वजह से, किसी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, किसी ऐसी सिचुएशन की वजह से जहाँ पे आपको मोर देन यू नो यू कुड हैंडल लोन लेना पड़ा या क्रेडिट कार्ड आपको ज़्यादा यूज़ करना पड़ा, एंड नाउ बिकॉज ऑफ अ जॉब लॉस और वट एवर इट मे बी यू आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम। और ये जो टफ टाइम है ना, ये सिर्फ आप पे नहीं, एक्चुअली इम्पैक्ट्स द होल फैमिली। भाभी आपसे नाराज रहती हैं, थिंग्स डोंट गो सो वेल इन द हाउस, किड्स यू नो लुक एट यू इन अ डिफरेंट एंगल। सो इसके सब के लिए एक सिंपल सोल्यूशन है, दैट इज ऑफर्ड बाय उरा डेट, बट आई एम नॉट गोना डू द टॉकिंग। उरा डेट के अमन हमें बताएंगे कि कैसे आप लोग डेट फ्री हो सकते हैं। गुड इवनिंग अमन, हाउ आर यू?
1: गुड इवनिंग फाइनेंशियल सुनने वाले सभी लिसनर्स को उरा और अमन की तरफ से एक बार फिर से नमस्कार। सो दोस्तों, बार बार यही चीज याद कराने के लिए आपके साथ हाजिर हो जाता हूँ कि क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट करने से पहले उरा को कॉल कर लीजिए। क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट से क्रेडिट कार्ड उतरते नहीं है, रादर हिलते भी नहीं है। 40% अगर आप इंटरेस्ट भरेंगे तो नहीं उतरेंगे। तो अगर आप चाहते हैं और आप परेशान हैं कि क्रेडिट कार्ड का कर्जा उतर नहीं रहा है और मिनिमम पेमेंट हर महीने दर आ जाती है कि पहली तारीख को आप शुरू करते हैं मिनिमम पेमेंट देना, कब 30 तारीख आ गई, अगला महीना फिर से शुरू हो गया, फिर क्रेडिट कार्ड की चिट्ठियां आ जाती हैं, तो आपके क्रेडिट कार्ड चाहे वो बिजनेस के हैं, स्टोर के हैं, पर्सनल हैं, उन सारे कार्ड की एक किस्त बन जाएगी और उनमें से आधा कर्जा माफ हो जाएगा। जी हाँ, आधे से ज्यादा कर्जा माफ हो जाएगा, जो बाकी बचेगा उसकी इंटरेस्ट फ्री किस्तें बन जाएंगी। ना सिर्फ क्रेडिट कार्ड बल्कि अगर आपका कोई पर्सनल लोन है तो उसको भी आप आधे से ज्यादा माफ करवा सकते हैं, या फिर आपकी गाड़ी जो रिपोजेस हो गई है या टोटल हो गई है लेकिन इंश्योरेंस ने क्लेम नहीं दिया, क्लेम था भी तो लेकिन अप्रूव नहीं हुआ, तो उस सिचुएशन में लोन तो आपको देना पड़ेगा, उस लोन को भी आप आधे से ज्यादा माफ करवा सकते हैं। तो जस्ट गिव अस अ कॉल, हमारा टोल फ्री नंबर है 1-888-888-9914। फ्री एनालाइज करके देंगे ताकि आप जान सकें कि आप कितना पैसा बचा सकते हैं, क्योंकि ये बैंकरप्सी नहीं है। तो अगेन 1-888-888-9914, 1-888-888-9914, या आप मुझसे सीधी बात कर सकते हैं, मेरा नाम है अमन, कॉल कीजिए 9167763555, 9167763555, अगेन 9167763555, 776-3555, 916 एरिया कोड, ते हमारी वेबसाइट है www.ura.org।

0: अच्छा सचमुच है हिंदुस्तान हमारा। इतिहास गवाह है कि हमने कभी किसी पर पहले अटैक नहीं किया, पर अगर कोई हम पर अटैक करे।
1: But Heart is the movie. This one is taken from Sapno Ka Samandar. What a beautiful track alongside Sunidhi Chauhan and Emiwe Bantay. I mean, you can never imagine Sunidhi Chauhan doing hip-hop, but the way she added that beautiness to the track, main bolunga khoobsurat bana diya jis gaane ko aur bhi. You're listening to an Evening Drive Time Show. It's 5:54 in the studio clock. Today marks a day when in India's India ka bahut khas insaan janam hua tha, and that was Awul Pakir Jalaluddin Abdul Khan, yani ki APJ अब्दुल कलाम साहब। आज ही के दिन इनका जन्म हुआ, 15th of October 1931। इंडियन एरोस्पेस इंजीनियर, साइंस एडमिनिस्ट्रेटर, जिन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह भी हमें सर्व किया, एंड ऑफ कोर्स समबडी हु इज बीन प्लेड अ वेरी प्रोमिनेंट रोल इन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन विच इज DRDO एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विच इज ISRO एंड द इंडियन सिविलियन स्पेस प्रोग्राम एंड मिलिट्री मिसल डेवलपमेंट एफर्ट्स। आई थिंक समबडी हु वॉज नोन एज द मिसल मैन ऑफ इंडिया फॉर द रीजन दैट ही वॉज the guy who worked on the development of ballistic missile and launch vehicle technology, also played a pivotal organizational, technical and political role in Pokhran 2, jo nuclear test hue the 1998 mein, India's second such test after the first test in 1974. Aaj hum yaad kar rahe hain is leader ko, is revolutionary bande ko, jinka naam tha APJ Abdul Kalam Azad sahab. Ek gaane ki taraf aapko le ja raha hoon, and on the other side of the break, I do have a giveaway coming up for you, and that is from Barista House. Uske baare mein bhi batayenge aapko as we progress in our show. For now, it is one track coming up from Keisha Cole, who's also celebrating her birthday today.

0: है उससे तुम राइट हो।
1: यू नो, मैं देख रहा था कि भाई गॉड लड़कों का बस नहीं चलता आजकल। मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम फेसबुक पे ऐसे मैसेज, मतलब लड़की फोटो डालती है कुछ ना कुछ, आई लव यू, यू सो क्वीट, ब्ला ब्ला ब्ला। इनका बस चले ना, इनका बस नहीं चलता भैया। बस चले इनका तो लड़की की कबर पे भी लिख दें, नाइस कबर, वंडरफुल लोकेशन, ब्यूटीफुल मिट्टी डियर।
2: नेचर में कितना हरा है, आदमी जिंदा है फिर भी मरा है।
1: वेलकम बैक टू योर इवनिंग ड्राइव टाइम शो, 6:07 इन द स्टूडियो, क्लॉक 6:07 हो चुके हैं बड़े भैया, थर्सडे की शाम है। एंड यू नो 6:07, एक मेरा दोस्त है उसका नाम है लंबू, वैसे उसका नाम दीपेंदु है, बट उसका हाइट जो है ना 6'7" है भाई वो बंदा। हाँ मतलब मैं उसके साथ अगर नीचे खड़ा हूँ और वो एक लेट्स से एक पौड़ी ऊपर खड़ा है तो भाई ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन ही खड़ा है, इतना लंबा आदमी है यार वो। बट नॉनदलेस लंबा होना अच्छा भी है, इतना लंबा भाई, गाड़ी में उसको तकलीफ, एयरप्लेन में उसको, बस में उसको, लड़की वैसे नहीं उसको मिल रही। चलो कोई बात नहीं, कभी ना कभी मिल जाएगी। मैं आपके लिए अच्छे अच्छे गाने चला रहा हूँ जी, एंड आई एम गोना मेक श्योर दैट यू गाइस स्टे ट्यून्ड टू फनेजिया विद सम लवली म्यूजिक एंड लवली बातें। ऑफ कोर्स इस सेगमेंट में मेरे पास आपके लिए है वन गिव अवे दैट इज कमिंग फ्रॉम बरिस्ता रेस्टोरेंट एंड बार राइट हियर इन फ्रिस्को। एंड बरिस्ता एक ऐसा जगह है जी जो डेंटन में पहले खुली थी, एंड दे डिड अ वेरी गुड बिजनेस इन डेंटन बिकॉज ऑफ द फ्लेवर दे ब्रिंग। आगे बताता हूँ क्या क्या है उनके पास, कैसे आप जीतेंगे $20 का गिफ्ट सर्टिफिकेट विच इज गोइंग टू बी रिडीमेबल फॉर यू एट डाइन इन एट द बरिस्ता लाउंज, बरिस्ता रेस्टोरेंट राइट हियर इन फ्रिस्को। पहले चलते हैं गाने की तरफ, उसके बाद आता हूँ वापस विद मोर फन ओनली ऑन फन एशिया रेडियो। 5 बजे ना मैं बिस्तर से उठा, 5 किलोमीटर ब्रिस्क वॉक किया, ग्रीन टी पी, उसके बाद याद ही नहीं, सपना टूट गया।

दिस सॉन्ग टेल्स यू कि भैया गाना चलाने के लिए ना लैंग्वेज मैटर नहीं करती, म्यूजिक और फ्लेवर और जो उसमें एक्टिंग की जाती है वो मैटर करती है। देखो समझ हमें कुछ भी नहीं आया, पर मतलब काफी लोगों को आया होगा समझ, बट जिनको लैंग्वेज समझ आती है, हमें नहीं समझ आया हम फिर भी खुश खुश खुश का हमारे मोटे अपने आप हिलने लग पड़ते हैं। मोटे मतलब शोल्डर यार, डोंट माइंड मी, पंजाबी इन मी ऑलवेज वेक्स अप यू नो। टुडे इन हिस्ट्री इफ आई टॉक अबाउट इट, द कंट्री म्यूजिक रेडियो शो विच वॉज कॉल्ड ग्रैंड ओल ओपरी इज फर्स्ट ब्रॉडकास्टेड ऑन टेलीविजन इन अ लाइव लॉन्ग आवर शो बाय ABC. 1955 was the year, and in 1977 Debbie Boone's single you light up my life was also released for the very first time. I'm gonna give you a glimpse of that. Here we go with that one. This is by the singer Debbie Boone.

0: $20 गिफ्ट सर्टिफिकेट. नाउ कंडीशन दो है इसके. पहले आपने 30 डेज तक नहीं जीता होना चाहिए इन द पास्ट 30 डेज. नंबर टू, यू आर एबल टू गो टू फ्रिस्को एंड एंजॉय दिस. बाद में ना कहना वो फ्रिस्को में है, बड़ी दूर है पाजी, मेरे को नहीं होगा. तो इसीलिए गेट योर आंसर्स टू मी इफ यू कैन गो. मैं एक बात बोलूंगा, आपने बताना है उसका जवाब. अगर मोहब्बत रोशनी है, अगर मोहब्बत रोशनी है, राइट, इफ लव इज लाइट देन शादी क्या है. अगर मोहब्बत रोशनी है तो शादी क्या है, आपने मुझे बताना है. डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं. द वन दैट आई एम लुकिंग फॉर, क्रिएटिव आंसर सोचिए, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए कि अगर मोहब्बत रोशनी है तो शादी क्या है. 972-235-5555 नंबर टू द स्टूडियो. लेट्स गो टू दीज कॉल्स. गुड इवनिंग सर, मुझे ब्लूटूथ से हटा दीजिए क्योंकि नीले रंग का दांत ना अगर लग गया तो जहरीला हो सकता है.
1: क्या है?
0: बहुत बढ़िया मालिक, आप बताएं क्या नाम है आपका?
1: आदिल बात कर रहा हूँ. आदिल.
0: आदिल, ऐ दिल है मुश्किल आदिल. अच्छा बताओ, अगर मोहब्बत रोशनी है तो शादी क्या है?
1: शादी उसी रोशनी का शॉर्ट सर्किट है, झटका है.
0: अच्छा, आदिल कहता है शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट. आदिल पंजाबी हो आप?
1: मैं हूँ पंजाबी, पला बड़ा पेशावर में हूँ.
0: नहीं, मैंने वही कहा कि हिंदी बोल रहे हो ना तो आपका मुंह टेढ़ा हो रहा है, तो तुम पंजाबी बोलोगे तब मुंह सीधा रहेगा तेरा.
1: हां, ते शादी रोशनी ते नहीं, वो
0: मोहब्बत मोहब्बत रोशनी और शादी रोशनी, और शादी शॉर्ट झटके. चलो ठीक, अच्छी झटके. मैंने आपका जवाब लिख लिया आदिल भाई. रेडियो का वॉल्यूम कम कर लीजिए. एंड प्लीज टू ऑल द लिसनर्स दैट आर कॉलिंग मी, रेडियो का वॉल्यूम अगर आप कम नहीं करेंगे तो बहुत सारा डिस्टरबेंस होता है, मेरे कान का पर्दा फट सकता है, फिर मैं आपको सू करूंगा, कोई फायदा नहीं होगा. गुड इवनिंग फाइनेंशियल रेडियो, कौन बोल रहा है?
2: मेरा नाम अभिषेक है.
0: अभिषेक जी, अभिषेक है बाद में
2: सेम.
0: अच्छा, बाद में भी सेम है. अच्छा अभिषेक जी, आप बताइए कि अगर मोहब्बत रोशनी है तो शादी क्या है?
2: आंधी है.
0: क्या है?
2: आंधी. आंधी
0: आंधी है. अच्छा जी, आंधी है. वाह वाह वाह अभिषेक भैया, किस आपको, मेरे को लगता है मजबूत घर में रहते हो जो अभी भी बरकरार हो, नहीं तो उड़ गए होते आप तो. बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक. आई हैव योर आंसर विद मी, थैंक यू फॉर दैट. गुड इवनिंग फनेशर रेडियो, रेडियो वॉल्यूम लो, आपका वॉल्यूम उठा लो. कौन बोल रहा है भैया? दीदी आप मेरे को कहाँ से कॉल कर रही हो? ऐसे लग रहा है बाथरूम में हो और एको आ रही है ऐसी जबरदस्त. या तो मुझे ब्लूटूथ से उठा लीजिए या
3: नहीं, मैं ब्लूटूथ में नहीं हूँ.
0: तो फिर खिड़कियाँ बंद करो. ये पीछे क्या थिएटर में हो क्या?
3: नहीं आ रही आवाज.
0: अच्छा, सब्जी मंडी के पास से निकल रही हो?
3: नहीं नहीं, आई एम इन यूलिस.
0: अच्छा यूलिस. गुड इवनिंग, बताइए जी आपका नाम क्या?
3: धर्मिष्ठा.
0: धर्मिष्ठा, आप आपके नाम में डर मतलब फैला रखा है अपने पतिदेव के साथ, धर्मिष्ठा. अच्छा धर्मिष्ठा जी, अगर मोहब्बत रोशनी है तो शादी क्या है?
3: अंधेरा.
0: ओ तेरा भला हो गया अंधेरा. I love these creative answers that you come up with people. वाकई मजा आ गया. थैंक यू वेरी मच फॉर दैट आंसर धर्मिष्ठा. मैंने आपका आंसर अंधेरे में लिख लिया है. बहुत बहुत धन्यवाद. आगे चलते हैं जी, कौन कौन है मेरे साथ? 972-235-5555. अभिषेक साहब कहते आंधी है, धर्मिष्ठा जी कहती है अंधेरा है, आदिल कहता जी वो शॉर्ट सर्किट है. ऑल राइट, गुड इवनिंग फनेश, हूज दिस?
4: दिस इज रोशनी.
0: तेरा भला हो गया, रोशनी खुद ही चल के आ गई है. अच्छा जी, रोशनी कह रही है मेरी बात करे जा रहे हो अंधेरे में बैठ के.
4: आई नो एंड एवरीबॉडी इज सो नेगेटिव, आई डोंट लाइक दैट. अंधेरा है, पता नहीं क्या है, सोलर एक्लिप्स है, व्हाटएवर इट इज, बट टू मी इफ इट दैट इज रोशनी देन मैरिज इज दिवाली.
0: मैरिज इज दिवाली, ये आई एक पॉजिटिव वाली यार. रोशनी आपकी आपकी जैसी लड़कियों की वजह से ही दुनिया कायम है, नहीं तो ये खत्म हो चुकी होती.
4: थैंक्स टू मी, थैंक्स टू यू, थैंक्स फॉर द एंटरटेनमेंट सर.
0: थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच. ऑलराइट, लेट्स गो नेक्स्ट. गुड इवनिंग फाइनेंशियल रेडियो, हू इज दिस?
5: दिस इज मोनिका.
0: मोनिका, ओके मोनिका जी बताइए, अगर मोहब्बत रोशनी है मोनिका तो शादी क्या है?
5: मुझे लगता है अगर मोहब्बत रोशनी है तो शादी वो बिजली का बिल है जो पति को जीवन भर झटके देने के लिए आता
0: ये है. मार दिया चौका मेरी मोनिका ने. क्या बात है मोनिका, दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर. यस मोहब्बत, देखो जी मैं शाहरुख खान के स्टाइल में बोलूंगा और सारे पब्लिक ने बताना है कि अच्छा लगता है कि नहीं एक्टिंग मेरी. देखो मोहब्बत रोशनी है मोनिका और शादी उसी रोशनी का बिल. बिल्कुल ठीक कहा आपने मोनिका, कांग्रेचुलेशंस. कैन यू गो टू फ्रिस्को? क्या फ्रिस्को जा सकती हैं? थैंक यू. क्या प्राइस नहीं चाहिए? वैसे ही आगे
5: मैं तो अभी चली जाऊं, सही बताऊं
0: अभी क्यों?

0: जाऊंगी, अभी तो गिफ्ट नहीं मिलेगा, आपने जाना है तो जा सकती हूँ, मैं रोकूंगा नहीं, पर बहुत बहुत शुक्रिया,
1: सर्टिफिकेट देके डाइन इन भी करूंगी, टू गो नहीं मांगूंगी।
0: ऑल राइट, परफेक्ट, दैट मींस आप मुझे ध्यान से सुनती हैं मोनिका, बहुत बहुत शुक्रिया। घर में तो वो सुनती नहीं, कम से कम यहाँ तो कोई सुनता है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल, एंड आई लव दिस ऑडियंस मैन। DFW जो वाइब आप लेके आते हो ना, जो एनर्जी लेके आते हो यार इस शो में, एंड एनी अदर शोज ऑल्सो वेन यू पार्टिसिपेट, इट रियली मेक्स माई डे, एंड आई होप दैट आई मेक योर इवनिंग एज वेल। आई एम गोना टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, चिपक के एक दूसरे के साथ यही रेडियो सुनते रहो।
2: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
3: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
4: Hey Frisco, get ready to celebrate silver like never before. Chandrika Silver by Shri Krishna Jewelers celebrates its grand launch. Discover exquisite handcrafted silver jewelry and artifacts with exciting inaugural offers and raffle prizes. Visit 7777 Warren Parkway, Suite 280 Frisco. Chandrika Silver, the tradition shines in silver.
5: Stop! Festive fashion check. Navratri ke outfits ready hai?
6: Do chaniya choli hai. Mix and match kar lungi.
5: Fashion violation. Same outfit ko 9 raat overtime.
6: To solution?
7: Indian ethnic wear by Jyotika Patel. Explore a stunning collection of stylish, contemporary chaniya cholis for a new look every day in Navratri. Planning a wedding? Discover quality wedding and customized bridal wear for men and women at great prices. Call 945-444-2194 or explore jyotikapateldesigns.com. Indian ethnic wear by Jyotika Patel. Designed for celebrations.
8: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल। कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी, 9455270897 or visit astrologerishwar.com.
9: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? उमर ख्वाजा।
10: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com. It's the time to clock out.
11: It's the time to catch up. And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन। एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM, ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री। ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
12: What if your next home came fully loaded with over $35,000 in premium appliances, electronics and designer furnishings included? This nearly new home in Cambridge Crossing, Selina first occupied in January, is available as the seller relocates. Enjoy resort-style amenities, upgraded interiors and truly move-in ready. Just bring your suitcase. Buyer's agents, get your client under contract by October 15th and earn an additional $2,000 bonus. Call Navneeta Khemka with Keller Williams Realty at 347-449-4242.
13: Every home has a story. Let's create yours together.
14: Hey, are you going to Ravi's Trade Market this year?
12: Of course. Where else can you check out new products, meet vendors, grab exclusive deals, giveaways and save big for your store?
14: When is it?
12: Thursday, October 29th, Friday, October 30th and Saturday, October 31st from 9 AM to 5 PM at Ravi's Import Warehouse on Harry Hines Boulevard in Dallas.
14: Perfect. I'll register ahead on shopravis.com. Ravi's 21st Annual Trade Market. Bigger deals, bigger opportunities, bigger business. Customers must bring their valid tax number and tobacco license.
15: This Diwali, Tanishq celebrates what brings us together. Traditions shared, new friends welcomed, and memories that become theirs too. Because Diwali shines brighter when shared. This India Wali Diwali, share the light. Enjoy up to 25% off and 0% deduction on exchange. Visit Tanishq at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
16: इस दिवाली कॉपल में देखिए एक भव्य नजारा गणेशा लक्ष्मी और सरस्वती के ग्रैंड एलईडी कटआउट्स और पहली बार रामलीला साउथ एशियन फूड फेस्टिवल बाय बिंदास सर्विसेज नवंबर 1st द साउंड कपेल

ऑल राइट, एक बंदे ने ना भगवान से पूछा फाइनली कि भगवान साहब एक बात बताओ कि जो लड़कियां आपने बनाई हैं ये इतनी क्यूट, इतनी स्वीट, ये ऐसी होती हैं, ये बीवियां इतनी गुस्से में और नाराज क्यों रहती हैं? भगवान कहते हैं, बेटा देखो बात ऐसी है, लड़कियां मैंने बनाई थी, बीवी तुमने बनाई है। बंदा ये बिंदास है जी, नाम मारविन दास है। 626 इन द स्टूडियो क्लॉक, व्हाट अ लवली सेगमेंट वी हैड फॉर बरिस्ता हाउस। और वो कहाँ गई मोनिका, जीत गई यहाँ पे नाम यार, कॉल नहीं किया आपने मुझे, आपका नंबर नहीं, मतलब आप मुझे कॉल नहीं करेंगी तो मैं आपको इनाम कैसे दूंगा, और आपका नंबर मेरे पास है नहीं क्योंकि मैं अंतर्यामी तो हूँ नहीं, तो प्लीज़ मेरे स्टूडियो के नंबर पर कॉल कर लीजिए 9728235555। अगर आपने नहीं किया तो नेक्स्ट जो है लाइन में आपसे बढ़िया जिसने आंसर दिया था मैं उसको दे दूंगा ये इनाम। शाहरुख खान की तरह मैंने बात की और आपने एक भी कॉल मुझे नहीं किया, बड़ी गलत बात है। कोई बात नहीं, आप गाने सुनिए, बातें गलत और ठीक तो होती रहती हैं। हियर वी गो विद द नेक्स्ट ट्रैक, दिस इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द बर्थडे।

द गाय हू मेड हिज डेब्यू विद द फिल्म द अदर एंड ऑफ द लाइन 2008 में ये फिल्म आई थी और उसके बाद द टेलीविजन मिनी सीरीज बॉलीवुड हीरो में नजर आए 2009 में. उसके बाद फर्स्ट हिंदी फिल्म रिलीज हुई विद अ सपोर्टिंग रोल इन थ्री इडियट्स 2009. उसके बाद वेंट ऑन टू स्टार इन ऑलवेज कभी कभी बात बन गई, बॉबी जासूस, हैप्पी भाग जाएगी, फुकरे रिटर्न्स, फ्यूरियस 7, अब्दुल करीम इन विक्टोरिया एंड अब्दुल, एंड ऑफ कोर्स हू कैन फॉरगेट हिज गुड्डू पंडित, गुड्डू भैया, अमेज़न पे, प्राइम पे, मिर्जापुर एंड द डेथ ऑफ द नाइल एंड कंदाहर. आई एम टॉकिंग अबाउट अली फजल सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे टुडे. ही इज 40 इयर्स ऑफ एज, छोटा भाई है अपना. मैंने बोला था इसको बाल लंबे कर ले, अच्छा लगेगा. बस देखो इन्होंने मेरी बात मान ली, काम बन गया. लखनऊ में पैदा हुए, तहजीब के मतलब अल्फाज इनके पास बहुत हैं. सेठ जेवियर से हुई है एजुकेशन. आज हम करते हैं जी अपने छोटे भाई अली फजल को जन्मदिन की देते हैं मुबारकबाद फ्रॉम द टीम हियर एट फन एशिया एंड फ्रॉम बंदा बिंदास. उसके बाद एक और छोटे भाई का बर्थडे आज मेरे, वो पाकिस्तान से, उनका नाम है मोहब्बत मोहम्मद बाबर आजम. 15 अक्टूबर 1994 को, एक्चुअली मैं बोलूँगा नहीं, चलो है मेरे छोटे भाई, 15 अक्टूबर 1994 को इनका जन्म हुआ. 32 साल की उम्र है, लाहौर पंजाब से बिलोंग करते हैं जी, और लाहौर में मेरे दादा पैदा हुए थे तो हो गया ना मेरा भाई. राइट हैंडेड टॉप ऑर्डर बैट्समैन, कैप्टन पेशावर जलमी इन द पाकिस्तानी सुपर लीग, एंड ऑफ कोर्स मेंबर ऑफ द पाकिस्तानी टीम दैट वन द 2017 ICC चैंपियंस ट्रॉफी. बस वही एक जीते आप, उसके बाद तो आगे पीछे तो क्या ही बोलना. नहीं छोड़ो छोड़ो, चाय पियेंगे, बातें बाद में होती रहेंगी. चलो लेके चलता हूँ अगले गाने पे यार. और गाने के साथ साथ ये बता दूं, दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय SFL वर्ल्ड वाइड. गिफ्टिंग का सीजन है, बहाना हमने चलने नहीं देना, आपके लिए गिफ्ट्स ला भी सकते हैं और भेज भी सकते हैं फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. डोर स्टेप पिकअप करेंगे, डोर पे ही डिलीवर करेंगे. साथ साथ इफ यू आर लुकिंग टू इवन गेट बिगर थिंग्स फ्रॉम इंडिया, जैसे कि आप पूजा का मंदिर मंगवाना चाहते हैं, आप कुछ और बड़ा डेकोरेशन पीस मंगाना चाहते हैं, आप गणेशास मंगाते हैं एट द टाइम ऑफ गणपति, एवरीथिंग कैन बी ब्रॉट विद SFL वर्ल्ड वाइड. एंड इफ योर बिजनेस they will also help you with getting you tariffs that you have probably never seen before because they have a great network and they've been doing this for a while. SFLworldwide.com.

ग्रैंड प्रेरी के लोगों ध्यान रखिए, अगर आपने ये खबर पहले नहीं सुनी है तो सुन लिए, सुनो सुनो सुनो क्या कहता है मुनादी वाला। मुनादी सुनिए गौर से, बाद में बात कीजिए किसी और से, क्योंकि आपके लिए खुल चुका है हिमालयन बाजार, जो कि है जी इंडियन देसी पाकिस्तानी नेपाली सुपर स्टोर, जो आपके लिए खुल चुका है जी ग्रैंड प्रेरी में, राइट एट द इंटरसेक्शन ऑफ हाईवे 20 एंड हाईवे 360। आपको मिलता है ये लोकेशन, ये ग्रोसरी स्टोर जिसका नाम है हिमालयन बाजार। सारी आपकी ग्रोसरी की एसेंशियल्स तो वहाँ पे मिलेंगी, ठीक है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको ग्रोसरी स्टोर में बाकी जगह मिलता है, यू विल गेट सेम स्टफ और प्रोबेबली मोर, उसके साथ साथ सारी फ्रोजन आइटम्स, फ्रेश वेजिटेबल्स प्रोड्यूस और हलाल मीट शॉप एज वेल। एंड दे हैव नाउ अ ब्रांड न्यू कैफे जिसमें आपको मिलेंगे जबरदस्त नेपाली ऑथेंटिक मोमो। किस किस को पसंद है मोमो, सबको पसंद होंगे। अब ये ना कहना मोमोज खाएंगे, मोमोज मोमोज नहीं होता, मोमो होता है। पर आप आपको चलो कोई बात नहीं, मोमो कह लो या मोमोज कह लो यार, खा लो जाके वहाँ पे। साथ साथ गर्मा गर्म चाय और कॉफ़ी शाम को मिलती है जी, पकौड़े शकौड़े वहीं तले जाते हैं। सो मेक श्योर यू चेक आउट हिमालयन बाजार, एंड इफ यू लिव इन अ 5 mile रेडियस यू गेट योर ग्रोसरीज डिलीवर्ड एब्सोल्युटली फ्री फ्री फ्री। लूटेला हे लूटेला, तो लूट लो भैया इस डील को। ये मेरी तरह आप भी लोगों के साथ ऐसा होता है कि किस्मत और सुबह की नींद, भाई टाइम से कभी खुलती नहीं यार।

0: रियलिटी चेक अक्सर डर बीमारी का नहीं उसके पकड़े जाने का होता है, लेकिन व्हाट इफ में मत अटके, एनुअल चेकअप करवाइए।
1: विजिट एलन इंटरनल मेडिसिन एंड ट्रस्ट डॉक्टर वनीता एंड हर टीम फॉर एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग्स एंड वेट मैनेजमेंट। न्यू पेशेंट्स विद सेम डे अपॉइंटमेंट्स वेलकम। कॉल 4696499995 और विजिट aimallen.com।
2: Floors clean,
3: check.
2: Windows clean,
3: check.
2: Kitchen clean,
3: check.
2: Air ducts clean.
3: Wait, air ducts भी clean करना होता है?
0: बिल्कुल, जो दिखता है वो तो हम clean कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology, no roto brush, plus dry vent or chimney cleaning. घर हो, restaurants, hotels, offices या फिर any business, Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
4: एलविंग वालों, ध्यान से सुनो, ये सिर्फ म्यूजिक नहीं हिंट है। बिकॉज द बेस्ट चिकन इन डैलस इज फाइनली इन अर्विंग, क्रिस्पी जूसी बोल्ड द चिकन डैलस हैज बीन क्रेविंग आफ्टर प्लेनो एंड रिचर्डसन। Sal's Hot Chicken is now in Irving, bringing the crunch, the flavor, and the heat. You heard chicken, we heard Sal's. Grand opening on 10th October.
5: शॉपिंग बिल्कुल,
6: पर कहाँ? फेस्टिव लुक्स के लिए वही दो से तीन ऑप्शंस?
7: ऑप्शंस? आई विल गिव यू द लेटेस्ट डेस्टिनेशन।
1: इंट्रोड्यूसिंग पूजा'स ट्रेंड्स, लहंगाज, कोऑर्ड सेट्स, फ्यूजन वेयर, शराराज और ज्वेलरी, प्रीमियम क्वालिटी, अफोर्डेबल प्राइसेस। ग्रैंड ओपनिंग सेल, फ्लैट 15% ऑफ। विजिट 10202 कोइट रोड, स्वीट 400, फ्रिस्को। कॉल 214-457-4897। पूजा'स ट्रेंड्स, योर ट्रेंड, योर स्टाइल।
8: हुजूर, आपको चुनना होगा, हम या ये बिरयानी।
9: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
8: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
9: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
10: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
1: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
10: Barista House, richness of biryani bliss.
11: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
12: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
13: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
14: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
13: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
15: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
16: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
15: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
16: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
15: ये क्या होता?
16: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
17: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
1: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
0: हर मोहब्बत की आवाज, द वन एंड ओनली लिविंग लेजेंड राहत फतेह अली खान।
18: राहत फतेह अली खान,
1: एक्सपीरियंस वंस अपॉन अ टाइम वर्ल्ड टूर 2026। राहत फतेह अली खान और उनके बेटे शहजमान अली खान एक ही स्टेज पर।
0: ब्रॉट टू यू बाय रेहान सिद्दीकी, डॉक्टर यास्मीन कुरैशी एंड ट्रू पेमेंट सॉल्यूशंस। फ्राइडे अक्टूबर 16, 8:30 PM, कमेरिका सेंटर, फ्रिस्को।
1: ग्रैंड स्पॉन्सर कराही पॉइंट प्लेनो के एक्सक्लूसिव कंसेशन के साथ।
0: टिकट्स ऑन टिकट मास्टर एंड सुलेखा.com।
19: जग घूमे थारे जैसा ना कोई।

रिमेम्बर द नेम, जिनका नाम है जी सीमा मेहता. सीमा मेहता इज अ लॉ फर्म, उनके नाम पे ही लॉ फर्म है जी उनकी. एंड शी इज द एक्सपर्ट व्हेन इट कम्स टू इमिग्रेशन. 20 साल से भी ज्यादा से DFW में शी इज हेल्पिंग पीपल गेट देयर इमिग्रेशन डील्स सॉर्टेड आउट, इवन बीइंग ऑन H1, F1, L1 ऑन एनी अदर नॉन इमिग्रेंट वीजा. इफ यू प्लानिंग योर पाथ टू द US विद द परमानेंट रेजिडेंसी पाथ, देन द EB5 प्रोग्राम माइट बी द वन दैट यू वांट टू गेट विद. फैमिली हो, एम्प्लॉयमेंट वीजाज हो, पर्म हो, लेबर सर्टिफिकेशन हो या सिटीजनशिप्स, दे कैन हैंडल इट ऑल. गेट योर क्वेश्चन टू दैम इफ यू हैव एनी. इन्फो एट सीमा मेहता लॉ फर्म, वहाँ पे अपने सवाल भेज दीजिए एंड शील बी हैप्पी टू रिटर्न दोज आंसर्स दैट यू आर लुकिंग फॉर. एंड इनका जो नाम है बहुत अच्छा है जी, दे हैव बीन डूइंग दिस फॉर क्वाइट सम टाइम. ऑन द वेबसाइट यू विल फाइंड देम एट seemamehtalawfirm.com. दैट्स seemamehtalawfirm.com. With that, I also want to let you know that this part of the show is brought to you by Passion Health Primary Care. Multiple locations हैं उनकी, कहाँ पे हैं, क्या करते हैं, बताता हूँ right after this one.

और अगर आप वाकई अपने पार्टनर को प्यार करते हो तो भैया अपनी सेहत का ख्याल रखना भी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। एंड पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर हेल्प्स यू डू जस्ट दैट। अगर आप वीक डेज में कहते हैं यार मेरे पास टाइम नहीं है, आई कैन नॉट गो टू द फिजिशियन, देन यू हैव एन प्लान, हैव एन ऑप्शन विद डॉक्टर शेरिल शमाथिल, बोर्ड सर्टिफाइड फैमिली मेडिसिन के डॉक्टर हैं जी विद पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। ही इज अवेलेबल ऑन सैटरडेज फ्रॉम 9 AM टू 1 PM एंड इवन ऑन संडेज। दिस लोकेशन इन इरविंग एंड फ्रिस्को इज ओपन। सो दो लोकेशन जो आपके लिए वीकेंड्स पे खुली हैं, सैटरडे एंड संडे, विच इज फॉर टेक्सस फॉर पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। मेक श्योर टू चेक दम आउट ऑन द वेबसाइट, जस्ट गूगल पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, दे माइट हैव अ लोकेशन वेरी क्लोज टू यू बिकॉज दे हैव मल्टीपल लोकेशन इन DFW। उसके साथ साथ इफ यू वॉन्ट ग्रो योर बिजनेस विद फन एशिया, देन वी हैव अ ग्रेट न्यू ऑप्शन विद रिलेटिव मीडिया, जिसमें हम आपके लिए रील्स बनाते हैं, आपका कॉन्टेंट तैयार करते हैं और उसको पहुंचा देते हैं जी उन आंखों तक जहां तक आपको होना चाहिए। एंड अलॉन्ग विद दैट ऑफकोर्स we have the radio station which has all languages for you. Tamil station hamara hai ji, Vanakkam, Telugu station Sangam, Punjabi station Apna Punjab, and this is Phanasia. I've been in the radio industry for 20 years. You can give me a call, 972-302-7012 is my number, and I can help you make a plan that fits your budget and also gets you out there in the market. याद रखिएगा नवंबर 1st को वी हैव द 6th एनुअल DFW बिंदास सर्विसेज साउथ एशियन फूड फेस्टिवल विच इज सेट फॉर यू ऑन संडे, और ये 12 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक होगा। फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग फॉर ऑल। उसमें बाउंस हाउसेज हैं बच्चों के लिए, फेस पेंटिंग है, बहुत सारे कार्निवल गेम्स हैं। फॉर द एडल्ट्स वी हैव अ ग्रेट जर्नी थ्रू फूड, जो कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, थाई फूड। यू हैव मल्टीपल चॉइसेज एंड द कुकिंग इज डन लाइव ऑन साइट फॉर यू। उसके साथ साथ एंटरटेनमेंट इन द फॉर्म ऑफ डांसर्स, ग्रुप्स, इंडिविजुअल्स, बहुत सारे सिंगर्स आर गोना बी परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज थ्रू आउट द डे। 4 बजे वहां पे शुरू होगी जी रामलीला, विच इज ऑल्सो फ्री फॉर ऑल ऑफ यू टू अटेंड, एंड दैट इज गोना बी विद एटलीस्ट अ 30-member क्रू। बहुत जबरदस्त रामलीला रखी जा रही है आपके लिए। एंड वी हैव 20-foot कटआउट्स ऑफ गणेश जी, पार्वती जी एंड सरस्वती जी एंड लक्ष्मी जी, सॉरी, जिसमें LED लाइट्स लगाई जाएंगी और दैट विल बी अ साइट फॉर यू टू सी। दर्शन कीजिए, साथ साथ पिक्चर्स लीजिए। लेट्स मेक दिस अ मेमोरेबल इवेंट। 7 o'clock वील ऑल्सो जलाएं फूलझड़ियाँ, जलाएंगे हम जलाओ, जिसको बोलते हैं ना जलाओ फाइंग द फुलझड़ियां टुगेदर। दिवाली को मनाएंगे जी 1st of November, याद रखिए संडे एट द साउंड वेन्यू इन कोपेल। वी लाइक टू थैंक ऑल ऑफ आवर स्पॉन्सर्स। सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी जी ऑन द वेबसाइट विच इज SAFF USA, SAFF USA, विच स्टैंड फॉर साउथ एशियन फूड फेस्टिवल USA.com, और सिंपली सोशल मीडिया में टाइप कर दीजिए बिंदास फूड फेस्टिवल या 6th एनुअल साउथ एशियन फूड फेस्टिवल, यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। मेरे बाद आ रही है जी इपी द हिपी, आई एम गोना मेक वे फॉर हर। एंजॉय करें उसके शो को, इफ यू हैवन हर्ड हर बिफोर देन चेक इट आउट, शी डज अ डिफरेंट टाइप ऑफ शो, एंड उनको हौसला दीजिए, भरोसा। अब तो काफ़ी देर हो चुकी है उनको हमारे साथ जुड़ के, सो शी इज़ डूइंग, शी इज़ नॉट न्यू एनी मोर, बट शी स्टिल कैन इन्जॉय सम कंपनी विच यू गाइज कैन गिव हर। मुझे दुआओं में याद रखिएगा जी, आई डू द सेम फॉर यू। आज है थर्सडे, दैट मीन्स आई वॉन्ट बी सींग यू टमोरो सैटरडे एंड संडे, बट सुपरबॉल ने दी जिंदगी, तो मंडे शाम को फिर से होंगे जी आपके साथ फ्रॉम 5 to 7 विद द मोस्ट हर्ड इवनिंग ड्राइव टाइम शो, जिसका नाम है द बिंदास शो, ओनली ऑन योर फेवरेट, हमारा फेवरेट, सबका फेवरेट, फन एशिया रेडियो। विद दैट इट इज गुड नाइट।